नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई

0: से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सभ्यता की पहचान केवल इतिहास के पन्नों से नहीं होती, बल्कि उन संस्कारों से होती है जिन्हें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भारत की यही अनमोल विरासत हमें सत्य, सेवा, परिश्रम और राष्ट्र निष्ठा का संदेश देती है। इसी भावना को हृदय में संजोए प्रस्तुत है एक जोश और उत्साह से भरपूर देशभक्ति गीत।

माँ गायत्री चेतना, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिष्ठात्री है। उनकी उपासना मन को निर्मल, विचारों को सकारात्मक और जीवन को प्रकाशमय बनाती है। गायत्री का संदेश है ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करना। प्रस्तुत है माँ गायत्री की आराधना से सजा यह भावपूर्ण भजन।

देव सेनापति भगवान कार्तिकेय साहस, संयम और विवेक के प्रतीक हैं। वे मानते हैं, वे बताते हैं कि विजय केवल बल से नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय से प्राप्त होती है। उनका तेज भक्तों के जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

अन्नपूर्णा माता केवल अन्न की देवी ही नहीं बल्कि करुणा, सेवा और संतोष की अधिष्ठात्री भी है। उनकी कृपा से घर आंगन में समृद्धि, मन में संतोष और जीवन में मंगल का वास होता है। भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म माना गया है और उसका सम्मान ही सच्ची उपासना।

जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघ जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। भगवान नरसिंह सत्य की विजय और भक्त की अटूट आस्था के प्रतीक हैं। उनका स्मरण हमें यह विश्वास देता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं चिंतन। शीर्षक है व्यथा। वाचक स्वर मनीष सोनी के हैं। आलेख एनी हेटफील्ड का।
1: व्यथा जीवन की। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि सुख जीवन का उजाला है तो व्यथा उसका अंधकार है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी तरह जीवन में प्रसन्नता के साथ साथ व्यथा भी आती है। व्यथा केवल दुख का नाम नहीं है, बल्कि वो अनुभव है जो मनुष्य को भीतर से झकझोर देता है, उसे सोचने, समझने और परिपक्व बनने का अवसर देता है। मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की व्यथाओं से भरा होता है। किसी को आर्थिक कठिनाइयों की व्यथा होती है, किसी को अपनों से बिछड़ने का दुख सताता है, तो कोई अपने सपनों के टूटने की पीड़ा को सहता रहता है। हर व्यक्ति के हृदय में कोई ना कोई ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे वो संसार के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। बाहर से मुस्कुराता हुआ चेहरा भी भीतर अनेकों दर्दों को समेटे हुए हो सकता है। व्यथा का सबसे बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है। जब मनुष्य दुखी होता है तो उसे जीवन नीरस लगने लगता है, उसकी आशाएं कमजोर पड़ जाती हैं और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। लेकिन यही वो समय है जब व्यक्ति की वास्तविक शक्ति की परीक्षा होती है। कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति ही आगे चलकर मजबूत और अनुभवी बनता है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, नदी को सागर तक पहुंचने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी जीवन में आने वाली व्यथाओं से गुजरना पड़ता है। ये व्यथाएं उसे कमजोर नहीं बल्कि अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। व्यथा का एक सकारात्मक पक्ष भी है। ये मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। जिसने स्वयं पीड़ा का अनुभव किया होता है वो दूसरों के दुख को अधिक अच्छी तरह समझ सकता है। एक दुखी व्यक्ति के हृदय में करुणा और सहानुभूति का भाव अधिक होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुख मनुष्य को मानवता का वास्तविक पाठ पढ़ाता है। महापुरुषों के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि उन्होंने भी अनेक व्यथाएं झेली है। महात्मा गांधी ने संघर्षों का सामना किया, स्वामी विवेकानंद ने कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया और गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को देखकर सत्य की खोज की। यदि वो अपनी व्यथाओं से हार मान लेते तो शायद इतिहास उन्हें याद नहीं रखता। उनकी पीड़ा ही उनकी महानता का कारण बनी। आज के आधुनिक युग में भी व्यथा के स्वरूप बदल गए हैं। पहले लोग भौतिक अभावों से अधिक पीड़ित थे, जबकि आज मानसिक तनाव, अकेलापन और प्रतिस्पर्धा की भावना लोगों को परेशान कर रही है। सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में लोग अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाकर केवल खुशियों का प्रदर्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप भीतर की व्यथा और गहरी होती जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करें और जीवन को संतुलित दृष्टि से देखें।

0: व्यथा से मुक्ति का मार्ग भी हमारे भीतर ही छिपा है। सकारात्मक सोच, धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर में आस्था हमें कठिन समय से बाहर निकलने में शक्ति देते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सुख दुख दोनों अस्थाई है, तब व्यथा का प्रभाव कम होने लगता है। समय हर घाव को भर देता है और हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा अवश्य आता है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यथा जीवन का अभिशाप नहीं बल्कि एक शिक्षक है। यह हमें धैर्य, संघर्ष, करुणा और आत्मबल का पाठ पढ़ाती है। जीवन की राह में आने वाली पीड़ाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आती है। इसलिए व्यथा से घबराने की बजाय उसे समझना और सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी व्यथाओं को शक्ति में बदलना सीख लेता है, वही व्यक्ति जीवन की वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। व्यथा जीवन का एक अनिवार्य सत्य है और इसी सत्य को स्वीकार करके हम एक सार्थक, संतुलित और सफल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक स्वर मनीष सोनी के थे, आलेख एनी हेडफील्ड का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दे रही हैं तुलसा दरगैया पंचगव्य के बारे में।
2: किसान भाइनों ने राम राम। किसान भाइनों ने आज हम बात करांगा पंचगव्य का बारा में। पंचगव्य गाय, गोबर, मूत्र, दूध, दही न घी से प्राप्त पांच उत्पाद नसी तैयार एक प्रकार को जैव ईंधन है, जो कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का एक चिकित्सक न वैज्ञानिक डॉक्टर नटराजन न अलग अलग बागवानी न कृषि फसल की आवश्यकता का अनुसार एक सूत्र न परिष्कृत करी। पंचगव्य का उत्पादन की लागत प्रति लीटर 25 से 35 रुपया छे। पंचगव्य में कई उपयोगी सूक्ष्म जीव है, जैसा कि कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसेट न कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी रहे। ई सूत्रण मिट्टी को समृद्ध करने का लेना एक टॉनिक का रूप में काम करे। गुणवत्ता युक्त उत्पादन का साथ पौधा न कर शक्ति प्रदान करत न पंचगव्य में पाया जाने वाला विभिन्न सूक्ष्म जीवन की संख्या कई गुना रहे, जैसो कि कुल कवक के काम 38,800 मिलीलीटर है। कई बैक्टीरिया की संख्या भी ज्यादा रहे, लैक्टोबैसिलस रहे, कुल अवायवीय जीव भी रहे, एसिड फार्मस रहे न मेथेनोजोइन भी 250 प्रति मिलीलीटर का हिसाब से रहे। मतलब ऐसा कई सारा सूक्ष्म जीव एक काम पंचगव्य में उपस्थित रहे। भौतिक रासायनिक अध्ययन से पता चलो कि पंचगव्य में लगभग सभी स्थूल न सूक्ष्म पोषक तत्व न पौधा न की वृद्धि का लेना आवश्यक वृद्धि हार्मोन उपस्थित रहे। खमीर न लैक्टोबैसिलस जैसा किण्वक सूक्ष्म जीवन की अधिकता मिट्टी की जैविक गतिविधि में सुधार करना न दूसरा सूक्ष्म जीवन की वृद्धि करना में सहायता करे। पत्ता न पर छिड़काव का लेना 3 से 4% पंचगव्य घोल प्रभावी रूप से काम करे। 4 से 5 बार पत्ता न पर छिड़काव द्वारा श्रेष्ठ विकास न उत्पादकता सुनिश्चित हुई जाए। 15 दिन का अंतराल पर फूल आने से पहले 2 बार छिड़काव करा न 2 छिड़काव फूल न फली न आने का दौरान करा। 10 दिन का अंतराल पर करा, साथ ही फल न फली न की परिपक्वता का दौरान भी अपन 1 बार छिड़काव एको करी सकाए। अमरूद, आम्लरेखा, केला, मसाला, हल्दी, फूल, चमेली, औषधीय पौधा जैसे कि कोलस, अश्वगंधा, सब्जी नमक बात करा तो ककड़ी, पालक, भिंडी, मूली न अनाज नम मक्का, हरा चना जैसी कई फसल नम एक अलावा कई बागवानी फसल न जैसे कि सूरजमुखी म भी हम पंचगव्य को उपयोग बहुत प्रभावी मान्यो जाए। पंचगव्य पिटिका सूचकांक न मट्टी में निमेटोड जनसंख्या संबंधी निमेटोड समस्या का कम करना में भी मदद करे। पंचगव्य का इस्तेमाल सी पत्ती न तना न पर एक पतली तेलीय फिल्म बनी जाए, जेका सी वाष्पीकरण का नुकसान को भी कम करी सके। इस्तेमाल करेल पानी को भी हम अच्छो सी उपयोग को करी सका। अब भाई उन पंचगव्य कसो बनाओ एका बारे में बात करा। एका लेना हमका सामग्री लगेगा गाय का गोबर को घोल 4 किलो का करीब, ताजो गाय को गोबर 1 किलो, गौमूत्र 3 लीटर, गाय को दूध 2 लीटर, दही 2 लीटर न गाय को घी 1 किलो। 3 लीटर पंचगव्य 100 लीटर पानी में घोले न हम प्रयोग करा। जो भी पंचगव्य अपने पास बनी जाए कदियों की मात्रा 3 लीटर होए तो ख 100 लीटर पानी में हम घोले न अपना खेत में को छिड़काव करी सका। न एकासी काई होगा कि बीज न अंकुर को उपचार भी जाएगा, साथ सिंचाई का पानी का माध्यम से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी जाएगा। तो भाई

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। अब आपको कार्यक्रम विवरण में आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पत्र कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपके ईमेल पर प्राप्त संदेशों के उत्तर देंगे राजेश और मुकाम सिंह चौहान। प्रातः 8:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और आज का ये फिल्म संगीत केंद्रित रहेगा सावन के गीतों और बातों पर। प्रातः 9:00 लोक संगीत में शारदा फगारे और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। सुगम संगीत में 9:15 हम आपको सुनवाएंगे राधा कुलकर्णी के गाए रचनाएं। प्रातः 9:30 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित सुरेश शंकर अवस्थी का गायन राग विलास खानी तोड़ी। जिले की चिट्ठी अनुप्रसारित की जाएगी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रातः 10:00। 10:05 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन प्रसारित किया जाएगा। ये तो थे हमारे केंद्र यानी आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अब आपको जानकारी दे दें भोपाल कार्यक्रम यानी मध्य प्रदेश आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, फोन करेगी सुने। फिल्म संगीत सुनिएगा दिन में 12:00। दिन में 12:30 सुनिएगा कार्यक्रम संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:00। लोक संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:30। 1:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत।

दिन में फिल्मी गानों का आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत में दोपहर 2 बजे। दिन में 2:30 बजे चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे। तो ये तो थी दिन की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, और अब आपको हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। शाम की सभा में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, और आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण रहेंगे एक ही फिल्म से के अंतर्गत क्रीचर फिल्म के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ ही आरंभिक चर्चा और आज के प्रश्न भी आप सुन सकेंगे हमारे इस कार्यक्रम में।

0: संध्या 6:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, 6:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत में राधा कुलकर्णी और साथियों के गाए सुगम संगीत की रचनाएं, 6:45 पर लोक संगीत में सुनिएगा शारदा पगारे और साथियों के गाए लोकगीत, और खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज की बात में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में वार्ता हम आपको सुनवाएंगे, इसके साथ ही घरेलू व्यंजन, घरेलू नुस्खे और लोकगीत और मंडी के भाव भी आप जान सकेंगे। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे और 8:15 बजे सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयकम् पारितम्। राज्यसभया ह्यः एतस्मै अनुमोदनं प्रदत्तं। तत्पूर्वमेव एतत् विधेयकं लोकसभया पारितम् आसीत्। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद रायः राज्यसभायां एतत् विधेयकं प्रस्तुतवान्। अनेन 69-1999 जन्म मृत्यु पंजीकरणाधिनियमे संशोधनं भवेत्, येन जन्म मृत्योः पंजीकरणे विलम्बः न भवेत् तथा समये एव पंजीकरणं भूयात्। लोकसभया ह्यः विनियोग विधेयकमपि पारितम्। ततः परं लोकसभायाः कार्यम् आदिवसपर्यन्तं स्थगितम्। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्र प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः यत् वैध तृतीय पक्षयानाभिरक्षणं विना इन्धन विक्रयः न भवेत् इति उद्देश्येन प्रायोगिक परियोजना निर्मीयताम्। न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र अवदताम यद भारत से मार्गेष् संचरतेष् यानु प्राय 50% यावत यानानि वैध तृतीय पक्ष यानाभिरक्षण विहीनानि सन्ति। एषा च स्थिति अत्यंत चिंतायुता अस्ति। न्यायालयेन भारतीय वीमा विनियामक विकास प्राधिकरणाय अथ मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्रालयाय च स्वचालित पंजिका फलकाभिज्ञान प्रणालीम उपयुज्य बीमा इति सत्यापन प्रायोगिक परियोजनां निर्मातुं निर्देशः प्रदत्तः। एतस्याः प्रायोगिक परियोजनायाः उद्देश्यं वैध तृतीय पक्ष यानाभिरक्षण विहीन यानानां अभिज्ञानकर्तुं तथा मोटर यानाधिनियमस्य अनुपालनं सुदृढीकर्तुं वर्तते। ऐषमः ब्रिक्स इत्येतस्य अध्यक्षतां कुर्वन् भारतम् अद्यारभ्य 6 दिनांक पर्यन्तं भोपाले तृतीयं ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूहोपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। संस्कृति मंत्रालयेन उक्तं यत् अस्मिन् उपवेशने ब्रिक्स सदस्य देशानां प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। एतदुपवेशनं सांस्कृतिक सहयोगस्य संवर्धनाय तथा ब्रिक्स संस्कृति मंत्रिणाम् उपवेशनात् पूर्वं प्रमुख विषयेषु सहमति स्थापनाय आयोज्यते। द्विदिवसात्मके अस्मिन् उपवेशने त्रिषु प्रमुख विषयेषु विचार विमर्शः भविष्यति, येषु सृजनात्मकार्थ व्यवस्था, सांस्कृतिक सृजनात्मकोद्योगः, प्रतिलिप्यधिकारः, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणम्, संस्कृतिः, जलवायुः, सतत विकासः चेत्येते विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतद् उपवेशनं ब्रिक्स अध्यक्षतावधौ सांस्कृतिक सहभागितायाः सुदृढीकरणे तथा संस्कृति माध्यमेन समावेशी सतत विकासं संवर्धयितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रिणां त्रयोदशोपवेशनं तथा तृतीयं ब्रिक्स वरिष्ठाधिकारिणां उपवेशनं अद्यारभ्य अस्य मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरे आयोजयिष्यते। शिक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् एतेषु उपवेशनेषु

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से

0: जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं श्रोताओं। इस गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा स्तनपान भ्रांतियां एवं तथ्य। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा पौराणिक से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 यानी कल सुबह 10:32 से 11 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। फोन करना ना भूलें गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सुबह 10:30 और विषय एक बार पुनः बता दें स्तनपान भ्रांतियां एवं तथ्य। और विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर नीरजा पौराणिक। सूचना समाप्त हुई।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
2: कितनी सुहानी है आज की ये

0: वह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से, देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी, 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भोपाल आज अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय सर्वे भवन्तु सुखिना रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि भोपाल में आयोजित इस सम्मेलन के लिए अब तक तैयार किए गए मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने जा रही है। बीते 2.5 वर्ष में राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और नियमों के कारण मध्य प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश सभी सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मुंबई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में उद्योगपति और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी दिए।
1: हमारे लिए टेलीकॉम सेक्टर का मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के मिलाकर जो जोन डिक्लेयर किया है, ये वाकई पूरे देश का अद्भुत प्रयोग है। जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण से हमारे टेलीकॉम सेक्टर को समृद्ध करेगी, जहां निवेशकों के लिए व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना पे काम होगा, हमारे राज्य के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और राज्य को आगे बढ़ाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर भी रहेगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इस प्रकार के टेलीकॉम सेक्टर में विदेश की तरफ देखते हैं, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है।
0: वहीं इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटलाइजेशन में नई क्रांति देखने को मिली है। पहले भारत 2G पर निर्भर रहता था, आज हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कल हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 करोड़ रुपए की कवच योजना को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 5000 किसान लाभान्वित होंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मंत्रिपरिषद के फैसले

0: की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्टेडियम, खेल सुविधाओं तथा खेल अधोसंरचना के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए लगभग 2460 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक जन सहभागिता से चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रीगणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों के जवानों और पुलिस कर्मियों के लिए पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान भी किया। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में कल देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिनभर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भ्रमण भी किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने उनके लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए। शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किशोर नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी ने प्रस्तुति दी। वहीं पार्श्व गायक विनोद राठौर को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं भोपाल के रविन्द्र भवन में भोपाल प्रतिष्ठित संगीत संध्या ये शाम मस्तानी का आयोजन किया गया, जिसमें सुविख्यात संगीत निर्देशक एवं गायक अनु मलिक उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित रहे। इसके साथ ही संचालक संस्कृति NP नामदेव एवं उप संचालक डॉ. पूजा शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। अनु मलिक ने कहा कि भोपाल एक तहजीब का शहर है और यहां आकर मन प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति भी इस अवसर पर दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर योजना का वास्तविक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा और लगातार प्रयासों के अनुरूप लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में कल अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कल मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि नागरिकों को लोक सेवाओं का प्रदाय नियत समयावधि में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय कार्यों के निष्पादन को प्रभावी रूप से किए जाने के संबंध में भी अधिकारियों से विमर्श किया। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है। पर्याप्त बारिश न होने से अब तक प्रदेश में 18% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक और वाद विवाद तथा शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं धार जिले में इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन सामग्री का 100% उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि POS मशीन में अगस्त एवं सितंबर की राशन राशि को वितरित करते समय 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ

जीवनी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा और नीमच के मनासा रोड डाक बंगले से पीजी कॉलेज तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान कल चलाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से, देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी, 5000 किसान लाभान्वित होंगे और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आइए अब सुने आपका पत्रकार कार्यक्रम।

0: आपका पत्र कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के साथ हम हैं, मैं मुकाम सिंह चौहान
1: और मैं राजेश पाठक।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: और बहुत सारा जो है आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और पाठक जी,
1: बिल्कुल,
0: चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो गीतों की झड़ी है और बादलों की झड़ी भी है, लेकिन साथ साथ में कल
1: बरसात भी हो रही है
0: जी। और कल हरफन मौला महान गायक किशोर कुमार साहब की जयंती भी बड़े ही धूमधाम से मनी, और आकाशवाणी ने लगातार 2-3 दिनों तक किशोरदा के गीतों को खूब बजाया।
1: ढेर सारे कार्यक्रम हुए
0: जी,
1: जैसे सावन की प्रथम सवारी निकली और उसको भी हमने
0: कवर
1: फोन लाइन से जोड़कर जो है वहाँ के प्रभारी मंत्री और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को लाइन पे लेके हमने अपने श्रोताओं तक जो है कार्यक्रम सुनवाया
0: जी।
1: और वास्तव में इस बार काफी भीड़ थी वहाँ पर, करीब 8 लाख पब्लिक थे।
0: बिल्कुल।
1: और इस तरह से जो नहीं जा पाए, हमने कोशिश की कि उनको रूबरू हम अपने श्रोताओं को इस फोन पर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से करवाए।
0: बिल्कुल,
1: और हमने करवाया।
0: बिल्कुल, प्रतिवर्ष की भांति हम लगातार जो है उज्जैन की महाकाल सवारी यात्रा से जुड़े रहते हैं, और इस बार भी हमने वहां का विवरण देकर हमारे श्रोताओं को बता दिया कि हम जुड़े हुए लगातार।
1: किशोर दा का
0: जी
1: जन्मदिवस था और ढेर सारे कार्यक्रम हुए।
0: बिल्कुल।
1: और वहां के जो खास हमारे श्रोता थे, संजय पंचोलिया जी, आनंद जोशी जी, उनसे हमसे बातचीत की, उनके संस्मरण के साथ वहां की जो गतिविधि की गई, हम अपने दूसरे श्रोताओं को भी अपने केंद्र से प्रसारित कर उनके विचार साझा किए।
0: बिल्कुल।
1: आपने बारिश की बात की, बारिश जानती है मेरा नाम, एक सफर जो बूंदों ने किया, वो बारिश जो तेरी हथेलियों पर गिरी थी, किसी पहाड़ी की चोटी से चली थी, बादलों की चुप्पी ओढ़े हवाओं के कंधे पर बैठी, हर बूंद जैसे कोई खत भींगा हुआ जो तुझ तक पहुंचाना चाहता था।
0: क्या बात है, आपने तो सावन के गीतों में, खासकर जो हिंदी सिने जगत में जो सावन के गीतों में बारिश का जो मौसम होता है उसका जो विवरण होता है, उसी को आपने बहुत ही अच्छी पंक्तिमय शब्दों के माध्यम से हमारे श्रोताओं को बता दिया।
1: और क्यों नहीं, किशोर दा को बतौर गायक उसके शुरुआती दौर में एक लड़की भींगी भींगी भागी सी
0: जी।
1: ये फिल्म चलती का नाम गारी 1958 में गानों ने भारी लोकप्रियता दिलाई।

0: बिल्कुल,
1: जबकि उसके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और सुपरस्टार बनाने वाला गाना 1969 की फिल्म आराधना मेरे सपनों की रानी साबित हुआ।
0: जी, जी, जी।
1: और एक लड़की भींगी भागी सी जो 1958 की जो ये फिल्म बनी थी,
0: बिल्कुल,
1: फिल्म चलती का नाम गारी, यह गाना उनका पहला बड़ा लोकप्रिय गाना था,
0: बिल्कुल,
1: जिसे उन्होंने खुद पर फिल्माया था।
0: बिल्कुल, आज भी हम उतने ही मुद्दत के साथ में इस गाने को सुनते हैं और झूमते हैं।
1: तो अब हम अपने श्रोताओं के पत्रों को,
0: श्रोता प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने पत्रों को सुनने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये पहला पत्र है पालदाना का, इंदौर से
1: आया
0: है।
1: इसके पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें
0: जी,
1: मेल आप बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेल क्या है?
0: आप भी हमें अभी मेल कर सकते हैं आपका पत्र AIR indore.com पे @gmail.com पे, इस पे आप जाकर हमें तुरंत मेल कर सकते
1: लेटर्स
0: हैं
1: के साथ।
0: बिल्कुल, बता दें AAPKATRAAIRINDORE@gmail.com
1: जी,
0: इस तो पर आप हमें मेल कर सकते हैं और आपकी सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं और तुरंत आप जान भी सकते हैं कि आपका मेल शामिल हुआ या नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और तो, जो मेल नहीं कर पाए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063।
0: बिल्कुल, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और अब मेल तो हमें मिल ही गए हैं।
1: सबसे पहला
0: तो
1: मेल,
0: ये मेल है हसीना भी मंसूरी, अमीना भी और मोहम्मद रफी मंसूरी का, पालदाना का इंदौर से।
1: क्या लिखते हैं?
0: लिख रहे हैं, याद वो नहीं जो तन्हाई में आती है, याद तो वो है जो लाखों की भीड़ में आपको तन्हा कर जाती है। और इन दिनों हमें याद आ रही है अभिलाषा तिवारी जी की और राजेश्वरी जी की, इन दोनों की आवाज़ बहुत दिनों से सुनाई नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि इन्हें भी बुलाया जाए ताकि हमें इन्हें ज़्यादा सुनना मिले या इन्हें मिस ना करें। साथ ही एक सुझाव भी दे रही हैं कि ईमेल पर आधारित फरमाइशी प्रोग्राम भी शुरू किया जाए। जब इंदौर साफ सफाई के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है तो फिर ईमेल पर आधारित फरमाइशी प्रोग्राम भी शुरू होने चाहिए। साथ ही दिनांक 4 अगस्त का सुनहरे पल कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। किशोर कुमार पर केंद्रित एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश इसमें किया गया था,
1: विविध भारती और प्राइमरी चैनल दोनों पर किया गया।
0: और इसीलिए कह रहे हैं कि इस पर जो प्रकाश डाला गया है बहुत ही शानदार प्रस्तुति है दोनों ही केंद्रों पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने बात की याद की
0: जी,
1: हम अपने श्रोताओं को कैसे भूल सकते हैं मुकाम जी। टूटे से कुछ ख्वाब, आंखों में भी सैलाब, खाली खाली से दिन रात, हर पल याद दिलाती है तेरी याद।
0: क्या बात।
1: तो बिल्कुल, आप बिल्कुल छुटकर मेल भेजें ताकि हम आपकी भावनाओं को श्रोताओं के साथ शामिल कर सकें।
0: बिल्कुल, एक और ईमेल दूसरा मेल दिख रहा है, धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशिश साइमा, हसनैन और खुशिका। और ये लिख रहे कि दिनांक 26 जुलाई को FM विविध भारती से प्रातः 10:32 पर कारगिल विजय दिवस पर प्रसारित कार्यक्रम बहुत पसंद आया। इस प्रोग्राम में राष्ट्र प्रेम, वीरता और बलिदान की अमर गाथाओं को भावपूर्ण शब्दों और मधुर प्रस्तुति के माध्यम से श्रोताओं के हृदय तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रत्येक शब्द शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि का पुष्प बनकर राष्ट्र की वंदना कर रहा हो।
1: क्या बात।
0: प्रोग्राम में प्रसारित देशभक्ति गीतों ने वातावरण को अद्भुत ऊर्जा, गर्व और भाव विभोर कर देने वाली अनुभूति से आलोकित कर दिया। इन गीतों ने न केवल भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्र निष्ठा को जीवंत कर दिया, बल्कि प्रत्येक श्रोता के मन में देश के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण की भावना को प्रगाढ़ कर दिया। पद्मश्री तपस्वी द्वारा ये प्रस्तुत कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए इन्होंने धन्यवाद कहा है। और निसंदेह यह एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र भक्ति की अविरल धारा और भारत के वीर सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाला एक अविस्मरणीय प्रोग्राम था।
1: बिल्कुल, आपने ठीक कहा मुकाम जी। वास्तव में कारगिल विजय
0: जी
1: दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन

0: वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की याद में मनाया जाता है, जो करीब 60 दिन तक चला था।
1: बिल्कुल।
0: और आने वाले अब हमारा स्वतंत्रता दिवस भी काफी पास आ रहा है, अब धीरे धीरे हमारे श्रोता भी देशभक्ति के रंग में रंगते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, चूंकि अगस्त माह का
0: सावन की पहला पखवाड़ा के साथ बिल्कुल धीरे धीरे जब इंद्रधनुषी रंग की भी छटा जो है धीरे धीरे अब दिखने को मिल रही
1: जा रही है। और आपने बहुत अच्छी बात कही,
0: देश की स्वतंत्रता, देश की आजादी की आन मान शान की हम उसमें
1: बिल्कुल अगस्त माह का जो पहला पखवाड़ा है, यानी कि 1 अगस्त से
0: क्रांति 9 अगस्त
1: जी 1 से 15 अगस्त के बीच में देशभक्ति से भरा हुआ पूरा वातावरण होता है। और चूंकि यह वातावरण हो भी क्यों ना, क्योंकि एक सबसे बड़ा उत्सव हमारा आता है स्वतंत्रता दिवस,
0: आपके साथ हमारा केंद्र भी देशभक्ति और गीतों के साथ बिल्कुल सदैव मुस्तैद रहेगा।
1: बिल्कुल। और अब हर घर तिरंगा अभियान भी चलने वाला है, और जो है इसके तहत लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। और अगला पत्र मेरे मेल पर दिख रहा है, और ये है सुदर्शन शाह का है।
0: क्या लिखते हैं?
1: नेपानगर से ये लिख रहे हैं कि जय श्री राधे कृष्ण, दिनांक 4 अगस्त 2026 को प्रातः 7:20 पर सदाबहार नियमित कार्यक्रम सुनहरे पल सुना। भारत के महान पार्श्व गायक, हम सभी संगीत प्रेमियों की आन बान और शान का प्रतीक किशोर कुमार की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम में उनके गाए सदाबहार फिल्मी गीत सुनकर दिल झूमने को मजबूर हो उठा। सुबह सुबह ही ऐसा समा बंधा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी कार्यक्रम में प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा के श्रोता श्री आनंद जोशी जी की वार्ता, जिसमें उनके कुछ अनछुए पलों पर प्रकाश डाला गया, वार्ता काफी पसंद आई। सफल एवं शानदार प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र निवेदन है कि आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित समस्त फरमाइशी कार्यक्रमों को ईमेल पर आधारित किया जाए, साथ ही पत्रों पर भी रखा जाए, ऐसा उनका कहना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे पास व्हाट्सएप संदेश भी आना शुरू हो गए हैं। डीसी सारस्वत 15 पटवारी कॉलोनी रतलाम से ये लिखे हैं, सुनहरे पल कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और सुनहरे पल कार्यक्रम में जो केंद्रित था किशोरदा पर
1: जी,
0: बहुत ही दिल को भा गया। और इसमें दिवंगत आवाज के जादूगर किशोरदार पर कुछ अच्छी बातें, उसके मित्र, बचपन की शरारतें, उसकी पसंद की मिठाई जलेबी बहुत अच्छी लगी, उन्हें सादर नमन। और आज प्रातः काल जो है भक्ति संगीत भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल
0: सरस्वत जी, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है
1: जी,
0: लावरिया भैरू इंदौर से लिखने वाले हैं अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम एवं समस्त परिवार। लिखते हैं, आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: और प्रशंसा एवं शिकायत, महोदय जी आपके केंद्र से 30 जुलाई 2026 को लोकसभा की कार्रवाई प्रसारित की गई जो बहुत अच्छी लगी। और आगे इन्होंने लिखा है कि ऐसा क्यों यह कार्रवाई को सत्र के अनुसार प्रसारित करते हैं, जिसे हमें लोकसभा की कार्रवाई सुनने में बड़ा अच्छा लगे। उस दिन लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए प्रसारित किया गया, उसके दूसरे दिन क्या आगे कुछ उसके शब्दों का तालमेल जो
1: हाँ,
0: है
1: ये बोल रहे हैं कि उसके 3 लोकसभा की कार्यवाही प्रसारित नहीं की गई
0: जी,
1: ऐसा क्यों? तो ये तो संसद चलने पर ही होती है,
0: संसद चलने पर ही होती है और विधानसभा चलने पर भी होती है, और कभी रहता है और कभी नहीं हो पाती।
1: बिल्कुल, संसद की अगर कार्यवाही होगी तो वो जानकारी हम देंगे आपको,
0: वहां से जो आता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं।
1: और ये हम दिल्ली से रिले करते हैं,
0: दिल्ली से हम लोग रिले करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपने बिल्कुल सही कहा। और आगे इन्होंने लिखा है कि मनभावन कार्यक्रम 29 जुलाई 2026 के आपके पत्र कार्यक्रम में मेरा पत्र पूरा नहीं पढ़ा गया, इस बार विश्वास है कि मेरा पत्र पूरा पढ़ा जाएगा। तो आपका पत्र जो है बिल्कुल पढ़ा गया है और आपकी शिकायत भी पढ़ी
1: दूर हो गई होगी, क्योंकि पूरा पत्र आपका पढ़ा है। और
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद। एक और मेल दिख रहा है, और ये मेल आया है कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली।

0: श्रीमाली और अदिति का
1: क्या लिखते
0: और
1: हैं?
0: ये लिखते हैं कि 31 जुलाई को इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना जो कि इंदौर की गतिविधियों पर केंद्रित था। सुंदर प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान जी की थी, उन्होंने उन्हें दिल से धन्यवाद। और इसी दिन सुबह 7:35 पर सुनहरे पल के अंतर्गत मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि व अभिनेत्री मुमताज के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति मनोरंजक लगी। इसी दिन सुबह 8:30 मोहम्मद रफ़ी साहब पर केंद्रित कार्यक्रम दिल की गहराइयों को छू गया। दोनों कार्यक्रमों की अनूठी प्रस्तुति के लिए विजया जैन को धन्यवाद। 2 अगस्त को योग निरोग कार्यक्रम में बारिश के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा विषय पर डॉक्टर जगदीश जोशी से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की बातचीत बहुत ही स्वास्थ्यप्रद लगी। 3 अगस्त को गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम सुना, मनमोहक लगा। सभी महानुभावों के विचार दिल की गहराइयों को छूने वाले थे और अनूठी प्रस्तुति के लिए प्रीति जोशी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 अगस्त को ही सुबह 8:30 फिल्म संगीत के अंतर्गत शकील बदायूनी के गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम बहुत मनोरंजक लगा। उम्दा पेशकश के लिए माजिदा को बहुत धन्यवाद। 4 अगस्त को सुबह 7:20 पर सुनहरे पल में हरफन मौला किशोर कुमार की जन्म जयंती पर विशेष कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम में आकाशवाणी इंदौर के नियमित श्रोता आनंद जोशी की किशोर कुमार के अनछुए किस्से विषय पर आधारित चर्चा बहुत रोचक लगी। अनूठी पेशकश के लिए तृप्ति को धन्यवाद। और इसी दिन विविध भारती इंदौर पर सुबह 11:00 से 12:00 तक हेलो विविध भारती कार्यक्रम सुना जो कि महान गायक किशोर कुमार की जयंती पर केंद्रित था। लाजवाब प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी दिन विविध भारती पर शाम को चॉइस टाइम कार्यक्रम भी सुना, ये कार्यक्रम भी किशोर दा पर ही केंद्रित था। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष,
1: आपने हमारे सभी कार्यक्रमों को सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कितने सारे अपनी भावनाएं इन्होंने लिखा है
0: जी,
1: और ढेर सारे व्यक्त किया है। ऐसा लगता है कि इनका कोई भी पल ऐसा नहीं है
0: जो रेडियो से जुड़ा हुआ
1: बिल्कुल हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है सभी काम को करते हुए रेडियो को सुनना, आत्मसात करना और उसके अनुसार पालन करना, ढालना और अपने आप को आनंदित महसूस करना।
0: बिल्कुल, यही तो हमारे श्रोताओं की खासियत है कि वो अपने काम के साथ साथ हमारी आकाशवाणी इंदौर को लगातार सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी भेजते हैं, चाहे मेल हो, चाहे SMS हो या फिर व्हाट्सएप संदेश हो, लगातार वो हमें भेज रहे हैं।
1: हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आता है
0: जी,
1: आया है, लिखे हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार राजेश जी और मुकाम जी, मैं विक्रम चौधरी, गांव बगरी, जिला धार से। मेरे भाई लोग मनीष जीराती माधवपुर, उमेश वर्मा आर्मी महू से और धर्मेंद्र पटेल जी ये जीराती, बड़े भैया संजय चौधरी, मेरा बेटा अंश चौधरी, मुझे 1 अगस्त का सुनहरे पल बहुत अच्छा लगा और सावन से भरे गाने भी बहुत अच्छे लगे।
0: क्या बात है।
1: अब वास्तव में सुनहरे पल
0: जी
1: किशोर दाल के लिए सुनहरे पल था। और ऐसे हरफन मौला कलाकार के उनके सम्मान में जो हमारे केंद्र से जो प्रस्तुति दी गई बहुत ही लाजवाब थी।
0: बिल्कुल, किशोरदा
1: हमारे कई लोगों के दिल को छू लिया।
0: बिल्कुल, किशोरदा हमारे इंदौर और खंडवा के ही वासी रहे हैं
1: और
0: तो निश्चित तौर पर वो हमारे अपने हैं।
1: मैंने तो खंडवा में अपनी शासकीय सेवाएं दी है, वहां पे मंत्री विजय साहा जी भी कहा करते थे कि किशोरदा सम्मान जिनको लेना है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी कितने भी बड़ा कलाकार, वो खंडवा आकर दे।
0: बिल्कुल,
1: ये किशोरदा के प्रति कितनी आदर है।
0: और कल की ही बात है, अगर किशोरदा की जयंती पर लाखों जो है रेडियो की श्रोता भी
1: समाधि
0: स्थल पर पहुंचे,
1: कितने लोग स्वरांजलि दी।
0: बिल्कुल, दूध और जलेबी का भोग लगाया,
1: भोग लगा को,
0: और एक बहुत अद्भुत है और स्वर के माध्यम से किशोरदा को याद
1: और
0: किया।
1: वहां चाहे श्रोता हो
0: जी,
1: चाहे आम आदमी हो, सभी लोग एक एक गाना जरूर गाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहे अधिकारी, समाधि स्थल पर ऐसा लगता है कि अधिकारियों और जनता के बीच जो है सारी दूरियां खत्म हो गई।
0: बिल्कुल, स्वरांजलि,
1: तो वास्तव में ये एक सुशासन का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक माना
0: जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला पत्र हमें दिखाई दे रहा है, आनंद जोशी का है, ये खंडवासी ही आया है। दिनांक 4 अगस्त, आकाशवाणी इंदौर के लिए पार्श्व गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार खंडवे वाले के नाम रहा। कई सुधी श्रोताओं द्वारा किशोर

0: कुमार जी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां प्रेषित की गई आदरणीय राजेश जी और प्रीति छड़ीजार जी द्वारा विविध भारती इंदौर पर लाइव फोन इन कार्यक्रम और प्राइमरी चैनल पर सुनहरे पल कार्यक्रम के माध्यम से किशोरदा के बेहतरीन नगमों और उनके अनछुए किस्से सुनने को मिले। एक प्रभावी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है।
1: और इन्होंने व्हाट्सएप भी किया है,
0: जी
1: दोनों किए हैं, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद
0: जी
1: जोशी
0: जी
1: जी और तनुजा जोशी जी भी किए
0: बिल्कुल
1: हैं। वास्तव में इन्होंने जो किशोरदा के प्रति इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की
0: हाँ
1: और हमने शेयर किया
0: जी
1: और बहुत ही अच्छा लगा। लाजवाब,
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत
0: क्योंकि
1: धन्यवाद
0: इनकी
1: आनंद
0: ही
1: जोशी
0: इनकी
1: जी।
0: वार्ता भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, बहुत अच्छा लगा। एक और मेल दिखाई दे रहा है, ये आया है राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल का,
1: जी
0: और ये लिख रहे हैं कि आपके यहाँ से फोन इन कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं, और एक निवेदन हम कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं को शामिल करें ताकि अधिक से अधिक गीत उन्हें सुनने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें, ऐसा
1: बिल्कुल,
0: उनका कहना
1: आपका
0: है।
1: सुझाव हमने नोट कर लिया है। हम अपने उद्घोषक भाइयों और बहनों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक श्रोताओं के गीत पत्र मेल बिल्कुल शामिल करें, और करते ही रहते हैं। कभी कभी मुकाम जी क्या होता है,
0: जी
1: समय की कमी पड़ जाती है,
0: बिल्कुल
1: कभी ज़्यादा हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: तो एक नियत समय में सभी को समायोजित करना पड़ता है
0: बिल्कुल
1: और इसके कारण छूट जाते हैं, मैं ये बात मानता हूँ। फिर भी बिल्कुल कहीं ना कहीं तो जरूर आप हमारे दिलों में बसे हुए हैं, आप हमारे केंद्र में बसे हुए हैं, और कभी ना कभी तो आपका नाम तो हम बिल्कुल लेते ही हैं।
0: बिल्कुल। और एक और मेल है, और
1: जी
0: ये है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आया है। लिखने वाले हैं गुलाम साबिर राही महराज जहां अंसारी, और ये
1: जी
0: लिखते हैं कि विविध भारती और आकाशवाणी इंदौर को हम नियमित रूप से सुन रहे हैं और सारे कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। घंटाघर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया जी, प्रियंका पंचोलिया और संपीत पंचोलिया।
0: जी
1: लिखते हैं, किशोरदा के जन्मोत्सव 4 अगस्त पर आकाशवाणी इंदौर ने गीतों के माध्यम से बेहतरीन प्रस्तुति दी।
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और इसमें आपका भी योगदान रहा।
0: हम्म
1: मैंने पंचोलिया जी से निवेदन किया
0: जी
1: कि पंचोलिया जी, मैं तो अभी खंडवा में नहीं हूं,
0: जी
1: मैं यहां हूं,
0: हाँ
1: और जब भी मैं 4 साल खंडवा में
0: जी
1: रहा उनके साथ, और सभी देश विदेश के सारे श्रोतागण आते थे, और किशोरदा के समाधि स्थल पर पूरा रंगारंग कार्यक्रम होता था।
0: बिल्कुल
1: तो देखिए, हम नहीं भी हैं, लेकिन हमारी जो कमी
0: यादें
1: और श्रोताओं के बीच जो ये जो
0: जी
1: भावनाएं जो किशोरदा के प्रति हैं, उनके माध्यम से अन्य श्रोताओं तक हमने पहुंचाया, और
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़ा योगदान दिया पंचोलिया जी ने।
0: बिल्कुल
1: आगे इन्होंने लिखा है कि शाम को चॉइस टाइम प्रोग्राम में मनीष कुमार सोनी जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी,
0: जी
1: और मनीष सोनी जी ने भी किशोरदा के केंद्रित पर कार्यक्रम किया,
0: बिल्कुल
1: और आकाशवाणी इंदौर अवसर विशेष पर जागरूकता के साथ प्रोग्राम पेश करता आया है। इसके लिए तहे दिल से उन्होंने आपको भी और हमें भी नमस्कार
0: धन्यवाद
1: किया।
0: कहा, बहुत
1: आपको
0: बहुत
1: भी
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत।
0: आपको, आपने बहुत अच्छा पत्र लिखा। और
1: सबसे बड़ी बात पंचोलिया जी में है, मैंने
0: जी
1: तो देखा है
0: बिल्कुल
1: किशोरदा के जो गीत हैं, सारे गीत अमर हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए अब किशोरदा के तरह, उनके तरह तो नहीं हो सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन उनके तरह अगर गायक पैदा होते हैं तो बहुत बड़ी बात है।
0: जी
1: और संजय पंचोलिया जी के घर में शाम में किशोरदा की महफिल लगती है, और वहां पर जो है उनके गीत गाए जाते हैं।
0: जी
1: मैंने भी और कई अधिकारी भी स्वेच्छापूर्वक जाते हैं और गुनगुनाते हैं,
0: क्या बात है,
1: तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है
0: बिल्कुल
1: एक गायक को।
0: बिल्कुल वैसे देश भर में किशोरदा को खूब याद किया जाता है, देश भर ही क्यों, विश्व भर में किशोरदा के गीत सुने जाते हैं। अब
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और यूट्यूब का ज़माना है, तो किशोरदा को अब पूरे विश्व भर में सुना जा रहा है।
1: बहुत बहुत
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पत्र है ये आया है सनावद जिला खरगोन से, हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव काव्यांशी और प्रभा कटारिया का, और बहुत लंबा पत्र है।
1: जी
0: और ये लिखते हैं कि आदरणीय दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को सादर प्रणाम,
1: आपको भी नमस्कार।
0: 29 जुलाई को आपका पत्र कार्यक्रम में पाठक जी और शालिनी जी की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही।

0: दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में लगभग 17 से 18 पत्रों को स्थान दिया गया, दूर दूर के श्रोताओं ने भाग लिया और इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद कहा है। 29 जुलाई को चॉइस टाइम कार्यक्रम हमने सुना, जिसे मैंने प्रस्तुत किया था, आनंद लिया एक से बढ़कर एक गीतों को, जिसमें सावन और बरसात के गीतों को शामिल किया गया था, बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। और 31 जुलाई को हमने इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना, मोहम्मद रफी साहब की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ गीतों को सुना, और उन्होंने तो गीत तक लिख डाले, तुम मुझे भुला ना पाओगे, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, अल्लाह के नेक बंदे आपके पहलू में आकर रो दिए और गालो मुस्कुरा लो, क्या बात है, बहुत ही ध्यान से सुना इन्होंने। और इसके लिए जो कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया था इंदौर परिक्रमा, इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और 31 जुलाई को ही मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि और मुमताज जी के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, वो कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। योग निरोग के बारे में लिख रहे हैं कि योग निरोग कार्यक्रम जो कि प्रसारित हुआ था वो भी इन्हें बहुत पसंद आया, और झूमता सावन देखो आया बरसात, ऐसे गीत इन्हें बहुत पसंद आए।
1: और हम अपने श्रोताओं को एक बात और जी याद दिला दें
0: जी,
1: सहज योग भी हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हम लोग किए हैं,
0: हाँ,
1: और काफी अच्छी अनुभूति होती है
0: जी।
1: इस पर भी केंद्रित कार्यक्रम हम निकट समय में बिल्कुल जल्दी ही आपको सुनवाएंगे। हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है प्रवीण सिरेमाली जी का नर्मदे हरे के साथ। इन्होंने प्रातः सवेरे सवेरे नर्मदा जी का दर्शन किया और एक जो है कितनी इन्होंने सुंदर नर्मदा जी के दर्शन के साथ वीडियो बनाया है, हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर किए। और श्रावण लिखे हैं, श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, ओंकारेश्वर से उज्जैन कांवर यात्रियों का नगर से निकलना आरंभ हो चुका है। रोजाना हमारे शहर बड़वाह से हजारों की संख्या में कांवर यात्रियों का आगमन होता है, नगर में उनका जगह जगह स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाता है, साथ ही उनके ठहरने, चाय पानी, फलाहारी, खिचड़ी की व्यवस्था भी की जाती है।
0: बिल्कुल,
1: काफी अच्छी व्यवस्था लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जैसे उज्जैन में निकाली जाती है वैसी ओंकारेश्वर में भी।
0: बिल्कुल, कांवड़ यात्रा जो है ओंकारेश्वर से उज्जैन तक पहुंच जाती है,
1: में काफी श्रद्धालुओं की,
0: महेश्वर से ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से उज्जैन, ऐसी लगातार चलती है। और एक और पत्र है, यह है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम वंदना, भावना बिंदु, गोलू कुसुम्बाई और बाबू रियांश नागनपुरे का है। नमस्कार, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 3 अगस्त 2026 के दिन सोमवार को आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित मराठी कार्यक्रम सुनने को मिला और बहुत अच्छा लगा। चातुर्मास विशेष पर नीलेश चापेकर जी से रेवंती संत की बातचीत भी बहुत अच्छी लगी, ये कहना इनका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास मोहम्मद यूनिस खत्री जी, मोहम्मद सादिक खत्री जी, आयूब खत्री जी, ये चीपा कॉलोनी खंडवा से ये लिखे हैं। इन्होंने लिखा है, आपके पत्र कार्यक्रम में हमें और आपको इन्होंने नमस्कार किया है और लिखे हैं कि ईमेल कहाँ गायब हो जाता है आजकल, ईमेल गायब नहीं होता है, कहीं आप बिंदी छोड़ देते हैं, कहीं लेटर स्मॉल और ये कर देते हैं, इसके कारण ईमेल नहीं आ पाता है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, ध्यानपूर्वक एक बार और ईमेल बता दें
0: जी,
1: सभी स्मॉल लेटर में है।
0: बिल्कुल, आपका पत्र indoor@gmail.com
1: एक एक लेटर्स के साथ।
0: बिल्कुल, ये है APKAPATRAINDORE@gmail.com
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे
0: और
1: पास
0: अभी लगातार पत्र आ रहे हैं, और एक पत्र है हनुमंत शिंदे रूप ऋषिकेश शिंदे का, ग्राम शिरटे जिला सांगली महाराष्ट्र से।
1: क्या लिखते हैं?
0: और प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, 3 अगस्त को सुबह प्रसारित मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से व्हाट्सएप किए हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोराना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप।

0: लिखे हैं आकाशवाणी इंदौर से, इस सप्ताह जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एक से बढ़कर एक थे, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे। इस सप्ताह मनभावन का हमने बहुत आनंद लिया और सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। युवानी कार्यक्रम के सभी प्रोग्राम भी मैंने सुना, सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। प्रस्तुतकर्ता को इन्होंने धन्यवाद दिया है,
1: बिल्कुल
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिखने वाले हैं भैरूलाल बाख्तरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है 4 अगस्त को सुबह सुनहरे पल में किशोर कुमार जी के गीत सुनाए गए और खंडवा के श्रोता आनंद जोशी जी से किशोर कुमार जी पर केंद्रित जो बातचीत सुनाई गई काफ़ी लाजवाब थी। और 9:45 पर शासकीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित अजय शर्मा जी से ठुमरी गायन का भी मैंने आनंद लिया।
1: क्या बात।
0: और इस सप्ताह इंदौर परिक्रमा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर में हुए विभिन्न आयोजन की जानकारी दी गई हमारे केंद्र से, और मुकाम सिंह चौहान जी की प्रस्तुति काफ़ी अच्छी लगी। क्या बात है, मुकाम सिंह चौहान जी, आप तो पूरे छा गए।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो पत्र है यह है खरगोन के सनावत से आया है, अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा का, और ये लिख रहे हैं कि आप दोनों को सादर नमस्कार। आकाशवाणी इंदौर से सप्ताह भर के सारे कार्यक्रम जो है हम लगातार सुनते हैं और जिसमें मनभावन कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मनभावन जो कार्यक्रम है मन को भा लेता है सभी श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: अगला मेल,
1: अगला मेल भी आया है और ये मेल आया है बीएल धाकड़ का।
0: जी, क्या लिखते हैं?
1: भैरूलाल वाक्तरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन से, और लिख रहे हैं कि मंगलवार,
0: ये तो अभी अभी भी लिख चुके हैं।
1: जी जी जी जी, हाँ ये तो हम
0: दूसरा मेल पर है।
1: बिल्कुल, दूसरा मेल भी हम
0: डबल डबल ना भेजें।
1: जी जी,
0: मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करते हैं।
1: बिल्कुल, शाहजी बोड़खे का ये मेल आया है,
0: इनका भी
1: आप भेज चुके हैं व्हाट्सएप
0: पर। हमारे बीच जो है एक और व्हाट्सएप के जरिए लिखे हैं
1: जी,
0: जैसे किशोर दा के जो फैन हैं
1: जी, जी।
0: सभी जगह, केवल खंडवा में नहीं, सभी जगह अपने अपने कार्यक्रम किए और आनंदित हुए। सनावत में भी रेडियो श्रोता संघ ने किशोर दा का जन्म दिवस मनाया और इस अवसर पर गीत भी गाए।
1: बिल्कुल,
0: एक झलक हम आपको सुनवा रहे हैं, हुकुम चंद कटारिया जी
1: जी।

0: आप देख रहे हैं इस वीडियो में जो है ढेर सारे किशोर दा के प्रेमी जो है सनावद में हुकुम चंद कटारिया जी के साथ आनंद ले रहे हैं। किशोर दा का फोटो देखिए और काफी पुराने जमाने के फोटो लगे हैं। वास्तव में ये दिल को जो है
1: जी एक और
0: आनंदित कर देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल लग।
0: तो ऐसे हमारे किशोर दा के प्रेमी हैं, पूरे विश्व में इन्होंने आनंद लिया, सारे विश्व के सारे श्रोताओं ने किशोर दा के जन्म दिवस पर जितने भी कार्यक्रम प्रसारित किए गए सभी आनंदित हुए।
1: बिल्कुल।
0: और एक और हमारे बीच खरगोन से
1: हाँ।
0: प्रमिला मिश्रा जी, राजेंद्र मिश्रा जी और पूरे परिवार लिख रहे हैं कि आपके मोबाइल ऐप के द्वारा आकाशवाणी के जो कार्यक्रम सुना जाता है लाजवाब रहता है, व्हाट्सएप ईमेल से भी प्रारंभ करें। तो ये तो ऐप के माध्यम से आप आकाशवाणी केंद्र को सुनते हैं, ये न्यूज़ ऑन AIR ऐप है, गवर्नमेंट का ऐप है, आप इसके जरिए आकाशवाणी को आप बिल्कुल सुन सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि हम आकाशवाणी के प्रारंभ 22 मई 1955 से इस केंद्र को सुन रहे हैं, बीच में कुछ अवरोध आए थे पर अब पुनः हमें आकाशवाणी से जुड़ने का अवसर मिला।
1: बिल्कुल बहुत बिल्कुल राजेश जी, मेल ईमेल के साथ में इलेक्ट्रॉनिक संदेश के साथ में कुछ पत्र भी मेरे हाथ में है और उनमें से एक पत्र है ये BR नामदेव का और एरोड्रम रोड सोमानी नगर इंदौर से ये लिख रहे हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुन रहे हैं और मन भावन है चॉइस टाइम कार्यक्रम के साथ ही विविध भारती FM आपकी पसंद जो कि प्रातः 11 से 12 बजे प्रसारित होता है ये कार्यक्रम भी हमें बहुत पसंद आता है और इसमें हमें सदाबहार नगमे सुनने को मिलते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सोहन जोशी जी, हरमिंदर सिंह चावला, आकाश शर्मा, लोकेश जोशी जी, मनीष वर्मा, रिहान खान, अकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, अर्चना जोशी, पायल जोशी, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर जी ने ये इन्होंने लिखा है कि हम आपके नियमित श्रोता हैं और सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है। इस सप्ताह मैंने आकाशवाणी इंदौर के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम सुने, किस किस को मैं जिक्र करूं, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे, इनको मनभावन कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, सभी को बधाई दिया है और ये अपना भी कार्यक्रम श्रोताओं के साथ शेयर करते हैं, अस्मिता रेडियो फेस ग्रुप लाइव शो ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही देखिए ये तो ग्रुप लिसनर्स हैं, हमारे कार्यक्रम को सुनते भी हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक और कमलेश सदाशिव जोशी 53 गिरधर नगर इंदौर से इन्होंने लिखा है और आप देख रहे हैं कि पत्र लिखे हैं और ये व्हाट्सएप पत्र को ही व्हाट्सएप
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और इन्होंने पत्र में इन्होंने लिखा है इंदौर के दैनिक कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगता है और नई दुनिया में अंतिम पत्र के साथ रोचक टिप्पणी तर्ज पर पेश की है। सजीव फोन इन कार्यक्रम में कहा जाता है कि श्रोताओं के फोन कॉल लगा दो, वो महीनों तक नहीं ये फोन लगाते हैं, इनकी हैंडराइटिंग स्पष्ट नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इन्होंने लिखा है कि बार बार भेजने पर भी ये शामिल नहीं होता है। तो देखिए एक तो सबसे और ऊपर लिखा है कि अंतिम पत्र
1: जी,
0: सबसे पहले अंतिम पत्र आपका शामिल हो गया है और बिल्कुल ऐसा लिखें स्पष्ट होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कहाँ एक शब्द कहाँ है, दूसरे शब्द कहाँ है। तो जब आप स्पष्ट लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी मजा आएगा और सुनने वाले को भी मजा आएगा।
1: शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे
0: शब्दों का जो संयोजन है
1: हाँ,
0: ये सही नहीं लग रहा।
1: हमारे फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते होंगे लेकिन शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है इनका।
0: तो देखिये फोन इन कार्यक्रम में तो हम शामिल करते ही रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इतने फोन आते हैं कि लाइन तो एक ही रहता है, एक करते हैं दूसरा छूटता है, फिर भी आपका शामिल हो गया, अंतिम पत्र जो आपने लिखा था शामिल हो गया, दिल में मलाल खत्म हो गया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: धन्यवाद। और हमारे पास व्हाट्सएप संदेश के जरिए शेख फई मोहम्मद और तस्लीम शेख ने भी, आपने भी पढ़ दिया है इनका
1: जी जी,
0: फई मोहम्मद जी
1: बिल्कुल,
0: का
1: बिल्कुल।
0: ये डबल डबल इन्होंने लिखा है,
1: इन्होंने शायद एक और बातें इसमें जिक्र की है और ये दूसरे प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हैं कि
0: उसको बाद में पढ़ेंगे, हमारे पास दूसरे श्रोताओं के
1: बिल्कुल आप पढ़िए।
0: व्हाट्सएप संदेश आ गया है, कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान, ये लिखते हैं कि पाठक जी और मुकाम जी कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गुरु पूर्णिमा पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वो काफी अच्छा लगा
1: जी।
0: आप पूर्व में खंडवा में पदस्थ थे और पिछले शुक्रवार मुकाम सिंह चौहान जी ने इंदौर परिक्रमा में जो कार्यक्रम पेश किया काफी अच्छा था और गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से जानकारी दी गई। सदाबहार गानों से हमारा दिन जो है सुहाना बना दिया गया और 4 अगस्त को किशोर कुमार जी की जन्म जयंती पर जो कार्यक्रम सुनहरे पल में पेश किए गए वो कार्यक्रम जो है वास्तव में लाजवाब थे। और अगला मेल
1: जी, और मुझे ऐसा लगता
0: इसी
1: है कि
0: प्रकार
1: हमारे पास राम अवतार
0: तिवारी जी ने भी बगरी जिला धार से पत्र लिखा है, बिल्कुल आपका भी पत्र
1: शामिल हो चुका है
0: बिल्कुल। और इसके साथ दयाशंकर अमझरे जी पलसू जिला बरवानी से लिखा है, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और महाकाल की जो सवारी जो आपके केंद्र से प्रसारित की गई काफी अच्छा लगा। श्रीनिवास देश पांडे जी इंदौर से लिखे कि आपका मराठी कार्यक्रम भी काफी अच्छा लगता है, गीत भी अच्छे लगते हैं, घड़ी की सुई जो है इशारा कर
1: रही है
0: विदा लेने की, लेकिन व्हाट्सएप संदेश और पत्रों और मेल की बरसात हो रही है, समय की कमी को देखते हुए अब हम लेते हैं आपसे विदा,
1: कहें नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे राजेश जी और मैं मुकाम सिंह चौहान। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
4: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
5: इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
3: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।

0: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की 3री बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्थल पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17

0: अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसिलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल न बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की।

गीगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर सुन रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। नमस्कार श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत में बातें सावन और सावन के गीतों पर केंद्रित नगमों की। मित्रों, काले बादलों की उमड़ घुमड़, सौंधी मिट्टी की खुशबू, पत्तों पर थिरकती बूंदें और दिल में एक अनाम सा उत्साह। जब सावन आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, पूरा मयूर मन नाच उठता है। और जब बात सावन की हो तो भला हमारा हिंदी सिनेमा कैसे पीछे रह सकता है। भारतीय सिनेमा में सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक खूबसूरत माध्यम रहा है। कभी यह मिलन की खुशी लेकर आया तो कभी विरह का दर्द, कभी झूले की पिंगों में उमंग लाया तो कभी भीगी सड़कों पर रोमांस।

ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सावन की शुरुआत होती है बादलों के देवदूत बनकर आने से। गांव की अमराइयों में जब झूले पड़ते हैं तो सखियां गा उठती है। 1967 में आई फिल्म मिलन का ये गाना आज भी सावन की पहली फुहार जैसा ताजा लगता है, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने स्वरबद्ध किया और आनंद बख्शी साहब ने लिखा।

पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: सावन की लयबद्धता दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है, और जब सावन में रोमांस का जिक्र हो तो एक काली छतरी, मुंबई की भीगी सड़कें और अमिताभ बच्चन मौसमी चटर्जी का वो सादगी भरा अंदाज याद ना आए, यह तो हो ही नहीं सकता। मंजिल फिल्म का ये गाना RD बर्मन और किशोरदा की जादूगरी से बना है, जो हर पीढ़ी को गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है।

दोस्तों, सावन सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, सावन तो नाम है यादों का, उस खालीपन का जो अपनों के दूर होने पर दिल में बस जाता है। जब बाहर बारिश की बूंदें गिरती है तो अंदर आंखों के कोने भी छलक उठते हैं। चांदनी में लता मंगेशकर जी की आवाज में पिरोया यह गाना सावन के उस रूप को दिखाता है, जहां सावन आता तो है लेकिन दिल को तन्हा कर जाता है।

समय बदला, सिनेमा का दौर बदला, लेकिन सावन का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। 90 के दशक में जब मोहरा फिल्म आई तो सावन का एक नया ही ऊर्जास्वित रूप देखने को मिला। टिप टिप करती बूंदों ने संगीत की ताल पर ऐसा धमाल मचाया कि आज भी यह गाना हमारा पसंदीदा गाना बन जाता है।

सावन आता है चला जाता है, लेकिन गानों के रूप में सावन की ये बूंदें हमारे दिलों में हमेशा खुशी लेकर आती है। सिनेमा ने हमें सिखाया है कि चाहे दिल खुश हो या उदास, सावन के पास हर भावना का एक गीत मौजूद है। आशा है कि गानों की इस रिमझिम फुहार ने आपके दिल को भी छू लिया होगा। अपनी यादों की छतरी संभाले रखिए और सावन के इस मौसम का भरपूर आनंद लीजिए।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, और आज के फिल्म संगीत में हमने बातें की हिंदी फिल्मों में सावन के गीत और उसकी बातें, और उसी पर केंद्रित गीत आपने सुने। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा पगारे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आइए सुने ये पहला लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लोक संगीत कार्यक्रम और कलाकार हैं शारदा पगारे। आइए सुने शारदा पगारे की आवाज में ये अगला लोक गीत।

आप सुन रहे थे शारदा पगारे के गाए लोकगीत, और इसी के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं राधा कुलकर्णी। आइए सुने राधा कुलकर्णी की आवाज़ में ये गज़ल, आबिद गुलरेज़ की है।

आबिद गुलरेज़ की लिखी ये गज़ल आप सुन रहे थे राधा कुलकर्णी की आवाज़ में। कार्यक्रम के आखिर में सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी की लिखी ये गज़ल, आवाज़ राधा कुलकर्णी की।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राधा कुलकर्णी की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन पहले आपको हेलो डॉक्टर कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। इस गुरुवार यानी कल 6 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय रहेगा स्तनपान, भ्रांतियां एवं तथ्य। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा पौराणिक से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को सुबह 10:30 बजे। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित सुरेश शंकर अवस्थी का गायन राग बिलास खानी तोड़ी। संगतकार हैं तबले पर इस्माइल दादू खान और सारंगी पर अब्दुल समद खान। रचना विलंबित एक ताल, द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध हैं।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे सिवनी जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिवनी जिले में इस बार पर्याप्त बारिश के चलते खरीफ फसल की पैदावार काफी अच्छी होने की संभावना है। पिछले वर्ष धान की बुवाई 1,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो पाई थी, जो इस वर्ष 1,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इसी तरह मक्का फसल इस वर्ष 1,40,000 हेक्टेयर में बोई गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। कृषि

विशेषज्ञों ने लगभग रोज हो रही बारिश को सोयाबीन और मक्का फसल के लिए नुकसानदायक और धान के लिए लाभदायक बताया है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरण दावों के निराकरण के लिए जिले में 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार दावों का नियमानुसार शत प्रतिशत परीक्षण एवं निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान अवधि में प्राप्त होने वाले नए दावों को भी स्वीकार कर उनका परीक्षण किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए कलेक्टर नेहा मीणा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सिवनी जिले में दस्तक से स्टॉप डायरिया अभियान 31 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों का घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बीते दिनों सिवनी में आयोजित हुए बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हमारे किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। वे अपने अथक परिश्रम से पूरे समाज का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा देश और प्रदेश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल गया है और ये हमारी देशज और पारंपरिक कृषि का वैश्विक सम्मान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3,941 किसानों को 1,000 रूपए प्रति क्विंटल की दर से कोदो कुटकी के बोनस के रूप में 2,82,99,300 रूपए की प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में अंतरित की। बीते मंगलवार को केवलारी में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कलेक्टर नेहा मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में 619 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने पूरे धैर्य, आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ एक एक आवेदक की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर नेहा मीणा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को प्राथमिकता के साथ लेकर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पिछले दिनों जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया गया, जिसका समापन 30 जुलाई को किया गया। ये अभियान जिले के सभी विकास खंडों में संचालित किया गया। इस अभियान के तहत जिले के सभी विकास खंडों, शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीते दिनों विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला जेल नगझर और जिला बाल सुधार गृह सिवनी में हेपेटाइटिस बी एवं सी जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान जिला बाल सुधार गृह के 100 बंदियों की हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की गई, जिसमें एक बंदी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया। वहीं जिला जेल नगझर में 269 बंदियों की जांच की गई, जिनमें 3 बंदी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाए गए। वहीं अगर सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो बीते दिनों सिवनी में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सिवनी के कवियों और शायरों ने श्रोताओं के बीच अपनी पसंदीदा रचनाएं सुनाई। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ 7 अगस्त से किया जाएगा। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। कलेक्टर नेहा मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाते हुए आमजन तक शासन की सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान की अवधि में प्रत्येक शुक्रवार सभी जिला एवं मैदानी अधिकारी अनिवार्य रूप से फील्ड में रहेंगे। इस दिन जनसंवाद, निरीक्षण और शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रमण से पूर्व संबंधित क्षेत्र की CM हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण की तैयारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सिवनी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुन रहे थे सिवनी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार श्रोताओं, हेलो। एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान आज इस कार्यक्रम के साथ में है और निवेदन हम कर रहे हैं हमारे उन श्रोताओं से जिनके कॉल लगातार शामिल हो रहे हैं, जो लगातार कोशिश करते हैं और जुड़ जाते हैं। लेकिन आपकी वजह से ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो देश भर में विविध भारती और आकाशवाणी इंदौर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वह जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो श्रोताओं, क्यों ना आप उन्हें मौका दो ना। अच्छा लगेगा अगर आप हमारे नए श्रोताओं को मौका देंगे तो वे भी अपनी बात रख सकेंगे, आकाशवाणी इंदौर से जुड़ सकेंगे और विविधता के बारे में हमें बता भी सकेंगे और उनकी पसंद का गीत भी वो सुन सकेंगे। इसलिए निवेदन है कि आप हमारे उन श्रोताओं को भी मौका अवश्य दें। एक मौका देकर देखिए तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। और अब जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता। हेलो,
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं कृष्ण बाग कॉलोनी से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ सर।
1: जी,
2: आप
1: मंसूरी जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: तमाम शिकायतों को दूर करते हुए मैं आप सभी को सावन की मुबारकबाद देता हूँ
1: जी
2: और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी श्रोताओं को, क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं तक, हम तक पहुंच रहे हैं और हमारा निवेदन तो आप ही सुन ही चुके होंगे।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल बराबर, उसको नियम का पालन करूंगा और आने वाले श्रोता भी इसका पालन करें।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है हम लोग अगर मौका
2: हाँ,
1: देते हैं,
2: उनसे
1: क्योंकि
2: भी ज्यादा
1: हमारी संस्कृति में
2: श्रोता।
1: त्याग है, दूसरों को मौका देने की भावना है हमारे पास।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या है कि अच्छा लगता है कि जिस श्रोता में मिलकर रहेंगे वो
1: जी
2: सुनते रहेंगे,
1: हाँ
2: और हम पुराने श्रोता तो है ही, आपको
1: बिल्कुल
2: जाएंगे नहीं बल्कि नए श्रोताओं को जोड़ने की कोशिश होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और
1: बहुत सारी
2: साथ
1: हमारी
2: साथ
1: युवा पीढ़ी भी है जो जुड़ना
2: हाँ
1: चाहती है, क्योंकि उनके अनुभव भी अलग-अलग हैं। युवा पीढ़ी की
2: बहुत
1: सोच
2: अच्छा
1: अलग है,
2: सुनते
1: उनके
2: अच्छे
1: अनुभव
2: लगते हैं।
1: अलग हैं और उनकी
2: हाँ
1: पसंद भी कुछ और है, तो हम उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो बाकी वरिष्ठ श्रोता हैं, वरिष्ठ साथी हैं, वो भी अपनी बातें रख सकते हैं, तो इसलिए आप मौका दें और अच्छा लगेगा। और आपकी पसंद का गीत कौन सा है वो बताइए।
2: सर, निगाहें का गाना है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया है।
1: क्या बात है, सावन
2: ये
1: के
2: सावन की
1: झूले जो है लग चुके हैं और
2: हाँ
1: लोग आनंद ले रहे हैं सावन का।
2: ले रहे हैं और कांवड़ यात्रा से चल रही है और
1: जी
2: आने वाला जो समय स्वतंत्रता दिवस है
1: जी
2: उसका जो प्रभाव है बड़ा अच्छा, मनोरंजक दृश्य रोड सड़कों पर
1: बिल्कुल
2: देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, ये जो महा है एक तरह से आजादी
2: पवित्र महा है।
1: के जश्न में भी डूबा हुआ है और
2: हाँ
1: देशभक्तों को याद कर रहा है, क्योंकि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो पूरा के पूरा पाक्षिक है, पक्ष है 15 दिन का,
2: जी
1: वो पूरी तरह से देश की आजादी के जश्न में डूबने का वो है। और हम सभी हमारे देशभक्तों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें।
2: बेशक
1: और
2: बेशक
1: हर
2: बिल्कुल
1: घर तिरंगा अभियान भी चलने वाला है, उसमें हम सहयोग
2: और एक
1: करें।
2: हाँ, अब क्योंकि आप टाइम मिलेगा नहीं सर,
1: जी
2: तो एक गाना सुनना चाहता हूँ कि
1: जी
2: हम एक है, हम एक है, मजहब जुदा जुदा सही लेकिन वतन तो एक है, फूल रंग रंग के लेकिन चमन तो एक है, मजहब के हामी कोई बुझ दिल नहीं है, हम झुक सकता नहीं है जुल्म के आगे तिरंगा, इस पर तो बहा सकते हम खून की गंगा, इस पे बहा सकते हैं खून की
1: क्या
2: गंगा।
1: बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे भाव और आपकी पंक्तियां बहुत अच्छी रही। और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो MH हॉटलाइन।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं?
1: प्रश्नपाल परमार, शायन मेना, सोनकच्छ तहसील, देवास जिले से।
0: जी जी जी, परमार साहब, आप हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं, टेलीफोन के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं आप।
1: करीबन 1996-1996 लगातार सुनते आ रहे हैं आपके कार्यक्रम।
0: अच्छा, और MH हॉटलाइन कार्यक्रम में पिछली बार कब जुड़े थे आप?
1: मेरे को हो गए 1.5 से 2 महीने के बीच।
0: बहुत सब्र रखा आपने, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो अपना धैर्य तोड़ देते हैं। हालांकि अच्छी बात है, हमारे कार्यक्रम से जुड़ना भी अच्छा लगता है और जुड़ें, लेकिन थोड़ा सा अंतराल देकर, है कि नहीं? हाँ, तो परमार साहब, कौन सा गीत सुनवा दें?
1: दो रास्ते पिक्चर का गाना।
0: कौन सा गीत?
1: सारे नजारे,
0: दिल ने दिल को पुकारा।
1: जी
0: जी जी जी जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया ये गीत है, दो रास्ते फिल्म का। और अभी सावन के झूले लगे हैं और भक्ति और आस्था का माहौल सभी जगह व्याप्त है, तो क्या विशिष्ट रहता है सावन के महीने में, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं तो सिलाई का काम करता हूँ। छोटी सी दुकान है सिलाई की।
0: जी
1: जी सर।
0: और विविध भारती और आकाशवाणी इंदौर सुनते हैं?
1: हाँ, रेडियो चलता है ये सर। ये इंदौर और भोपाल सुनते हैं, सुनते हैं।
0: जी जी, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो सिलाई का काम करते हैं, वो रेडियो के माध्यम से सुनते रहते हैं हमारे कार्यक्रम। तो क्या बहुत आसान रहता है गाने चलते रहें और आपका काम?
1: उसमें क्या है, टाइम पास हो जाता है और कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो पाते। एक बार रेडियो चालू कर दो तो शाम तक चलता रहे।
0: अच्छा, अभी आज़ादी महोत्सव आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, और अभी ये पूरा कि पूरा सप्ताह हमारी देशभक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है, तो आपके सोनकच्छ के क्रांतिकारियों के बारे में या स्वाधीन

0: हेलो विवेक, हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम जी। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो, पर्वत सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी धामनोत में ही, या धामनोत के पास में कोई गांव है आपका? जी। तो भाई साहब कौन सा गीत सुनेंगे आप? तो ऐसे ना थे किन की आवाज में, क्योंकि इसी गाने को तीन आवाज में गाया गया है।
1: मोहम्मद
0: अच्छा, रफी साहब की आवाज में सुनेंगे। जी। तो धामनोद के आसपास का क्षेत्र तो अभी बहुत ही अच्छा हो गया होगा, क्योंकि अब माँ नर्मदा के आसपास का क्षेत्र जो है हरित चारत चादर ओढ़े हुए हैं, और पर्यटकों के लिए भी बहुत आनंददायी हो जाता है ना। तो धामनोद के आसपास घूमने लायक कहाँ कहाँ स्थान है, क्या क्या है?
1: क्या।

जो स्थान है नीलकंठेश्वर महादेव, वहां के दर्शन कर सकते हैं इन दिनों, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा नीचे है वो, तो इस वक्त तो पानी की धारा तेज बहती होगी, तो शायद पानी भर जाता होगा ना, ऐसा। क्या बात है, अच्छी जानकारी दी, और आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है जी, धन्यवाद।

0: मैच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: बहुत बहुत नमस्कार सर आपको।
0: जी नमस्कार,
1: और मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: जी जी जी जी बना

0: से आप बोल रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय साहब की नगरी से बोल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बारे में आप हमसे अपनी बात साझा करें। अपने स्थानिक क्षेत्र में बहुत सारे स्वाधीनता सेनानी हुए हैं, हम नहीं जानते होंगे, लेकिन आप आपके माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोता जान पाएंगे। तो क्या आप जानकारी देंगे?
1: सर देखिए, बनारस में तो वैसे बहुत क्रांतिकारी हुए हैं, और लेकिन यहाँ का एक जो स्थानीय क्रांतिकारी है उनका नाम शिव प्रसाद गुप्त जी जो है,
0: जी जी,
1: वो सक्रिय रूप से क्रांतिकारी रहे हैं और क्रांतिकारियों की बहुत मदद करते रहे, उनके लिए मतलब कि पैसे की व्यवस्था करते रहे, उनके रहने की व्यवस्था करते रहे।
0: जी जी।
1: और उस समय उनके दवा दारू की भी व्यवस्था करते रहे। तो ये हमारे शिव प्रसाद गुप्त जी जो है,
0: जी जी,
1: वो टोटल बनारस के हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल।
1: और वैसे यहाँ जो भी क्रांतिकारी आते थे उनके रख रखाव का, भोजन पानी का व्यवस्था करते थे। और सर मैं बताना चाहूंगा
0: जी
1: कि चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ आ चुके हैं,
0: बिल्कुल,
1: और यहाँ भगत सिंह भी आ चुके हैं।
0: बिल्कुल, बनारस तो क्रांतिकारियों का एक स्थल हुआ करता था, जहाँ पर सभी लोग एकत्र होते थे और आजादी की लड़ाई के लिए।
1: मालवीय जी, सर मालवीय जी भी यहाँ रहे
0: जी।
1: अब उन्होंने देखे कि यूनिवर्सिटी की स्थापना की।
0: जी जी बिल्कुल। तो आपका बनारस तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है एक तरह से आजादी की लड़ाई में।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए आध्यात्म की दृष्टि से भी है, क्रांतिकारियों की दृष्टि से है, धार्मिक दृष्टि से है।
0: जी जी।
1: और सर यहाँ पर बड़ी बड़ी विभूतियाँ पैदा हुई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे गिरजा देवी है, और भाई पंडित बिस्मिल्ला खां है
0: जी,
1: और पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत महान महान हस्तियां पैदा हुई है यहाँ पर।
0: बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और श्रावण मास चल रहा है, तो अभी तो वहां पर जिस प्रकार से भक्तों का जो आगमन हो रहा होगा वो ऐतिहासिक होगा। किस तरह से चल रहा है?
1: बिल्कुल सर, यहाँ जब से सावन चढ़ा हुआ है कांवड़ियों का लगातार आना जाना हो रहा है, और काफी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है, और एक एक दर्शनार्थी को दर्शन करने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी भीड़ होती है,
0: लेकिन सुखद अनुभूति यह है कि माँ गंगा जी वहीं पे हैं, वहाँ से जल लेकर बाबा विश्वनाथ तक पहुँचने में आसान है।
1: सर बहुत खूबसूरत बन गया, पहले से बहुत खूबसूरत, जैसे सर आपका इंदौर है सर
0: जी,
1: वैसे ही मेरा शहर खूबसूरत है। घाटों पर गलियों में कहीं भी घूमेंगे आपको गंदगी कहीं नहीं मिलेगी।
0: क्या बात है।
1: और इस बात की बड़ी ध्यान बहुत सुरक्षा की जाती है, कोई गंदगी ना करे
0: जी। तो
1: यहाँ पर गंगा में एक क्रूज चलता है, इस समय गंगा जी में पानी बढ़ा हुआ है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो सैलानियों घुमाने के लिए एक बड़ी जो क्रूज है वो चल रही है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और अब बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: सर चुपके चुपके का सुना दिए, सावन का महीना चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपकी सजन सावन में आग लगेगी बदन में
0: जी।
1: और सर दो लाइनें कहना चाहूंगा।
0: जी कहिए कहिए कहिए। हाँ,
1: कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण होगा
0: जी,
1: सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा नाम शमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ।
0: क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छी पंक्तियां और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन
0: जी, नमस्कार
1: मुकाम जी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: महीने में लगा था मुकाम जी मेरा फोन
0: जी।
1: कब? पिछले महीने में लगा था, एक महीना होगा करीब।
0: एक महीना हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो आपकी पसंद का गाना बताइएगा। वैसे एक श्रोता और जुड़ रहे हैं, क्या हम उनका कॉल भी ले लेते हैं? हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: हाँ श्रीमान, नमस्कार
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: पटेला, तहसील ललोरा, जिला मंदसौर से आश्रम बामिया बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है, दो श्रोता हमारे साथ में हैं, धर्मपुरी से और मंदसौर से। तो दोनों श्रोताओं से हम निवेदन करना चाहेंगे, बारी बारी से आप अपने स्थानीय स्वाधीनता सेनानियों के बारे में हमें जानकारी दीजिए।
1: श्रीमान, स्वतंत्रता सेनानी तो हमारे मंदसौर से भी रहे हैं
0: जी,
1: और नीमच से भी रहे हैं।
0: हाँ।
1: और अपने गरोड़ बारपुरा से भी रहे हैं सर।
0: कौन कौन रहे हैं?
1: नाम तो श्रीमान नहीं याद, बताऊंगा याद नहीं है।
0: अच्छा, नाम याद नहीं है।
1: अच्छा, सहयोग रहा है हमारे इधर से।
0: जी जी जी जी
1: जी। और हमारे मंदसौर के यहाँ गांव पटेला से गौतमेश्वर है 20 किलोमीटर आगे
0: जी,
1: बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थान है
0: जी,
1: जहाँ बड़ी भारी गुफाएं है, जहाँ गौतमेश्वर जी की लिंग है, बढ़िया शिव मंदिर
0: जी जी।
1: हाँ
0: क्या बात है। और भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर तो है ही।
1: भगवान पशुपतिनाथ जी का है ये श्रीमान मंदिर।
0: तो इन दिनों खासकर श्रावण की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से श्रृंगार होता है, पूजन का विधान किस तरह से रहता है, और मंदिर का खुलने का समय कैसा रहता है?
1: रोज नए नए प्रकार का श्रृंगार होता है, रोज नई नई तरह से और श्रृंगार, तरह तरह का आभूषण पहना जा रहा है, तरह तरह की फूल मालाएं और श्रृंगार अलग अलग ढंग से किया जाता है, साफा बंधाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है
0: जी। और प्रति सोमवार को वहाँ पे भी सवारी यात्रा निकलती है ना?
1: जी जी श्रीमान
0: जी जी। माँ शिवना के पवित्र तट पर उनकी सवारी आती होगी और माँ शिवना के जल से उनका अभिषेक होता होगा बाबा पशुपतिनाथ जी का।
1: काफी भीड़ रहती है और अच्छी व्यवस्था हो गई है श्रीमान। पहले तो छोटा था, आस पास जगह इतनी नहीं थी, अब तो काफी विराट रूप दे दिया है।
0: क्या बात है,
1: असुविधा नहीं होती है बिल्कुल यात्रियों को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है बाबा की सवारी में शामिल होकर?
1: श्रीमान ये समझ लो कि अपन कहीं वैकुंठ धाम में पहुंच गए, मतलब जो है बड़ा मनोरम दृश्य होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आपकी पसंद का गीत बताइए।
1: राम बलराम का है सर, अब तो राम ही जान बचाए।
0: अब तो राम ही जान बचाए, ये गाना तो हमें नहीं मिल रहा है राम बलराम का।
1: नगीना पिक्चर का सुना दीजिए।
0: इस राम बलराम का दूसरा गाना सुनवा दें क्या?
1: हाँ दूसरा सुनवा लो कोई।
0: जी जी जी, चलिए सुनवा रहे हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो
0: नमस्कार
1: सर जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: सर जी? मुकेश चंद्र मेहरू बोल रहा हूँ।
0: मेहरू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने दिनों बाद जुड़े इस कार्यक्रम से?
1: जी काफी दिन हो चुके हैं सर।
0: क्या बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तो हमारे बहुत नियमित श्रोता है
1: जी।
0: आक्या जागीर खाचरोद है ना?
1: जी बिल्कुल, खाचरोद।
0: जी जी जी, तो बताइए कौन सा गीत सुनावा दे
1: सर जी? आज मुझे मन्ना डे जी की आवाज में लागा चुनरी में दाग, ये गीत सुनना है।
0: दिल ही तो है फिल्म का गीत है मन्ना डे जी की आवाज में, और आज हम हमारे श्रोताओं से बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र के यानी स्थानीय स्वाधीनता सेनानियों के बारे में।
1: जी हमारे इधर क्षेत्र के तो कुछ इतना ध्यान नहीं है सर जी, लेकिन हाँ भारत के और हमारे हिंदुस्तान के हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, काफी सुना है इनके साथ, पढ़ा भी है।
0: जी
1: जी, और आज इन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उनका योगदान अगर नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते।
1: जी उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया सर, और कम उम्र में उतना मतलब उन्होंने परिश्रम करा, अपने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन त्याग दिया सर, प्राण क्या होती थी उन्होंने बहुत कम उम्र में।
0: बिल्कुल सही है। तो लेकिन आप पढ़िए अपने क्षेत्र के स्थानीय बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्वाधीनता सेनानी हैं जिनका योगदान रहा, हमें जानना चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है।
1: जी बिल्कुल
0: है ना।
1: लेकिन जिन जिन भारत का जो वो तो है, सबका योगदान है अपने अपने क्षेत्र का, लेकिन जो जिनका जो जिनका छप चुका है, जिनकी रहता है ना, उनका ज्यादा ध्यान में रहता है सर।
0: नहीं वो तो कुछ अनाम लोग भी है ना, वही तो हम बात कर रहे हैं कि अनाम स्वाधीनता सेनानियों के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, जो अज्ञात हैं, जिन्हें हम कम जानते हैं, ये जानते भी होंगे तो कम जानते हैं सर
1: है
0: ना। तो चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर जी।
0: जी
1: हमारे दो तीन पुराने श्रोता हैं, याद करना चाहूंगा।
0: हाँ बिल्कुल कीजिए।
1: हाँ बलवंत कुमार वर्मा जी हैं सर आलोट से, और हमारे शेख हैदर खान है सुराना से।
0: बिल्कुल
1: जी, धन्यवाद।
0: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन
0: जी, नमस्कार
1: मुकाम जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। हेलो
1: हेलो
0: जी जी बोलिए बोलिए।
1: धर्मपुरी जिला धार से बोल रहा हूँ, शेख फहीम मोहम्मद।
0: जी जी फहीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया मुकाम जी, शुक्रिया।
0: बिल्कुल, तो आज हम जानना चाह रहे हैं हमारे स्थानीय यानी कि आपके क्षेत्र के स्वाधीनता सेनानियों के बारे में, क्या आप जानकारी दे पाएंगे?
1: जी जी, ये हमारे क्षेत्र जैसे धार जिले का एक अमझेरा गांव है
0: जी,
1: यहाँ पर महान क्रांतिकारी हुए राजा बख्तावर सिंह, आपने भी नाम सुना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इंदौर इंदौर का जो MY हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका समाधि स्थल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसके अलावा एक और है रानी द्रौपदी पवार जी,
0: जी
1: इन्होंने, ये भी धार क्षेत्र की थी, ये भी महान और साहसी नायिका रही है
0: जी, जी।
1: तो स्वाधीनता के उसमें इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
0: जी,
1: तो लोगों को प्रेरित भी किया है
0: जी
1: जी। तो ये दो व्यक्ति है हमारे।

0: जिले से जुड़े हुए, हालांकि और भी लोग हैं, और बहुत जो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है यहाँ पर, क्रांतिकारियों का स्थान भी रहा है, क्योंकि यहाँ तात्या टोपे और बाकी क्रांतिकारियों का भी आगमन हुआ है, है ना। तो अच्छा जानकारी आपने दी। और आपकी पसंद का गीत सुनवा दें, कौन सा बताइए।
1: मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत है आशा भोसले की आवाज में
0: जी,
1: अंग लग जा बालमा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनवा रहे हैं आपको।
1: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो सर, नमस्कार
0: नमस्कार, कहाँ से और कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर। मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से सर मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: पाल साहब, सबसे पहले तो छत्रसाल जी को मैं नमन करता हूँ। और अब बताइए, आप वीरों की भूमि से आप जुड़ चुके हैं।
1: जी सर, मैं बता दूं कि मुझे आज इतनी खुशी हो रही है जैसी केवट को खुशी भरी थी ना भगवान राम से मिलने में।
0: जी,
1: तो बिल्कुल अति आनंद उमंग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा।
0: क्या बात है, क्या चौपाई आपने सुनाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए, आपके क्षेत्र के वीरों के बारे में, स्वाधीनता सेनानियों के बारे में।
1: जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारा बुंदेलखंड है, वीरों की भूमि है और वीरों से भरा पड़ा है हमारा बुंदेलखंड।
0: जी,
1: और सबसे पहले तो मैं महाराजा छत्रसाल की बात करूं तो महाराजा छत्रसाल जो जिनके नाम पर हमारा छतरपुर का नामकरण हुआ है वो महाराजा छत्रसाल के नाम से ही उनका नाम है, शहर का नाम छतरपुर पड़ा है। और बता दूं कि उन्होंने जो है इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी

0: मुगलों को इतना मारा, इतना मतलब जो है वो किया के हमारा बुंदेलखंड को आजाद किया उन्होंने।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसरा है हमारी महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
1: जी,
0: और तीसरा है महोबा के हमारे वीर आला उदल
1: जी जी,
0: जो उन्होंने जो है महाराज पृथ्वीराज चौहान जी को बार बार परास्त किया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चित्रकोट धाम है वो भी बुंदेलखंड में आता है
1: जी जी,
0: और ओरछा धाम भी आपने सुना होगा, तो ओरछा धाम भी हमारा बुंदेलखंड का ये बहुत ही प्राचीन बहुत ही अच्छा स्थल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं आपको भैया, आइए आप कभी घूमने के लिए खजुराहो, आपने देखा हो या न देखा हो।
1: बिल्कुल।
0: तो खजुराहो तो हमारा बिल्कुल खजुराहो को तो हम है ही है, पास ही में हमारा खजुराहो।
1: बिल्कुल। तो वहाँ कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, तो इन दिनों जो सावन का माह चल रहा है तो वहाँ कैसी भीड़ रहती होगी, काफी लोग आते होंगे?
0: अरे क्या बात है, आपने तो मेरी मौगी बात छीन ली भैया। जो है कंदरिया मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, और अपना भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है
1: जी।
0: इतने सारे मंदिर है खजुराहो में, जो अंडरग्राउंड मंदिर आपने जो बताया वो कंदरिया मंदिर है
1: जी जी जी।
0: तो आप आइए, स्वागत है आपका, घूमिए, बहुत सारे मंदिर है खजुराहो, घूमने की जगह है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है
1: जी जी जी।
0: और आपका जो बागेश्वर धाम भी आपने सुना होगा, तो बागेश्वर धाम भी बिल्कुल लगा हुआ है खजुराहो से, 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
1: अच्छा जी जी जी।
0: और एक और बता दूं बुंदेलखंड के बारे में, हाँ कि हमारा जटाशंकर धाम है जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, भगवान भोलेनाथ का स्थान है वहाँ पर
1: जी,
0: जो जटाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को आमंत्रित है, आइए बुंदेलखंड में, देखिए कितने बढ़िया स्थल हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता इस तरह से अगर जानकारी देंगे तो बहुत सारे पर्यटक स्थलों के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में, और भी विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, और हमें अपने देश की जानकारी प्राप्त होगी।
0: हाँ बिल्कुल भैया। और छोटा सा एक और रह गया हमारा बुंदेलखंड का, बहुत ही अच्छा स्थल है पन्ना
1: जी,
0: जहाँ पन्ना में जहाँ हीरे की खदानें हैं, और जो पन्ना में जो है जुगल किशोर का मंदिर है, और हाँ। भी जो है पन्ना में बहुत सारे मंदिर हैं जो घूमने लायक है, पन्ना टाइगर है
1: जी,
0: बहुत सारे स्थल हैं बुंदेलखंड में, आप आइए, सभी लोगों का स्वागत है, आइए आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और फिलहाल तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी पसंद का गीत हमें बताइए।
0: जी जी बिल्कुल सर जी, है देखिए अभी मौसम हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पानी जो गिर रहा है, पानी की बरसात हो रही है, तो ऐसे में क्यों ना एक बहुत ही प्यारा गीत है, और बार बार मन मचल रहा है कि इस गीत को सुनने के लिए
1: जी जी।
0: तो फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी, और गीत के बोले कि वो बरसात वाला गीत है।
1: बिल्कुल, तेरी मेरी प्यार भरी बात।
0: हाँ, तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई जी बरसातों में।
1: क्या बात है क्या बात है, इसे अब बुंदेली में कैसे गुनगुनाएंगे?
0: बुंदेलखंड की भाषा यदि हम बोले भैया आप,
1: हाँ, तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हमें बहुत मीठी लगती है, अच्छा लगता है।
0: अरे क्या, तो बिल्कुल बोल भैया, हमें एक फिल्मी गीत तो सुना दो भैया हमें, एक भैया, और हमें भैया जो है खतरों के खिलाड़ी को एक गीत सुनने भैया, तो वो सुनवा दो आप हमें, तो आपकी बहुत बहुत जय हो जाए।
1: तो जो गीत को मुखड़ा सुना दो भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, बहुत।

0: इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। चलते चलते हम आपको बता दें, हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला नीरज कुलकर्णी और दिग्विजय नीमे का। अब आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान आपसे अनुमति लेता है और कहता है नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: आप सभी का फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में हमारा नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आप हमें इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
3: राहुल ध्रुवे बात कर रहा था।
2: तो क्या करते हैं राहुल जी आप?
3: देखिए मैं तो जॉब पे ज्यादा रहता हूँ, यहाँ पे खास तौर पे समय निकाल के मैं सुनता भी हूँ आपके।
2: अच्छा।
3: लगातार कार्यक्रम फोन भी लगाता हूँ, काफी समय बाद कॉल किया है, बाकी एक महीने के बाद।
2: बहुत अच्छी बात है।
3: क्या है, मैं खेती में भी थोड़ा बिजी हो गया था, रोपाई चल रही थी अभी।
2: अच्छा,
3: कारण से मैं कॉल नहीं कर पाया।
2: तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे नए नए श्रोता जो है वो कार्यक्रम से जुड़े।

0: गाना सुनना चाह रहा था।
1: जी बताइए अपनी फरमाइश।
0: दामिनी फिल्म का है।
1: दामिनी फिल्म का कौन सा गीत?
0: पंख लगा के आया सावन का मौसम लाया। रेडियो संग श्रोता मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा दोस्तों के नाम। मध्य प्रदेश सागर से रहेंगे विपिन कटारे और शिमला से रहेंगे हमारे विमल राकेश जी।
1: तो आपकी और आपके दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं दामिनी फिल्म से ये गीत।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कौन बोल रहे हैं?
1: जी, छोटू चक्रधारी बोल रहा था,
0: छोटू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: करगी रोड कोटा बिलासपुर सीजी से।
0: कोटा बिलासपुर से बोल रहे हैं।
1: हाँ
0: तो क्या करते हैं आप?
1: जी, अपना कारोबार है, सिलाई का काम है जी।
0: तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: अभी क्या है, सावन का महीना चल रहा है, सुना दो। जय जय श्री शंकर काटा लगे न कंकर।
0: बताइए और क्या करते हैं आप?
1: बस अपना ही है, सिलाई का काम है, ये सिलाई चलते रहता है, और तो रेडियो हम सुनते रहते हैं, इधर काम भी होते रहता है, मनोरंजन भी, दोनों काम होते रहते हैं साथ में। सबसे ज्यादा पसंद तो हमको यही है, फोन कार्यक्रम ये वाला अच्छा लगता है।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: अरे वाह, वाराणसी से बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो बताएं अपने शहर के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी।
1: सर देखिए दीदी, देखिए ये जो सावन का महीना चली रहा है तो यहाँ काशी विश्वनाथ जी का धाम बना हुआ है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इस समय कांवरियों की भीड़ बहुत ज्यादा है। करीब करीब 3-4 लाख कांवरिये यहाँ प्रतिदिन दर्शन करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: और गंगा जी में इस समय जल बढ़ा हुआ भी है।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: तो
0: बारिश का महीना।
1: यहाँ क्रूज है, बड़ी बड़ी नाव, छोटी नाव पर प्रतिबंध है, लेकिन यात्रियों घुमाने के लिए यहाँ बड़ी नाव है क्रूज, तो वो चलती है।
0: और भाई बनारस का पान भी बड़ा मशहूर है।
1: जी जी जी, वो तो बहुत फेमस है पूरी दुनिया।
0: हाँ जी,
1: यहाँ की बनारसी साड़ी और बनारसी पान।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बनारसी साड़ी और पान बहुत मशहूर
1: है। और यहाँ दीदी खान पान भी बहुत फेमस है। यहाँ सुबह का नाश्ता जो कचौड़ी जलेबी है वो भी बहुत टेस्टफुल होता है। यहाँ की दुकानें बहुत हैं।
0: तो अब अपनी फरमाइश बताएं
1: दीदी। इस समय मौसम तो यहाँ सावन की तरह एकदम लग रहा है कि सावन है, तो हमको आज सुना दे चुपके चुपके का एक गाना है, आपकी सजन सावन में।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: जी मैम, कैसे हो आप?
0: मैं बढ़िया हूँ। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त?
1: मैडम, हम खेती बाड़ी करते।
0: खेती बाड़ी करते हैं।
1: एक गाना सुना है, मूवी का नाम है कलाकार, और गाने के बोले नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। मैम, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो,
0: कौन बोल रही हैं
1: मैं देविका मिस,
0: आप? कहाँ से बोल रही हैं देविका जी?
1: दीदी से एमपी से। और आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम शबाना है। क्या करती हैं?
1: मैं बस घर पे रहती हूँ और स्टडी कर रही हूँ।
0: अच्छा, अभी आप स्टडी कर रही हैं। कौन सी क्लास में हैं?
1: अभी मेरा 11th है,
0: 11th है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका 11th में?
1: बायोलॉजी।
0: क्या बनना चाहती हैं आगे जाके?
1: स्टडी कर रही हूँ।
0: कुछ सोचा तो होगा ना फ्यूचर के लेके अपने, कि मुझे ये बनना है, ये करना है।
1: डॉक्टर बनूंगी।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। और अगर मेहनत करेंगे आप तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर इंसान चाहे, मेहनत करे, पूरी लगन से अपने काम को करे, तो वो जो चाहता है वो कर सकता है। देविका, ये बताओ कि आप गाना कौन सा सुनोगे आज?
1: मूवी का नाम है धूम थ्री।
0: अच्छा,

0: और गाने के बोल
1: कमली सॉन्ग है ना?
0: कमली, हाँ जी बिल्कुल है। कौन से प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है? अच्छे लगते हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम सुनते रहो। आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करेगी सुने, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: जीनत परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करती हैं जीनत जी?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा जी, तो अभी क्या चल रहा है इस वक्त? आप बात भी कर रही हैं और आपका घर का कामकाज भी चल रहा होगा।
1: जी, घर का काम तो थोड़ा तो निपटा लिया, खाना वाना बर्तन झाड़ू सब हो गए। अब छोटा मोटा कपड़े उपड़े धोना है, देर से धोना।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए काम तो बहुत अच्छे से हो जाता होगा, रेडियो सुनते
1: जी,
0: रहते होंगे।
1: रेडियो ही सुनती रहती हूँ, काम होता रहता है।
0: कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है जी? महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम जाते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम जाते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम जाते हैं, बहुत से
1: जी,
0: कार्यक्रम
1: स्वास्थ्य
0: जाते
1: के लिए
0: हैं।
1: अच्छा रहता है, महिलाओं का।

0: जाता है।
1: तो कौन सा गीत आज आप फरमाइश करेंगी?
0: फिल्म का नाम है किशन कन्हैया है ना,
1: कौन सा गीत इसका?
0: मेरे हम सफर बीती बातें याद करो, मुलाकातें याद करो।
1: अरे वाह, आप तो गाते भी बड़े अच्छे हैं, शौक है आपको गाने का?
0: गाती रहती हूँ, रेडियो चलता रहता है तो गाती रहती हूँ। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ, रेस्ट करती हूँ और पेपर वेपर पढ़ती रहती हूँ, जानकारी लेती रहती हूँ।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पसंद का गीत

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ मैडम नमस्ते। कमल सिंह बात कर रहा हूँ, MP धार से।
0: और क्या पसंद लेकर आए हैं आज इस कार्यक्रम में, हम कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए दयावान फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, आज फिर तुम पे प्यार आया है, अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास साहब का गीत है ये।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक कॉलेज में म्यूजिक टीचर हूँ, बचपन से ही रेडियो से मेरा लगाव रहा, फिर अभी 2006 से धार आ गया मैं तो यहाँ भी मेरे पास रेडियो भी है, मैं मोबाइल के माध्यम से DTH के माध्यम से भी रेडियो सुन लेता हूँ।
0: और आपकी पसंद का गाना सुनिए आप।
2: आ

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और क्या करते हैं
1: आप? मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़े हैं दीदी, बराबर आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम बहुत अच्छे कार्यक्रम आपके लग रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आवाज क्या कहना, एकदम लाजवाब कार्यक्रम पेश करने का आपका अंदाज एकदम बेहतरीन।
0: तो हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल होती है। कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है
1: दीदी? मैं तो आपकी आकाशवाणी भोपाल की जितने भी अंतर्गत कार्यक्रम आते हैं मैं तो लगभग सुबह से शाम तक सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। फॉरेन कार्यक्रम हो, सबसे फर्स्ट कार्यक्रम तो आपका ये फॉरेन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। फोन करने की सुनने कार्यक्रम बहुत अच्छा, बात हमारी गीत तुम्हारे हो, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, सारे कार्यक्रम लाजवाब।
0: तो कौन सा गीत सुन पाए आपको
1: दीदी? आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा साजन का घर और उसमें गाना है सावन आए बादल छाए।

0: हेलो कार्यक्रम फोन
1: हेलो।
0: करें, गीत सुने।
1: हाँ नमस्ते मैडम,
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद सलमान बोल रहे हैं मैडम शहडोल से।
0: आप सुनाएं शहडोल के हालचाल, बताएं क्या पानी वगैरह गिर रहा है वहां पे?
1: शहडोल के हाल चाल बहुत अच्छे हैं मैडम, और रिमझिम की बरसात लगी हुई है 2-3 दिनों से। रिमझिम की बरसात है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है, लेकिन रिमझिम की फुहारे गिर रही है मैडम।
0: तो सलमान जी कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मेरा वो गाना सुनवा दीजिए मैडम, फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना, और गाने के बोल हैं फिर

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: रतलाम डिस्ट्रिक्ट से सरला चावड़ा बोल रही हूँ।
0: सरला जी,
1: जी हाँ,
0: अच्छा, और सरला जी
1: फोन
0: कैसी
1: करें कि
0: हैं?
1: सुन गाना सुनना है।
0: हाँ जी बिल्कुल, गाना हम आपको
1: हाँ,
0: सुनवाएंगे, बताएं कौन
1: मुझे
0: सा।
1: मेरी लड़की की पुण्यतिथि थी 30 तारीख को, तारीख
0: जी,
1: को मेरी लड़की, उसके उपलक्ष्य में मेरे को तकदीर का गाना सुनना है। पप्पा जल्दी आ जाना।
0: ये आप अपनी बेटी के लिए ये गीत
1: जी
0: डेडिकेट
1: हाँ
0: करना चाहती हैं।

0: था श्रोताओं आज का हमारा फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। आप भी जा सकते हैं इस कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति शबाना खान की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित की जा रही है। 4 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अभियान को भी इस अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान किया है। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक किया जा सकेगा। प्रदेश में राशन वितरण के पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों द्वारा रिकॉर्ड 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और अनुशासन देशभर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म ब्लैकमेल से। गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार ने, गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फरमाइश हमें आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। इन्हीं के साथ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। अगले श्रोता बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म अजनबी से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। फरमाइश हमें आई है सिंहपुर बड़ा से। श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। अगली श्रोता नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत सुनेंगे आप फिल्म मेरे जीवन साथी से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार आर डी बर्मन। फरमाइश में आई है बिहार से, श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी, दिल्ली से सोनम डॉक्टर अदीबा, सरीमपुर बक्सर से एस डी अंसारी, गुलफराज भागलपुरी। अगली श्रोता गांधी चौक बाड़मेर से हैं, बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म यादों की बारात से अगला गीत सुनेंगे आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में। गीतकार मजरू, संगीतकार राहुल देव बर्मन। फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगली श्रोता नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म कुदरत से। गीत लिखा मजरू ने, गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। फरमाइश हमें आई अम्बेडकर चौक खुराई से। श्रोता है राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, रोहित, लालू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन। अगले श्रोता धमतरी से हैं, रामचंद माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, सविता, स्वाति। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
5: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
5: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
5: ये हुई ना बात।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
0: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: हम वाकी
7: और झूलते झूलते सुनते हैं

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 21वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 21वां भाग। अब तक आपने सुना कि महामात्य ने बंगदेश से भर्तृहरि की बहन मैनावती को बुलाया है। राजा को क्या चिंता है, शायद अपनी बहन को वे उद्विग्नता के बारे में बता सकें। उज्जैनी में बसंत उत्सव का आयोजन हो रहा है, इसमें एक इंद्रजालिक अपने जादू का प्रदर्शन करता है। अब आगे

अवंती में बसंतोत्सव हो रहा है। दूर दूर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराज पधारे हैं। उद्घोषक ने कहा था कि वो अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे, अतः केवल एक कार्यक्रम होगा। इसलिए हास्य के बाद अब इंद्रजाल का कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत होता है। ये अंतिम कार्यक्रम है।

महाराज की जय हो। सुरुचि संपन्न दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मैं ये स्मरण करवाना चाहता हूँ कि काल के आगे कोई भी इंद्रजाल नहीं ठहरता, फिर ये तो साक्षात महाकाल की भूमि है। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से

निवेदन है कि यदि कोई इंद्रजाल का ज्ञाता हो तो वो मेरे इस खेला को मात्र एक क्रीड़ा समझकर मुदित हो ले। ये खेला कौशल भी है और साधना भी, साचा भी है और कृत्रिम भी, और हाँ ये माया भी।

0: भ्रम का प्रपंच है।
1: अब होगा अच्छा खेल,
2: अब होगा अच्छा खेल। हाँ मित्र, हाँ मैं भी यही समझता हूँ।
0: बंधु भगिनियों, आज राजा धीराज अवंती नरेश महाराजा भर्तृहरि के सम्मुख मुझे अपने कौशल को प्रदर्शित करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं वो कौतुक गढ़ रहा हूँ जो कभी मेरे पूर्वजों ने अनिंद सुंदरी वासव दत्ता के वियोग से पीड़ित वत्सराज उदयन को दिखाया था। अब बताइए श्रीमान, क्या दिखाऊं? भूमि के अंक में उपस्थित चंद्रमा, आकाश में डोलते हुए पर्वत, जल के बीच प्रज्वलित अग्नि, या मध्याह्न के समय की अर्धरात्रि? अपनी बढ़ाई अपने आप क्या करूं, आप जो भी देखना चाहे वही प्रस्तुत कर सकता हूं। सर्वप्रथम मैं एकांत की सृष्टि करता हूं। सावधान होकर किसी एक दृश्य को चुन ले, दो चुन ले, या अधिक से अधिक तीन। इसके लिए आपके पास तीन पल का समय है। नौ श्वास, 13 धड़कने। प्रिय?
3: हाँ स्वामी, मैं यही हूँ।
0: प्रिय, नरेश की क्या इच्छा है?
3: स्वामी, नरेश सर्वप्रथम तुम्हारे कथन का प्रमाण चाहते हैं।
0: तो ऐसा ही हो।
2: अद्भुत, वो देखो आकाश में वो कमल स्थित ब्रह्मा,
4: कमल स्थित ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को देखो, देखो, देखो, देखो।
2: और चंद्र को मस्तक पर धारण किए चंद्रमौली शिव वहाँ है, और वो रहे शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु। उधर हैं गजराज ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र और नृत्य करती अप्सराएं।
3: भद्रजनों, आप में से कोई अपने किसी प्रिय का दर्शन करना चाहता है? कोई ऐसा है जो आपके निकट नहीं है, जिसे देखे लंबा समय बीत गया है, जिसकी स्मृतियां आपको आवेशित कर रही हैं, जिसे देखने की उत्कट इच्छा है आपकी?
2: क्या दिखाएगी ये? क्या दिखाएगी ये?
0: तो दृष्टि को भ्रू और नासिका के मध्य भ्रिकटी पर लाकर अपने उस प्रिय का स्मरण करे। तीन पल, नौ श्वास, 13 धड़कने।
5: राजा भर्तृहरि क्या देख रहे हैं? शची, शची, शची, शची, चारों मित्र, चारों मित्र, शची, चारों मित्र, शची।
6: अरे अरे अरे, देखिए देखिए, अरे आश्चर्य, ये कंठा कमंडल धारी अवधूत कौन है?
7: अरे जो रक्षकों को धकेलता हुआ मंच स्थल तक आ पहुंचा है, कौन है?
2: कौन है? कौन है वो?
5: महाराज, महाराज आप?
6: महाराज तो तुम हो भर्तृहरि।
5: पधारे, पधारे महाराज, आसन ग्रहण करें, सेवक को आज्ञा दें, किस योग्य हूं मैं?
6: मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए राजा, मैं तो तुझे याद दिलाने आया हूं। कामिनी।

0: कंचन काया और माया
1: महाराज ये दैनिक व्यवहार है, काया के भी धर्म है।
0: काया के भी धर्म है गोरख गोरख।
1: आप मुझे नदी के तीर पर छोड़ गए थे, उस नदी को मैंने सांसारिक नाव से पार किया, अभी भी देख रहा हूं कि आगे क्या होता है। मैं अभी भी इसी द्वंद में भटक रहा हूं महाराज कि क्या प्रामाणिक ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष और अनुमान मनुष्य के धर्म का ज्ञान करवाने में सक्षम है। गुरु के उपदेश का माध्यम शब्द है, तो शब्द की सत्ता क्या है? मैं इस उलझन को ना तो समझ पा रहा हूं और ना ही व्यक्त कर पा रहा हूं।
0: राजा तो तू गुरु की कृपा पाने का यत्न कर, यत्न। माया के इस जाल से बाहर निकल कर देख। सब कुछ न सही, फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा।
1: गुरु कहां मिलेंगे?
0: वो या तो स्वयं ही तुझ तक पहुंचेंगे या तुझे उनकी खोज करनी होगी।
2: कौन है रे तू जो रंग में भंग कर रहा है? तो साहसी?
3: हाँ, अपने गुरु का ध्यान कर, ध्यान कर, जान जाएगी। अलख अलख बोल गोरख गोरख जय हो। प्रेतपुर को तो तूने मिटा दिया, तो अब संसार का फंदा बैठ के दिखा दिखा गोरख गोरख।
2: ओ तो तुम गोरखनाथ की शिष्य हो?
3: और तुम जालंधर नाथ की?
2: नहीं, मैं जालिपा गुरु की शिष्या नहीं, शिष्या तुल्य हूं। वो मेरे पूज्य हैं, मैंने उनसे तंत्र और रसायन विद्या सीखी है। ओ घड़ हठ योग से मनुष्य शरीर को जीत सकता है, किंतु परम गुरु को जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि जानने वाला संसार से अलग नहीं है। संसार यदि माया है तो जानने वाला भी उसी माया का लघुत्तम अंग है। लघुत्तम से गुरु होना इस समूचे सृष्टि प्रपंच से ऊपर उठ जाना है।
3: अलग, अलग।
2: मैं वो शक्ति अर्जित नहीं कर पाई। राजा भृतहरि तो गुरु के पास तब भी नहीं पहुंचा। ओकर, तुम इस वसंती मेले में कैसे आए?
3: योग माता, ये स्मरण दिलाने के लिए कि राजा भृतहरि केवल अवंती के लिए नहीं है।
2: प्रजा को राजा की आवश्यकता है। अपना नाम नहीं बतलाया ओघड़ तुमने?
3: गुरु महाराज ने मुझे वज्र भैरव नाम दिया है।
2: अपने गुरु से दंड प्रणाम कहना मेरा।
0: अवश्य। इतनी सूचना तुम्हें देनी है कि जिस प्रेतपुर को तोड़ दिया है तुमने, वो अभी फिर कहीं भी बस सकता है। उस मायापुर को रचने वाली काल रात्रि अपने विषधरों कुकुरों और मायामोर के साथ अभी जीवित है। प्रतिशोध की आग में दहकती हुई तुम उसका जाल तोड़कर निकल आए। तुम्हारी बहन ने जाल को जला दिया, बहुत क्रोध में है। वो आक्रमण करेगी, सावधान रहना सावधान। गोरख गोरख।
4: श्रावण मास के प्रारंभ में राजा भर्तहरि पैठार गांव जाकर शची को अपने साथ उज्जैनी ले आए। नई रानी के रूप में प्रजा ने शची का परिचय तब पाया जब वो राजा की रानी बनकर महाकाल की अर्चना और आरती के लिए गई। पैठार में शची का जीवन

0: सहज था, उसे सभी कुछ सरलता से समझ में आ जाता था। किंतु यहां इस राजमहल में वो हर क्षण चकित विस्मयित होती रहती थी। पैठार में सब कुछ उन्मुक्त और खुला खुला अपने वश में।
1: शची, कोई अभाव, कोई असुविधा तो नहीं?
2: नहीं देव, यहां असुविधा का प्रवेश ही नहीं है।
1: किंतु तुम्हारे मुख पर पैठार जैसी उत्फुल्लता नहीं मिलती।
2: देव, वहां मुझे हर समय कुछ करने को रहता था। कार्य करते रहने के बदले मैं प्रसन्नता मिलती है। शायद आप इसी प्रसन्नता की बात कर रहे हैं।
1: हाँ, कदाचित यही उत्फुल्लता हो।
2: मैं क्या करूँ महाराज, वन में जन्मी, वहीं पली और बढ़ी। मेरा वन यहाँ भी मुझसे छूट नहीं पा रहा है।
1: तो फिर ऐसा करो, हम दोनों तुम्हारे वनांचल की ओर चलते हैं। कदाचित वहां मैं कुछ नया जान या सोच सकूं। पीपल के पत्ते की तरह दोलायमान मेरे विचार कहीं स्थिर हो सके। शची
2: महाराज, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सभी आपकी ही ओर देखते हैं।
1: प्रजा को सुख संतोष देना चाहता हूं, पर इस समय मैं स्वयं ही उद्विग्न हूं। चलो चलते हैं।
3: पधारिए महाराज, पिंगला आपका स्वागत करती है।
4: महादेवी, मैं राजकुमार को लेकर बाहर जाती हूँ।
1: ठहरो चंपा।
4: जी।
1: आज हम साथ रहना चाहते हैं।
4: देव की आज्ञा दासी ने सदैव कृपा मानकर सहेजी है, किंतु
1: महारानी, चंपा तुम्हारी अनुमति से भर्तृहरि की अंकशायिनी बनती रही है, इच्छा से या अनिच्छा से भी, या फिर कहूं कि इसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं रही। हो भी तो उसका धर्म। महादेवी, आज इसे साथ रहने का अवसर देंगी तो मुझे सुख मिलेगा, और वयसिका वो भी साथ रहे तो।
3: चंपा
4: जी,
3: तुम ठहरो और वयसिका को भी बुला लाओ।
4: जी अच्छा।
3: महाराज की इच्छा आज्ञा के अनुसार। बैठो तुम दोनों यहीं, ये रानी वास है, यहां हमारी आज्ञा चलती है। हम आज भी अब तक महारानी हैं। महाराज, हमारा सिर काट दीजिए, गजपथ के नीचे कुचल जाने का दंड दीजिए आप हमें, क्षिप्रा में डुबोइए, किंतु आपसे उपेक्षित होकर अब जीना संभव नहीं है। महाराज, हमारे होने या ना होने से कहीं कोई अपशय नहीं होगा। महाराज, आप हैं तो सब रहेगा। कुमार को चंपा पाल लेगी और हम वैसिका से वचन ले लेंगे कि वो यहां पर रहकर हम पर उपकार करे। यही शची है जो आपके प्रति अकुंठ मन से समर्पित है। बस इनके समक्ष हमारा अपराध बता दीजिए। हम आपसे अपराध का प्रमाण नहीं मांगेंगे और किसी भी स्त्री को अपने पति से प्रमाण नहीं मांगना चाहिए। किंतु बता दीजिए राजन, और हमें उस अपराध के लिए मृत्यु दे दीजिए, या फिर हम ही चुन लेते हैं। महाराज, प्रातः आप हमारा जीवित मुख नहीं देखेंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं।
1: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महारानी।
4: हाँ देव, नरेश हैं आप, अभी इसी क्षण आप हमें बंदी बना सकते हैं, आसपास परिरक्षक नियुक्त कर सकते हैं जो हमें मरने भी नहीं देंगे। हमारे वश में न जी

0: महादेवी, अभी अभी तो आप कह रही थी कि यहां आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, यहां की शासिका आप हैं, ये मैं भी भली भांति जानता हूं। अब आप सामान्य हो जाइए, ये सब भूलकर। मैं स्वीकार करता हूं महारानी कि तुम्हारे उस व्यापार व्यवहार से मेरा पुरुष दंभ आहत हुआ था, मैं क्रुद्ध था, किंतु अब मैं समझ गया हूं कि पुरुष की स्वेच्छाचारिता से खिन्न स्त्री पर भी तो इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। पिंगला, मैं समझ रहा हूं और उस घटनाक्रम को भुला रहा हूं। विश्वास करो, हाँ विश्वास करो। पिंगला, मैंने उपहार में तुम्हें दिया था वो विचित्र फल, उसके पीछे मेरी प्रच्छन्न लालसा थी कि तुम्हारे सौंदर्य में और अभिवृद्धि हो, वो स्थायी हो, ताकि मैं जीवन भर उसका उपभोग कर सकूं। तुमने उस फल को किसी और को दे दिया, उसे जिस पर तुम प्रसन्न थी। कौन जाने इस घटना में महाकाल की कौन सी इच्छा निहित थी। मैं आज शची को साथ लेकर अपने द्वंद के उपशमन में लगा था।
1: देव, रात्रि का दूसरा प्रहर भी समाप्ति पर है और आपने अभी तक भोजन नहीं किया।
0: तुम सबने भी तो ग्रहण नहीं किया है। इस देह में हम काल के जाल और भूख प्यास के आग से मुक्त भी नहीं हो सकते। भोजन आरंभ करो सब। और हां शची, आज की ये रात हम महारानी के कक्ष में व्यतीत करना चाहते हैं।
1: चलो वैसिका, और चंपा तुम भी महाराज को विश्राम करने दें।

0: भर्तारी फिर राजप्रसाद को छोड़कर कहीं निकल गए हैं, किसी को कुछ भी बताए बिना। कहां किस ओर गए हैं कोई नहीं जानता। उस रात वो रानी पिंगला के शयनागार में थे और पिंगला केवल इतना ही बता पा रही थी कि उन्होंने नींद में राजा को बुदबुदाते हुए सुना था, रावण, त्रिकूट, पाणिनी, चंदाचार्य, परंपरा, शब्द, गुरु। वो कई बार अलख अलख कहते और उनकी नींद टूट जाती। चिंता में थी मैना, वज्र भैरव की चेतावनी से सशंकित, यदि प्रेतपुर की पंजरा किसी माया क्रीड़ा से भर्तहरि को महाकाल के क्षेत्र से बाहर खींच कर ले गई तो वो संकट में पड़ सकते हैं। अवंती नगर की सीमा में यह उनका कोई अहित नहीं कर सकती, पर कोटे से एक योजन दूर तक जहां जहां महाकाल के घंटे, डमरू, नक्कारे की ध्वनि पहुंचती है, वहां तक मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी अनिष्टकारी क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। अशंकित मैना ने महामात्य को बुला भेजा।
1: क्षमा करें महादेवी, किंतु ये जानना आवश्यक है कि महाराज रात में कब तक आपके शयनागार में थे।
2: ब्रह्म मुहूर्त तक तो निश्चय ही, क्योंकि मंदिर का प्रभाती का घंटा बज गया था। उससे पूर्व भी महालय की समय सूचिका की निनाद ध्वनि हो चुकी थी।
1: तब महाराज जागे हुए थे या

0: हमें लगता है कि वो निद्रा में थे। नंदाश्री मैनावती को हम बता चुके हैं कि वो नींद में जैसे कोई स्वप्न देखते हुए चौंक पड़ते थे और उनके मुख से अलग अलग की ध्वनि आती थी, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों। रावण, त्रिकूट, पाणिनि आदि।
1: तो क्या आप चौथे पहर तक सो नहीं पाई?
0: अर्धरात्रि के बाद तक महाराज भी जागते रहे थे महामात्य, और फिर वो सो गए। प्रयास करने पर भी हमें नींद नहीं आई, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंख कब झपकी कुछ पता ही नहीं चला। जब दो घड़ी दिन चढ़े, चंपा ने कुमार को हमारे पर्यंग पर छोड़ा, तब उनका रोना सुनकर हमारी नींद खुली। महाराज कक्ष में नहीं थे और हमने ये सोचा कि वो अपने कक्ष में चले गए होंगे, और फिर हम व्यस्त हो गए।
1: कहां जा सकते हैं और क्यों? पुत्री मैनावती, मुझे तुम्हारी पंजरा वाली कथा पर विश्वास नहीं है। मैं ना तो किसी प्रेत से मिला हूं और ना प्रेतों की किसी माया से मेरा सामना हुआ है। यहां के शमशान क्षेत्र में अनेक अघोरी कापालिक रहते हैं, किंतु कुतूहलजनक कछुवेश और विचित्र चेष्टाओं के बाद भी वो मनुष्य हैं। कोई उन्हें बाधा ना दे तो किसी प्रकार का अपकार नहीं करते वो।
2: महामात्य, प्रेतावस्था बहुत त्रासद होती है। निरंतर क्षुधित और सतत प्यासी, भोग और भोजन के लिए बेचैन, सदैव तत्पर, पल भर को शांत और फिर वही विकलता। ये तिमिर धर्मी है, अतः सूर्य के प्रकाश में नितांत निर्बल हो जाती है।
1: पुत्री, हमें अभी आसन्न संकट की ओर देखना है। अवंती का सिंहासन, राज्य और प्रजा एक बार फिर अनिश्चितता से घिर गए हैं। बिना बताए महाराज एक बार फिर निकल गए हैं।
2: आप मुझे ये बताएं कि महाकाल मंदिर से एक योजन से अधिक दूर वाला महसान वो महाभैरव वाला शमशान ही है ना? आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, पंजरा आज निश्चय ही वहां साधना और अभ्यास करेगी। आज वो मानवी बनकर रहेगी। मुझे दो निर्भय, विश्वस्त, बलिष्ठ और कुशल सैनिक चाहिए। नखला, मेखला, कहां हो तुम?
3: मैनावती ने अपने साथ आई नखला और मेखला दासियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा,
2: हमें शीघ्र ही भैरव शमशान पहुंचना है। आज रात प्रेतनी पंजरा को मुक्ति देनी है। तुम दोनों सन्नद्ध हो जाओ। उसका जादू और माया तुम दोनों देख ही चुकी हो। हमने उसका भ्रम जाल भस्म कर दिया था, लेकिन वो बचकर निकल गई। अब देखना है वो कैसे बचती है।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 21वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार पदम भंडारी, इंद्रजालिक संजय भोसकर, नटी भारती ठाकुर, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, औघड़ मांगीलाल शर्मा, मैनावती दिव्या पवार, शची

0: विभा श्रीवास्तव, पिंगला, कंचन राजानी, चंपा, अनुराधा, महामात्य, अर्शद इकबाल, उत्साही बच्चे, आद्या मुंशी, आरोही भट्ट और अक्षता राजन। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से निकल जाते हैं और वृक वन होते हुए पैठार पहुंचते हैं। पैठार से चलते हुए वे प्रेतपुरी पहुंचते हैं, जहां पंजरा उन्हें रोकती है। राजा उसका आशय समझकर वहां से भाग लेते हैं। बंग देश से आती हुई मैनावती का भी प्रेतपुरी से निकलना हुआ था। मैनावती भ्रमरी विद्या की कूट ज्ञाता हैं। मैनावती ने पंजरा का जाल काट दिया और प्रेतपुरी को नष्ट कर दिया। प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई पंजरा का क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले भाग में।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक कामनी का एकांतरे की 21वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित की जा रही है। 4 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का इस अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान किया है। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
3: सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए वंदना का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, सावन मास शुरू हो चुका है। सावन के आते ही सुनाई देती है आहट तीज त्योहारों की। कहीं चूड़ियों की खनखन तो कहीं पायल की छनछन, कहीं ओढ़नी की सरसराहट तो कहीं झूला झूलती सहेलियों की खिलखिलाहट। बारिश में हर ओर हरियाली दिखाई देती है। यूं लगता है कि ये बेलें नहा धोकर आई हैं इन वृक्षों से गले मिलने। नदियां चल पड़ी हैं अपने सफर पर बलखाती इठलाती हुई। यूं प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं अपना श्रृंगार करती है। बूंद बूंद में उतरा सावन, झरनों नदियों में आई बहार, धरती चली अंबर से मिलने करके हरियाली का श्रृंगार। सखियों, सावन की झड़ी कुछ समय में बंद हो जाएगी, पर त्योहारों की जो लड़ी शुरू हो गई तो ये चलती रहेगी चतुर्मास तक। सावन में कोई सोमवार व्रत करता है, कोई पूरे माह शिव को फल फूल जल दूध गंगा जल बेलपत्र आदि अर्पित करता है, यानी भोले बाबा का रुद्र अभिषेक जल अभिषेक होता है। सावन शब्द मन को जोड़ जाता है राखी के त्योहार से, जहाँ

बचपन की यादें हैं, भाई बहनों की मान मनुहार है। कृष्ण जन्माष्टमी पर रिश्तों का सम्मान है, तो हरियाली तीज पर त्याग और समर्पण है। नवरात्रि में है शक्ति का पर्व। सखियों, बरसात के ये चार महीने चतुर्मास कहलाते हैं। इसी चतुर्मास में कई संत जन चार महीनों तक एक ही स्थान पर निवास करते हैं और कई संत जन एक समय भोजन करते हैं, ताकि उनके आवागमन से किसी जीव जंतु को क्षति ना पहुँचे। हम भी देखते हैं ना सखियों कि तेज बारिश के बाद धरती से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं। यूं लगता है कि अपने आराध्य शिव से मिलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि चार महीने प्रकृति का कार्यभार शिव ही संभालते हैं और शिव का दूसरा नाम पशुपति नाथ है, यानी वे सभी पशु पक्षियों जीवों के रखवाले हैं। बहनों, झूले झूलती सखियां, मेहंदी रचे हाथ और उनकी खन खन खनकती हरी हरी चूड़ियां, ये नज़ारा पहले हर ओर दिखाई देता था। माना कि अब इस चित्र में उतनी गहराई नहीं रह गई, फिर भी परिदृश्य तो वही है। हम महिलाओं का सावन में हरियाली तो आज भी कायम है। सखियों, आप अपना सावन कैसे मनाएंगी? हमारी कॉलोनी में तो आज भी हम सब महिलाएं मिलकर मेहंदी रचाती हैं, गाना बजाना करती हैं, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय की हों। समय की कमी के चलते अब हर कोई तो पीहर नहीं जा पाता, तो माँ की याद में छल के आंसू पोंछे जाते हैं सहेलियों के रुमालों से। गहरी काली घटाएं डुबो देती हैं अतीत में, ठंडी ठंडी हवाएं याद दिलाती हैं उनकी जो हमसे दूर है, और मन का मयूर मचल उठता है प्रियतम से मिलने के लिए।

0: स्तनपान की महत्ता को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, स्तनपान महत्व एवं सावधानियां। डॉक्टर यशोधरा गौर से बातचीत कर रही हैं वंदना शर्मा। सखियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशोधरा गौर, जो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय व कमला राजा अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी केंद्र में।
1: धन्यवाद
0: मैम। स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है?
1: स्तनपान सप्ताह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कॉल पर मनाया जाता है
0: जी,
1: अगस्त के प्रथम सप्ताह में, और इसका उद्देश्य लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। हमारे देश में स्तनपान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हमारी दादी नानी ये सभी स्तनपान कराती थी, तो लड़कियाँ देखती हैं तो वो स्वतः ही स्तनपान की तरफ चली जाती हैं, जबकि पश्चिमी देशों में इस तरह का रस्म रिवाज नहीं देखा गया है। कुछ समय पहले स्तनपान की स्थिति उनके यहाँ बहुत अच्छी नहीं थी, तो WHO ने जब ये कॉल दिया तो उनका उद्देश्य ये था, एक तो महिलाओं में स्तनपान के प्रति जागरूकता हो, और स्तनपान के जब फायदे उनको पता चलेंगे तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा फीड कराएंगी, और इसके साथ ही एक पब्लिक अवेयरनेस भी आएगी सामने कि स्तनपान देने से या ब्रेस्ट मिल्क से कितने कितने फ़ायदे हैं। तो उन जैसे जब फायदे सामने आते हैं तो लोग उसको स्वीकृत करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही ये मैटरनिटी को एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाना जरूरी है, और इस वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 6 मंथ की मैटरनिटी लीव सभी विभागों में स्वीकृत की है। कई NGOs हैं जो कि इस सप्ताह को बहुत अच्छे से मनाती हैं, साथ ही जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें ब्रेस्ट फीडिंग के अलग से क्यूबिकल्स तैयार किए जाते हैं या एक स्पेस आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पर बैठ करके महिला जो है वो स्तनपान करा सकती है। अब लोग इसको आदर की दृष्टि से देखते हैं जो कि आवश्यक है।
0: तो मैम, आपसे सवाल यही है जो सामान्य सवाल है कि बच्चे को स्तनपान कब से शुरू कर सकते हैं?
1: बच्चे को स्तनपान जन्म के तुरंत बाद से शुरू कर सकते हैं। अभी जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो तुरंत उसे माँ के स्तन से लगा दिया जाता है। जितनी जल्दी ये स्तनपान शुरू करते हैं, इस प्रक्रिया का फ़ायदा ये है कि जैसे ही बच्चा स्तनपान करता है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चेदानी को सिकोड़ने का कार्य करते हैं। तो जितना शीघ्र अतिशीघ्र हम प्रारंभ कर सकें स्तनपान, वो बच्चे और माँ दोनों के लिए फायदेमंद है।
0: यानी पहली बार जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो ये माँ के स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है।
1: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ चाहे तो बच्चे को 2 साल तक स्तनपान करवा सकती है, और

0: हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कम से कम 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बच्चा केवल माँ के जो मिल्क सिक्रीशन है उसी पर आधारित रहता है, उसको कोई भी ऊपर का किसी भी तरह का पानी या जूस या इस तरह की कोई भी न्यूट्रिशनल चीज़ें नहीं दी जाती हैं।
1: जी, यानी माँ के स्तन से पर्याप्त दूध अगर बच्चे को मिल रहा है तो ये बहुत बेहतर होता है।
0: ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि अगर माँ का जो सिक्रीशन है, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन पर्याप्त है तो बच्चे को पहले 6 मंथ तक पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती है।
1: स्तनपान के क्या फायदे हैं और इसको न कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: स्तनपान के बहुत फ़ायदे हैं, दोनों ही माँ और बच्चे दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है स्तनपान। सबसे पहले बच्चे में अगर हम देखते हैं तो बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है बीमारियों से लड़ने की, जैसे कि उल्टी दस्त वगैरह हैं, तो उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, तो उनकी वजह से बच्चे को इन बीमारियों से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। दूसरा, जितने भी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता रहती है बच्चे को, वो सभी ब्रेस्ट मिल्क में उपलब्ध रहते हैं। तीसरा बहुत अच्छा रीज़न ये है कि बच्चा जो है दूसरे इन्फेक्शन जो ऊपर का दूध पी रहे हैं या कहीं और का दूध पीते हैं तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वो स्तनपान में बिल्कुल नहीं रहता है।
1: मतलब बाहर से उसको किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका नहीं रहती है।
0: आशंका बहुत कम हो
1: बहुत
0: जाती है।
1: जी, कहा जाता है कि स्तनपान न कराने वाली माओं को कैंसर की आशंका बढ़ जाती है।
0: स्तनपान जब कराती है माँ बच्चे को तो शरीर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है।
1: जी
0: ये प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो है बच्चे के लिए दूध बनाने का कार्य ग्लैंड्स में करवाता है। जब बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल हाई रहते हैं तो ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को कम करते हैं। अंडाशय में से अंडा बनना, प्रेगनेंसी होना, इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो जब बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक रहता है तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम रहते हैं और एक तरह से एनोविलेट्री मतलब महिला में अंडा बनने की स्थिति नहीं आती है। या जैसे अगर 1 वर्ष तक उन्होंने स्तनपान कराया तो 1 वर्ष तक अंडा बनने की स्थिति नहीं आएगी, तो इस वजह से इपिथीलियल ओवेरियन कैंसर, जो ओवरी के कैंसर होते हैं इपिथीलियल ओवेरियन कैंसर, उनकी संभावना कम हो जाती है।
1: यानी ये माँ की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
0: हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं।
1: नई माओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि स्तनपान बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये ना सोचें कि आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी, आपकी सुंदरता और बढ़ेगी ही। आप गर्भ स्थिति आने के पहले की के जिस तरह का आपका शरीर था उसको वापस लाने में स्तनपान आपकी सहायता करता है, और इसके साथ ही आप जिस बच्चे की माँ हैं वो बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी कुछ बहुत अच्छी तरीके से होता है अगर आप उसको स्तनपान कराती हैं। कोशिश करें कि स्तनपान कम से कम 6 मंथ तो कराना ही है, और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं एडिशनल सप्लीमेंट्स के साथ में 2 वर्ष तक।
1: मैम, जिन माँ का ऑपरेशन हुआ है वे कितने समय बाद स्तनपान करा सकती हैं?
0: अगर ऑपरेशन से डिलीवरी होती है
1: जी
0: तो ऑपरेशन करते समय ही, जैसे हम ऑपरेशन करते हैं तो बच्चे को माँ के पेट पर लिटा करके ऑपरेशन के दौरान ही हम स्तन से लगा सकते हैं।
1: जी
0: ये कहने का मतलब ये है कि कोई डिले नहीं।
1: यदि किसी महिला को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ पा रहा तो फिर इस स्थिति में क्या किया जाता है?
0: अगर किसी महिला को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ऑपरेशन डिलीवरी एक इसका मुख्य कारण है, क्योंकि महिला जो है वो को थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहती है, असुविधाजनक रहती है स्थिति में, कई बार टेंशन की, स्ट्रेस की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो इसी स्थिति में हमें महिलाओं को ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि किसी तरह की कमी है, उसको इनकरेज करते हैं हम लोग कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क इस्टेब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। जैसे दूध पिलाना है उसको, हाई प्रोटीन डाइट देना है,
1: जी
0: हाई फैट डाइट देना है, और ऐसा सब देने के बाद में यूजुअली ऐसा देखा गया है कि मिल्क सिक्रीशन एस्टेब्लिश हो जाता है।
1: मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने माताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी स्तनपान के संदर्भ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, स्तनपान महत्व एवं सावधानियां। डॉक्टर यशोधरा गौर से बातचीत कर रही थी वंदना शर्मा। सखियों, बारिश का मौसम सुहावना होता है, पर ये बरसात अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आती है, जैसे घर में सीलन की समस्या। घर में यदि सीलन लंबे समय तक टिक जाए तो घर में बदबू फैल सकती है। दीवारों का प्लास्टर झड़ने लगता है क्योंकि लंबे समय तक सीलन के रहने से फंगस डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है, तो बीमारियों का भी खतरा रहता है। यदि घर में हवा का आना जाना पर्याप्त नहीं है तो दीमक भी अपना प्रभाव दिखाती है, तो कोशिश करें कि घर सीलन से कम प्रभावित हो। यदि आपके घर में भी बाथरूम, किचन, स्टोर रूम आदि में सीलन आ रही है तो सबसे पहले चेक करें लीकेज, यानी कहीं पानी का लीकेज तो नहीं हो रहा या कोई नल खराब तो नहीं। साथ ही दीवारों की दरारों को देखें, टाइल्स के बीच में गैप को भी चेक करना होगा, तभी हम सीलन की जड़ को ढूंढ पाएंगे। इसके लिए बाहरी दीवारों में छत पर अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ सॉल्यूशन लगवाएं, जो लंबे समय तक नमी को अवशोषित करता रहे। यदि दीवारों में कहीं दरारें हैं तो उन्हें क्रैक फिलर से भर सकते हैं। रसोई घर और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं, जिससे वहां की नमी बाहर निकलती रहे। जब बरसात नहीं हो रही तो घर के खिड़की दरवाजे खोल दें, जिससे पर्याप्त हवा और धूप आ सके। सखियों, यदि कपड़ों की अलमारी में सीलन महसूस हो तो कुछ चौक या कोयले के टुकड़े लेकर उन्हें अलमारी में रख दें, ये नमी को सोखते हैं। घर में सिरके का स्प्रे भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि कपड़ों को ड्रायर में सुखाकर ही फैलाएं। कपूर जला सकते हैं, कपूर जलाने से घर में सकारात्मकता भी बढ़ती है, खुशबू भी आती है। सखियों, साफ स्वच्छ घर सभी को भाता है और इससे हमारा मन भी अच्छा रहता है।

0: बहनों, आज हम विकासशील भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने सपने सजाने के लिए। भारत को आज की स्थिति तक आने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आकाश में तिरंगा लहराने का जो सपना हर भारतीय ने सजाया था और अपने अपने हिस्से का संघर्ष भी किया था, इसी कड़ी में एक सम्मानीय नाम है स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपीनाथ बारडोलाई का। गोपीनाथ बारडोलाई का जन्म 6 जून 1890 को असम में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। उनका जन्म स्थान असम था तो कर्म स्थान भी वहीं रहा। उन्होंने असम के विकास के लिए सतत प्रयास किया। आजादी के बाद वे असम के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। उनके संघर्ष का एक पड़ाव था कैबिनेट मिशन योजना का विरोध, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर को भारत से अलग किया जा रहा था। वे लगातार इस कोशिश में जुटे रहे कि असम भारत का हिस्सा बना रहे। भारत की अखंडता को कायम रखने में आपके योगदान को देखते हुए आपको सन 1999 में मृत्यु पश्चात भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। गोपीनाथ बारडोलाई कुशल राजनीतिज्ञ, लेखक, समाज सेवी और इन सबसे कहीं ऊपर देश प्रेमी थे। आज 5 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। क्यों बातों ही बातों में कार्यक्रम का समय हो चला समाप्त, तो सावन की फुहारों का आनंद लीजिए अपनी सखी सहेलियों के साथ और अब की वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है संदेशों का।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आठ बजकर 30 मिनट पर
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए जगदीश प्रसाद और साथियों के गाए गीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

जगदीश प्रसाद और साथियों के गाए वर्षा गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए नीलम शर्मा के गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध

0: भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: और झूलते झूलते सुनते हैं
3: मालवा की शान, आकाशवाणी।
7: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है जख्म फिल्म से, आवाज अलका याग्निक की। आनंद भक्षी के लिखे गीत की धुन बनाई है MM क्रीम ने।

और अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में सोल्जर फिल्म का ये नगमा। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। उन्होंने कहा कि चालकों को सही प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपनी लेन में वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के कारण व्यवधान आया। विपक्ष नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन प्रतिनिधियों का पंजीकरण और द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय सर्वे भविन्तु सुखिना रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। सम्मेलन के दौरान भोपाल के रविंद्र भवन में शाम 5 बजे से 7 बजे तक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। आम जनता के लिए इसमें प्रवेश मुफ्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय और उन लोगों को उनके अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉ. मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया।
1: मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये ChatGPT हो, ग्रोक्सो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो

0: बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है।
1: मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनि विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद और शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने स्वयं जीवन भर नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों व समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं धार जिले में इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। एक अन्य मुकाबले में महिला बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आकर्षि कश्यप आमने सामने होंगी। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा, शहडोल संभागों में अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले की पिछौर तहसील, अवैध रूप से चल रही आराम मशीनों के खिलाफ वन विभाग ने छापेमारी की। जबलपुर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम जिले के टाटसी के कृषि उपज मंडी में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
3: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
2: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में

0: संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
2: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
3: After a detailed assessment of the evolving
2: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
3: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
2: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है, हालांकि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
3: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
3: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर।
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
3: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे।

0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
1: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है ये पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध्य

0: आनंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सबने सुनना चाहा है सनम फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

किया इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक को। इस गीत की फरमाइश भेजिए बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। जयराज प्लॉट राजकोट से।

परदेसी बाबू। लीजिए सुनिए इस फिल्म से उदित नारायण, प्रीति उत्तम सिंह, अल्ताफ राजा, रामकिशन और जितेंद्र पूनम को। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन, छोटू, डुंडुन और समस्त परिवार। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

राजा हिंदुस्तानी। लीजिए सुनिए इस फिल्म से कुमार सानू, अलीशा चुनाय और सपना मुखर्जी को। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तान्या। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मती पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 30A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी

ढांचे का विस्तार हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और रात 8:30। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर मनोज तरवारिया से ली गई भेंटवार्ता, विषय है सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन। संसद समीक्षा आप सुन सकेंगे रात 8:00, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 8:15 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा नाटक एक शक झूठ हजार, लेखक राजकुमार जायसवाल और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे डागर बंधु का ध्रुपद गायन, राखों का दरबारी कानड़ा। ये थी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: काम ले कुछ अपने हसीन होठों से, बातों बातों में यूं ही मुस्कुराया कर।
0: चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से ही जगमगाया कर।
1: नमस्कार श्रोताओं, इन सुंदर सी पंक्तियों के साथ मैं अनुषा
0: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है बुधवार और आज के दिन आप सभी को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार रहता है वो है हमारा खास सेगमेंट, यानी कि एक ही फिल्म से। तो आज के सेगमेंट में हमने कौन सी फिल्म ली है ये हम आपको कार्यक्रम में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले
0: बता देते हैं आपको कि आज के प्रश्न क्या है।
1: तो आज का पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ T20 क्रिकेट श्रृंखला खेली थी।
0: और आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में किस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए दोस्तों, और कार्यक्रम के अंत में अपने उत्तर हमारे उत्तर के साथ जरूर मिलाइए। तब तक शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: दोस्तों, आज बात एक ऐसी खोज की है जो हर दिन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन शायद ही हम लोग कभी उसके इतिहास के बारे में सोचते होंगे। आज है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, जो हर वर्ष 5 अगस्त को मनाया जाता है।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट ना हो तो क्या होगा? हर वाहन पहले निकलने की कोशिश करेगा, सड़कें अव्यवस्थित हो जाएंगी और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।
0: दोस्तों, ट्रैफिक लाइट केवल लाल, पीली और हरी बत्तियों का एक खंबा नहीं, बल्कि सड़क पर अनुशासन, धैर्य और सुरक्षा का प्रतीक होता है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दिन मनाया क्यों जाता है?
0: तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाने का उद्देश्य केवल पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट के आविष्कार को याद करना नहीं है, बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन और जिम्मेदार नागरिक बनने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
1: हर वर्ष आज के दिन यानी कि 5 अगस्त को ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन सन 1914 को अमेरिका के क्विलैंड शहर में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट स्थापित की गई थी।
0: बिल्कुल, और ये आधुनिक यातायात व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था जिसने सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की नींव रखी।
1: लेकिन इस कहानी की शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी में रेलगाड़ियों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए लाल और हरे संकेतों का उपयोग किया जाता था।
0: और फिर जैसे जैसे सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां और बाद में मोटर गाड़ियां बढ़ी, वैसे वैसे यातायात को नियंत्रित करने की आवश्यकता और भी ज्यादा महसूस होने लगी।
1: दुनिया का पहला सड़क ट्रैफिक सिग्नल 10 दिसंबर सन 1868 को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर लगाया गया था। इसे रेलवे इंजीनियर जॉन पीक नाइट ने डिजाइन किया था।
0: और इसके कई वर्षों बाद इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट का विकास हुआ और फिर दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे अपना लिया।
1: लेकिन आखिर ट्रैफिक लाइट में केवल लाल, पीला और हरा रंग क्यों होता है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा अनुषा। तो साथियों, आपको बता दें कि ये व्यवस्था भी रेलवे संकेतों से ही प्रेरित है।
0: बिल्कुल अनुभूति, लाल रंग सबसे अधिक दूर से दिखाई देता है और आमतौर पर यह खतरे का या फिर रुकने का संकेत देता है और हमारी आंखें भी इसे सबसे जल्दी पहचान लेती है। लाल रंग काफी अट्रैक्ट करता है।
1: बिल्कुल, हरा रंग सुरक्षा, आगे बढ़ने और अनुमति का प्रतीक माना जाता है और पीला रंग इन दोनों के बीच चेतावनी का संकेत है। ये हमें बताता है कि सिग्नल बदलने वाला है, इसीलिए तैयार हो जाएं और सावधानी बरतें।
0: यानी ये केवल 3 रंग लेकिन सड़क पर लाखों लोगों की सुरक्षा का आधार है।
1: आज कई देशों में दृष्टि बाधित लोगों की सुविधा के लिए भी ट्रैफिक सिग्नलों में ध्वनि संकेत लगाए जाते हैं ताकि वे भी सुरक्षा बरतें और सड़क पर सावधानी रखें और सड़क पार कर सकें।
0: और इतना ही नहीं, कई आधुनिक शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें वाहनों की संख्या के अनुसार अपने समय को खुद से ही नियंत्रित करती है, जिससे जाम कम होता है और यातायात और भी सुचारू होता है।
1: भारत में भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके।
0: अगर कुल मिलाकर देखें तो ट्रैफिक लाइट हमें केवल सड़क पर चलना नहीं सिखाती है बल्कि जीवन का एक सुंदर संदेश भी देती है।
1: जैसे कि लाल रंग कहता है कभी कभी रुकना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, और पीला कहता है धैर्य और सावधानी ही समझदारी है।
1: और हरा कहता है जब समय सही हो तो पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: कितना सुंदर संदेश है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस पर हम सब संकल्प लें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखेंगे और सड़क पर स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे।

0: साथियों, अब वक्त है आपको आपके पसंदीदा सेगमेंट से रूबरू कराने का, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं हर बुधवार को, यानी कि एक ही फिल्म से।
1: तो दोस्तों, 2017 का वो दौर जब सिनेमा थिएटर्स में चेतन भगत के नॉवेल्स का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, और आज की हमारी फिल्म एक ही फिल्म से जो है उसका नाम है मोहित सूरी की हाफ गर्लफ्रेंड।
0: बिल्कुल, याद कीजिए साथियों वो दौर लगभग 10 सालों पहले का, जब फिल्में इस तरह से बनाई जाती थी, जिसके किरदार भी, जिसके पात्र भी अनुषा हमें याद रहते थे। जैसे आज जो हमारी फिल्म है जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, इसी फिल्म के जो किरदार हैं यानी कि माधव झा और रिया का, जो अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने बखूबी निभाया है। माधव और रिया की वो अधूरी लेकिन बेहद खूबसूरत लव स्टोरी, तो चलिए बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में।
1: बिल्कुल, लेकिन अनुभूति, जब हम 2017 के सिनेमा की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में तब बड़े बड़े शिफॉन साड़ियों वाले रोमांस से हटकर एक ग्राउंडेड और स्मॉल टाउन कहानियों की तरफ वो रुख कर रहा था।
0: बिल्कुल, हाफ गर्लफ्रेंड उसी दौर की एक ऐसी फिल्म थी जिसने दो अलग अलग दुनिया को मिलाया। एक तरफ बिहार के गांव का एक देसी लड़का यानी कि माधव, जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाता था, और दूसरी तरफ दिल्ली की रहने वाली अमीर और बहुत ही अच्छे घराने की लड़की जो अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलती थी, यानी कि रिया।
1: और यही इस फिल्म की यूएसपी है, यानी कि लैंग्वेज बैरियर को इन्होंने बहुत ही सुंदरता से दिखाया। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे इंग्लिश ना बोल पाना इंडिया में एक क्लास डिवाइड बन जाता है।
0: अर्जुन कपूर ने उस बिहारी लड़के के इनसिक्योरिटी और इनोसेंस को बखूबी इस फिल्म में पकड़ा है। कहानी सिर्फ कॉलेज रोमांस की ही नहीं है, ये कहानी है कॉलेज लाइफ की भी, और कैसे दो लोग एक दूसरे के बेहद करीब होकर भी हालातों की वजह से एक पूरे रिश्ते को एक अच्छा नाम नहीं दे पाते।
1: और इस अधूरे रिश्ते के आधार पर ही तो ये बनी है हाफ गर्लफ्रेंड।
0: और इस फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली की पहली बारिश से, तो चलिए बिना किसी देर के सुनते हैं इस फिल्म का वो गीत जिसने साल 2017 में हर किसी को भीगने पर मजबूर कर दिया था।

0: वैसे दोस्तों, इस गाने के बाद जो हमारा मूड है, आपका मूड है, वो निश्चित तौर पर बहुत खुशनुमा हो गया होगा। और जब भी हम ऐसे मौसम की, ऐसे खुशनुमा मूड की, मिजाज की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, तो हम डायरेक्टर मोहित सूरी को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे समय में म्यूज़िक की भी बात करते हैं, है ना अनुषा?
1: बिल्कुल सही।
0: क्योंकि आशिकी 2 और एक विलन जैसी फिल्मों के बाद जब साल 2017 में डायरेक्टर मोहित सूरी ने इस फिल्म को बनाया, तब उन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो बॉलीवुड के म्यूजिकल मैस्ट्रो हैं। उनकी फिल्मों की आत्मा उनका संगीत ही तो होता है।
1: बिल्कुल सही अनुभूति। और संगीत के साथ साथ इस फिल्म का डायरेक्शन भी कमाल का था। उन्होंने चेतन भगत की किताब के पन्नों को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया था। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर पटना के गंगा घाट और फिर सीधे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक कहानी का स्केल बहुत ही खूबसूरती से बदला था।

0: फीलिंग्स आती हैं और वो लोग अलग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन अलग होने के बाद क्या वो वापस दोस्त बनते हैं, क्या वो वापस साथ आते हैं, ये सारी बातें मेरे ख्याल से अनुजा और फिल्म की और भी जो कहानी है वो जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी, जिन श्रोताओं ने, उन्हें तो बखूबी याद होगी, बखूबी जानते होंगे वो। लेकिन अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आगे की जो कहानी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, तो आप ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल हम बात कर रहे थे इस फिल्म के संगीत की और डायरेक्शन की। अनुष्का, डायरेक्शन के साथ साथ जो गानों का प्लेसमेंट था वो स्टोरी टेलिंग को आगे बढ़ाता है। अरिजीत सिंह की आवाज़ में जब हम गीत सुनते हैं तो वैसे ही हमारा मन जो है बहुत खिल उठता है। और इस फिल्म के जो गाने हैं, खासकर मेरा जो पसंदीदा गाना है वो है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, जो जब जैसा ये गाना है, जैसा इस गाने का मूड है, जो फ्लेवर है वो जब स्क्रीन पे आता है तो स्क्रीन पर जो माधव का दर्द है वो सीधे ऑडियंस तक पहुंचता है और उनके दिल तक उतरता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने अनुभूति। और सिर्फ वो ही नहीं, मिथुन, तनिष्क बागची और राहुल मिश्रा का जो म्यूज़िक एल्बम वो इतना बढ़िया है कि आज 2026 में भी लोग इनके गानों को लूप पर सुनते हैं। श्रेया घोषाल की आवाज़ में थोड़ी देर सुनना एक बड़ी अलग ही थेरेपी जैसा है, नहीं?
1: बिल्कुल। अच्छा, अब तुमने थेरेपी की बात करी दी है तो क्यों ना उसी थेरेपी को अभी महसूस किया जाए। चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की जादुई आवाज़ में ये अगला गीत।

0: इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अनुभूति इन लाइन में और इस गाने में तुम्हें नहीं लगता कि बहुत एक अलग सा निस्वार्थ प्रेम भाव छुपा हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, दो लोग मिलते हैं, उनके बीच प्यार होता है, लेकिन अब वो दो लोग साथ नहीं भी रहते हैं लेकिन प्यार खत्म नहीं होता।
1: बिल्कुल, एक्सेप्टेंस की जो भावना है वो बिल्कुल अलग होती है और बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन अनुषा, यही बात सोचने वाली भी है कि आज ऑलमोस्ट एक दशक होने को आया है इस फिल्म को, लेकिन आज की जनरेशन भी हाफ गर्लफ्रेंड हो, इस फिल्म के गीत हो या ऐसी कई फिल्म हो जो इस तरीके की कहानी बताती हो, उन्हें उतना ही प्यार देते हैं आज भी। यानी कि हम देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, रील्स पर, आज भी इस फिल्म के गाने, इस फिल्म के डायलॉग्स भी ट्रेंड करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने अनुभूति। देखो, आज का जो दौर है वो फास्ट फॉरवर्ड रोमांस का कहा जा सकता है, जिसमें कई सारी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे सिचुएशनशिप, घोस्टिंग और लेफ्ट राइट स्वाइप करने से ही हमारे पार्टनर्स डिसाइड होते हैं। ऐसे में हाफ गर्लफ्रेंड हमें उस पुराने बिना शर्त वाले यानी कि अनकंडीशनल लव की याद भी दिलाती है और एक झलक भी देती है।
1: बिल्कुल, इस फिल्म को ही देख लो जिसमें माधव का वो पैशन जो रिया को ढूंढने के लिए सात समंदर पार न्यूयॉर्क तक चले जाता है, वो क्रेजीनेस आज के कैलकुलेटिव प्यार में कहीं खो सी गई है।
0: बिल्कुल, और फिल्म में कई बार ऐसे सीन भी है जिसमें जो माधव है वो कहीं कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहा है और श्रद्धा कपूर भी उसे भरपूर मदद कर
1: रही है,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: और कुल मिलाकर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अधूरेपन का एक एहसास है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो पूरी तरह उनका नहीं हो पाता। वो क्रश, वो पहला प्यार, वो अधूरा रिश्ता, या फिल्म उसे ऐसे देखें, इस फिल्म को उस तरीके से, तो अधूरेपन को सेलिब्रेट करती है।
1: बिल्कुल, ये फिल्म सिखाती है कि प्यार में पाना ही सब कुछ नहीं होता, किसी को आधा पाकर भी उसे पूरी शिद्दत से चाहना भी अपने आप में मुकम्मल है।
0: क्या खूबसूरत बात कही तुमने अनुभूति। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के हमारे इस सेगमेंट एक ही फिल्म से, ये जो मुझे लगता है कि काफी हमारे दोस्तों को पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल।

और इसी के साथ हम इस फिल्म का गीत ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आज की ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा साथियों। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

0: दोस्तों, कभी कलम की स्याही कभी कागज पर उतरती थी और आज वही शब्द स्क्रीन पर चमकते हैं। पहले विचार डायरी के पन्नों तक सीमित थे और अब ब्लॉग के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल सही, और हमारे यही विचार अब सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ हम तक ही सिमट कर भी नहीं रहे हैं, बल्कि ये दूर दूर हमसे अनजान लोगों तक पहुंच रहे हैं जो हमें नहीं जानते पर हमारे विचारों को ज़रूर जानते हैं।
0: और ये सब हो सकता है हमारे द्वारा लिखे गए ब्लॉग के जरिए। दोस्तों, आज 5 अगस्त को ब्लॉगर्स डे मनाया जाता है। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि लोगों की सोच, जीवन और समाज को भी प्रभावित करते हैं।
1: ब्लॉग यानी एक ऐसा ऑनलाइन मंच जहां कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अनुभव, ज्ञान या रचनात्मक अभिव्यक्ति को लेखों के रूप में दुनिया के साथ साझा कर सकता है, और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसे ब्लॉगर कहा जाता है।
0: और दोस्तों, ब्लॉगर्स डे उन सभी ब्लॉगर्स और डिजिटल लेखकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान, जानकारी और अपने अनुभव और पॉजिटिव थॉट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, और दुनिया भर का ब्लॉगिंग समुदाय इसे उत्साह के साथ मनाता है।
1: आज के समय में ब्लॉगिंग केवल शौक नहीं बल्कि संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। या

0: विद्या हो या तकनीक, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, साहित्य हो या पर्यावरण, हर विषय पर लाखों ब्लॉग्स उपलब्ध हैं जो लोगों तक नई जानकारी और नए विचार पहुंचा रहे हैं।
1: तो हमारे युवा साथियों, यदि आपके पास कोई विचार है, कोई हुनर है, किसी विषय का ज्ञान है या फिर आप अपने अनुभव को शब्द देने की कला रखते हैं, तो ब्लॉगिंग आपके लिए एक बेहतरीन मंच हो सकता है।
0: बिल्कुल, केवल युवाओं तक भी नहीं बल्कि जो घर में कामकाजी महिलाएं हैं वे भी इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि आजकल जो दौर है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है अनुषा, और कई लोग जैसे खेती से संबंधित भी कई सारी जानकारी ब्लॉग्स के रूप में आज इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग जो है वो अपनी पहचान बनाने का आपको अवसर देती है। नियमित और गुणवत्तापूर्ण लेखन के माध्यम से आप एक विश्वसनीय लेखक बन सकते हैं, और इतना ही नहीं, आज आप भले ही किसी भी फर्म में, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हो या फिर घर पर बैठे हो, आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। आप पर्सनल ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं और साथ ही प्रोफेशनल तौर पर भी एक ब्लॉगर के रूप में कार्य कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों, शब्दों में बदलाव लाने की ताकत होती है। एक अच्छा लेख किसी की सोच बदल सकता है, किसी को प्रेरित कर सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है।
0: लेकिन याद रखिए, एक अच्छा ब्लॉगर वही है जो लोकप्रियता से पहले विश्वसनीयता को महत्व दे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, और साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो हमारी फिल्म थी, जो हमारे प्रश्न थे, जो हमारे गीत थे, वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसी के साथ अनुषा, अब वक्त हो चला है हमारे साथियों को आज के प्रश्नों के उत्तर बताने का। हमारा पहला प्रश्न था कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ T20 क्रिकेट श्रृंखला खेली है, जिसका उत्तर है जिम्बाब्वे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुलाई के महीने में भारत और जिम्बाब्वे के बीच बहुत ही रोमांचक खेल खेला गया था, जिसमें भारत 3-0 से जीता है।
0: और साथियों, आज का दूसरा प्रश्न था, हाल ही में भारत में किस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसका जवाब है एक पेड़ माँ के नाम।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत अनुभूति
0: और अनुषा को।
1: नमस्कार।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम है राही प्यार के फिल्म के गीत के साथ, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: आइए कयामत फिल्म का गीत सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, नदीम श्रवण का संगीत, समीर की शब्द रचना।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना आपको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
2: जी।
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
2: जी।
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी

0: तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए?
1: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
1: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
0: क्या बोलेगा,
1: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहाँ आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी,
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज,
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।

0: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
1: दीवान साहब,
0: महाराज,
1: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
0: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
1: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
0: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग आइए, अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आँखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
3: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
4: लगता है खुद ही बॉल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आँखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
5: आज खेल में बड़ा मजा,
6: बहुत मजा आ गया। यार गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
7: हाँ, गोल हो गया। किसी का
2: दिल खुश कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
8: कहाँ फंस गई?
9: ए, इधर क्या देख रहे हो?
0: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
10: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
9: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
11: चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो भाई निकलो।

0: लेकिन
1: अरे छोड़ो इन्हें चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
3: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
4: हाँ ठीक है,
3: कोशिश करते हैं।
4: हाँ
3: निकल गए।
2: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
4: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
3: जी बाबा।
4: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
3: तो क्या इनाम देते हो?
4: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
2: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
3: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
5: तुम्हें क्या लगता है?
6: महाराज आ रहे
3: हैं। अरे अरे,
6: सुजान सिंह जी भी आ रहे हैं।
2: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
7: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
8: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत बहुत।
7: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
3: सही बात है।
7: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
3: बिल्कुल सही कहा,
7: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
2: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
3: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
4: बिल्कुल।
2: और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
8: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
9: महाराज की
10: जय हो।
9: महाराज की
10: जय हो।
9: महाराज की
10: जय हो।
9: महाराज की
10: जय हो।
2: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
11: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
12: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
13: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

करे जाता।

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में

0: जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
0: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई।
3: क्या?
1: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
1: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे
1: भाई, चलो चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
0: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं राधा कुलकर्णी की गाई गजलें। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ज़ाहिर भोपाली का लिखा हुआ कलाम राधा कुलकर्णी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत में, अभी आप सुन रहे थे राधा कुलकर्णी और साथियों की गाई गजलें। मीडियम व्यू 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शारदा पगारे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। कार्यक्रम कर रहे हैं इस पारंपरिक लोकगीत के साथ।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एक और निमाड़ी लोकगीत। आवाज़ शारदा पगारे की है और ये पारंपरिक लोकगीत प्रदर्शित करता है निमाड़ की उस लोक संस्कृति को जो सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। आइए ये भाव सुनते हैं शारदा पगारे की आवाज़ में।

लोक संगीत में श्रोताओं आप सुन रहे हैं शारदा पगारे के गाये निमाड़ी लोकगीत। आइए एक कृष्ण भक्ति भजन सुनते हैं निमाड़ी भाषा में, स्वर शारदा पगारे का है।

0: संगीत में अभी सुन रहे थे शारदा पगारे के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के

0: नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी, बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

विवरण में जानकारी दे दें हमारी आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, जिसमें आज बात होगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में। साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। संसद समीक्षा का प्रसारण रात्रि 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 से। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत होगा रात्रि 9:15 पर। शासकीय योजनाओं और विभिन्न रोचक चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है, आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम आपकी सेवा में अनुप्रसारित करेंगे। तबादला ये नाटक है विश्वनाथ शिरनोड़कर का लिखा हुआ। इसका निर्देशक है संजीव मालवीय। नाटक आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से। शास्त्रीय संगीत में पंडित रसिकलाल अंधारिया का गायन आज हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। राग होगा दरबारी कानड़ा। कार्यक्रम विवरण में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
4: हर

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई शुरुआत। सरकार ने मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन 20 अगस्त तक बढ़ाई। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो गई। पहले दिन प्रतिनिधियों का पंजीकरण और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया,
1: तीसरी ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग के पहले दिन की औपचारिक बैठक के बाद सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण किया। यहां उनका पारंपरिक उराव जनजाति नृत्य से स्वागत किया गया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने जनजाति कला और पारंपरिक विरासत से जुड़े प्रदर्शनों का भी अवलोकन किया, जिसमें मणिपुर की मैतेई समुदाय के प्राचीन समय मापन यंत्र त्यानीशांग को भी देखा। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने केरल के पारंपरिक अनुष्ठानिक दीप अल विलक्कू का दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने कथक नृत्य, पारंपरिक सामुदायिक नृत्य और भारत की विविध पारंपरिक एवं जनजाति वेशभूषा पर आधारित फैशन शो का आनंद लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में कहा कि उन्होंने फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है। इसमें टेलीग्राम जैसे मंचों के माध्यम से फिल्मों का अनाधिकृत प्रसार भी शामिल है। लिखित उत्तर में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सिनेमा अधिनियम 1952 में सिनेमा अधिनियम 2023 के माध्यम से संशोधन किया गया है ताकि फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए जा सकें। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बोली लगाने की प्रक्रिया 5 सितंबर तक चलेगी। लोग ई उपहार पोर्टल पर जाकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि सामाजिक कार्यों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जनभागीदारी के साथ चलाने की घोषणा की है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली, तिरंगा एंथम और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 7 अगस्त से शुरू होने वाले जन विश्वास अभियान 2026 की भी जानकारी दी। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खरीद की अंतिम तारीख बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उपार्जन प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग उत्पादक किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम

0: तिथि 20 अगस्त कर दी है। इसके तहत किसान को आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर में पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। उल्लेखनीय कि खाद्य वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है। किसानों के हित में उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झाबुआ में जिला स्तरीय नशा मुक्ति अभियान समिति की बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को नशा मुक्ति अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विद्यालयों महाविद्यालयों और ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अवैध तक पदार्थों और शराब के विरुद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय पहुंचकर किताब से कल तक अभियान के तहत विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान अनुशासन और निरंतर प्रयास के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ने का प्रेरक संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके जिज्ञासाओं का उत्तर दिया, उन्हें नवाचार तकनीक और सतत रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्कूल का निरीक्षण कर वहां जुटाई गई शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नर्मदापुरम जिले की इटारसी की कृषि उपज मंडी में आज किसानों के लिए बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, नई खेती पद्धतियों, उन्नत फसल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई। महोत्सव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल शामिल हुए।
2: भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। सरकार किसानों के साथ है, कोदो कुटकी भी अब श्री अन्न योजना के माध्यम से खरीदी है। हाई क्वालिटी का रेशम, सरबती गेहूं, बासमती चावल यहाँ नहीं है नर्मदापुरम में। वास्तव में यहाँ का तो एक बार सरबती गेहूं का स्वाद ले तो दूसरा गेहूं खाना बंद कर देता है।
0: प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। झाबुआ जिले में पिछले 24 घंटे में 4.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक 8.10 मिलीमीटर वर्षा राणापुर में रिकॉर्ड की गई। मौसम केन्द्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, आयुक्त जनसंपर्क मनीष सिंह, विधायकगण, मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी एवं स्वर्गीय श्री मिश्र के परिजन भी उपस्थित थे। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वर्गीय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र एक निर्भीक राजनेता के साथ उत्कृष्ट साहित्यकार, लेखक और राष्ट्रभक्त भी थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिव्यांगजन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। जबलपुर निगम आयुक्त ने विभागीय समीक्षा बैठक में नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में आगामी त्योहारों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परेड का आयोजन किया। शिवपुरी में बाल अकादमी शाखा द्वारा कल राजमाता सिंधिया शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग वार्ड में स्तनपान जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सीहोर जिले की भेरुदा तहसील स्थित उपजेल में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया गया। गुना कलेक्टर ने आज जिला जेल का निरीक्षण कर जेल की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई शुरुआत। सरकार ने मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की 20 अगस्त तक बढ़ाई। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली सगली बहन होन के अनुराधा की राम राम, और हमारा भाई बहन होन के भी राम राम। ये तो भाई कहेगा कि देखो हमारा से तो राम राम है निकली बहन ने, तो हमारा भाई बहन होन के भी राम राम, दोही के राम राम। और बहन होन देखो
1: आज अपन बात करा एक ऐसी योजना का बारे में जिन्हें योजना ने हमारी बहन होन के धुआं से मुक्ति दिलाई दी। बिल्कुल सही समझिया बहन होना आप, आज बात है उज्ज्वला योजना की। गरीबी रेखा का नीचे का रहने वाली कोई भी बहन हो जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की है, जिनकी उम्र अपन देखा कि 18 वर्ष से अधिक की है और वो बहन होन परिवार की मुखिया है, तो ऐसी बहन होन उज्ज्वला योजना का लिए आवेदन दे सके। उज्ज्वला योजना को उद्देश्य क्या है ये भी अपन के मालूम होने चाहिए। देखो उज्ज्वला योजना को उद्देश्य सीधो सीधो ये है कि गरीब परिवार की बहन होन के धुआं से मुक्ति मिले, क्योंकि कई हो कि उनके यदि LPG सिलेंडर नहीं मिले तो वह बहन होन कंडा जलाए, फिर लकड़ी जलाए और खूब धुआं होए, उनकी आँख होन खराब होए, उनका फेफड़ा खराब होए, उनका पे भी असर पड़े। तो इकासी ये योजना जी है, ऐसी योजना है कि गरीब परिवार की बहन होन का वास्ते मुफ्त में LPG कनेक्शन उनके मिली जाए और उनके चूल्हा का जो धुआं है उकासी मुक्ति मिली जाए। पर एक बात को बहुत ध्यान रखना है बहनों कि आवेदन वो बहन करेगी जिना घर में पहला से कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होएगो, ऐसा घर में बहनों के LPG को कनेक्शन मिली सके। और देखो लाभार्थी के कई सब्सिडी भी मिलेगी, लाभार्थी के EKYC होनी चाहिए और सब्सिडी की सीमा जी है वे वर्ष भर में उनके जी सिलेंडर मिले नहीं उका पे 300 रुपया प्रति सिलेंडर, जो 14.2 किलो को सिलेंडर आए नहीं अपनो उना सिलेंडर पे सब्सिडी की शुरुआत के 4 महीना तक उनके मिलेगी। अब आवेदन करने की प्रक्रिया कही है बहनों, प्रक्रिया इतनी आसान है कि कोई भी करी सके। आप आधिकारिक पोर्टल पे जाके भी एको ऑनलाइन आवेदन कर सको, और आपको कभी आवेदन करना में थोड़ी सी भी कठिनाई लगे, वैसे तो ऑनलाइन आवेदन बहुत आसान है, थोड़ी सी समझी के करी करोगा तो आसानी से हुई भी जाएगा, पर फिर भी कोई परेशानी आए तो आप नज़दीकी गैस एजेंसी का जो भी आपका पास आसपास है वहाँ जाइए कि आप उनसे एक निर्धारित फॉर्म लो उज्ज्वला योजना के और उके भरी के आवेदन करी दो। उका में जी भी कागज़ मांगे

0: यह रावत जी की सहायक प्राध्यापक है पशु चिकित्सा न पशु पालन महाविद्यालय महू में, तो उनका सी बातचीत करी रही है अपनी बहन स्मिता दुबे। तो सुना ये भेंट वार्ता।
1: यदि हमको आत्मनिर्भर बनना है तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम चाहें तो खेती के साथ साथ और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं और हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गी पालन आत्मनिर्भरता एवं रोजगार का नया अवसर। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर नवल सिंह रावत, सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय महू से। सबसे पहले तो मैं खेती गृहस्थी कार्यक्रम की ओर से सर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम, थैंक यू।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम नई नई बातें आप लोगों से पूछते रहते हैं, जानकारियां जुटाते रहते हैं, उसी के अंतर्गत आज हमें सबसे पहले बताइए कि कड़कनाथ मुर्गी क्या है और यह इतनी लोकप्रिय क्यों है।
2: कड़कनाथ मुर्गी भारत की एक दुर्लभ और प्रसिद्ध देशी नस्ल है जो अपने काले रंग और औषधि गुणों के लिए जानी जाती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे काला मासी भी कहते हैं क्योंकि इसके पंख, त्वचा, मांस, हड्डियां और यहां तक कि अंदरूनी अंग भी काले होते हैं। इसका मांस प्रोटीन से भरपूर तथा वसा और कोलेस्ट्रॉल अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ को 2018 में आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिला हुआ है जिससे इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है।
1: तो कड़कनाथ मुर्गी पालन को रोजगार का एक अच्छा अवसर माना जा रहा है।
2: कड़कनाथ मुर्गी पालन को रोजगार का एक बेहतरीन अवसर माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च बाजार मूल्य, कम वसा और कोलेस्ट्रॉल वाला औषधि मांस तथा मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे प्रमुख लाभ मिलते हैं। कम लागत और छोटे स्तर पर भी इसे आसानी से शुरू किया जा सकता है। ग्रामीण युवा, महिलाएं और छोटे किसान इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑनलाइन और सीधे उपभोक्ताओं तक बिक्री की भी अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कड़कनाथ पालन पर विभिन्न योजनाएं, लोन और सब्सिडी दी जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि कड़कनाथ मुर्गी पालन में, मतलब अगर हम चाहें तो इसको स्वरोजगार बनाकर और इस पर हमको सरकार भी मदद करती है तो हमारा एक गरीब किसान भी, मध्यम वर्गीय किसान भी इस काम को कर सकता है। कड़कनाथ पालन शुरू करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: कड़कनाथ पालन के लिए सबसे पहले मान्यता प्राप्त हेचरी से स्वस्थ टीकाकृत चूजे खरीदें, स्वच्छ हवादार और सुरक्षित आवास तैयार करें, संतुलित आहार, स्वच्छ पानी, समय पर टीकाकरण तथा जैव सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। नियमित रिकॉर्ड रखने से उत्पादन और लाभ का सही आकलन किया जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि क्या कड़कनाथ मुर्गी पालन जो है वो छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है?
2: जी हाँ, कड़कनाथ मुर्गी पालन छोटे किसानों के लिए बहुत उपयुक्त और लाभदायक है क्योंकि इसमें कम लागत, कम रखरखाव और उच्च बाजार मांग मिलती है। इसे बैकयार्ड प्रणाली या छोटे व्यावसायिक फार्म दोनों रूपों में अपनाया जा सकता है। कृषि और पशुपालन के साथ इसे जोड़कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।
1: तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब छोटे किसान भी इस काम को कर सकते हैं। अब अगर हम कड़कनाथ मुर्गी पालन करते हैं तो इसमें कड़कनाथ जो है उसका आहार कैसा होना चाहिए, क्या उसको खाने में देना चाहिए?
2: कड़कनाथ मुर्गी का आहार आयु और स्वास्थ्य के अनुसार संतुलित होना चाहिए जिसमें शुरुआती दिनों में उच्च प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 18-20% होती है, उसके बाद ग्रोवर और फिर लेयर या ब्रीडर फीड देना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा 16-20% तक होनी चाहिए ताकि तेजी से शारीरिक विकास हो सके। साथ ही स्वच्छ पानी, हरा चारा और आवश्यक विटामिन खनिज भी उपलब्ध कराना चाहिए। संतुलित पोषण से वृद्धि, अंडा उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।
1: अच्छा, मतलब संतुलित पोषण देना भी उतना ही जरूरी है। और सर, ये है कि जैसे कड़कनाथ में रोग, अपन जब पशुपालन या मुर्गी पालन करते हैं तो उनका ध्यान रखना ये भी जरूरी है कि कौन कौन से उसमें रोग हो सकते हैं या उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं।

0: कड़कनाथ में मुख्य रूप से रानीखेत, गंबोरी, फाउल पॉक्स, कॉक्सिडियोसिस और कर्मी संक्रमण जैसे रोग हो सकते हैं। समय पर टीकाकरण, साफ सफाई, जैव सुरक्षा, नियमित कृमिनाशक और बीमार पक्षियों को अलग रखने से अधिकांश रोगों की रोकथाम की जा सकती है।
1: अच्छा, मतलब ये है कि टीकाकरण टाइम से कराते रहें और जो बीमार हो जाते हैं कोई मुर्गी तो उसको दूर रखना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि कड़कनाथ पालन में पहले एक समय था जब पुरानी तकनीक से ये पालन होता था, अब तो आधुनिक तकनीक आ गई है, तो उसकी क्या भूमिका है इसमें?
0: आधुनिक तकनीकों से जैसे स्वचालित फीडर एवं ड्रिंकर, तापमान नियंत्रण, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मार्केटिंग से उत्पादन लागत कम होती है और प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है। इससे किसानों को बेहतर लाभ मिलता है। आधुनिक तकनीक चूजों की मृत्यु दर घटाने, तापमान नियंत्रित रखने और उचित पोषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: मतलब आधुनिक तकनीक से करना ज्यादा फायदे का हो गया है आजकल। कड़कनाथ के जो उत्पाद हैं तो उसकी बिक्री, उसका विपणन जो कहेंगे हम कि भाई उसकी बिक्री कैसे, अपन उससे जो भी हमको उत्पाद मिल रहा है तो कैसे बाजार तक पहुंचाएंगे, कहाँ बेचेंगे उसको?
0: कड़कनाथ के मांस और अंडों की बिक्री स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह तथा सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म व डिजिटल ऐप का उपयोग करके प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और उचित पैकेजिंग से बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश सरकार के एमपी कड़कनाथ जैसे आधिकारिक मोबाइल ऐप्स और पोर्टल का उपयोग करके अपने फार्म को पंजीकृत करें और दूर दूर के ग्राहकों तक पहुंच बनाएं। स्थानीय बाजारों में पर्चे बैनर लगाएं तथा इसके औषधि फायदों का प्रचार करें ताकि स्थानीय स्तर पर मांग बढ़े।
1: हाँ, मतलब हमको और मांग बढ़ाना है तो हम इस तरह से भी और आगे कदम बढ़ा सकते हैं कि उसका प्रचार जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम उत्पाद को आसानी से बेच सकेंगे।
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, क्या सरकार कड़कनाथ पालन के लिए सहायता प्रदान करती है?
0: हाँ, राज्य सरकारें कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए विशेष आर्थिक सहायता और 75% तक सब्सिडी प्रदान करती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किसानों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कड़कनाथ चूजे, दाना और दवाएं अनुदान पर दी जाती है। विभिन्न राज्यों के पशुपालन विभाग, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, नाबार्ड तथा अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इच्छुक किसान अपने जिले के पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 4,400 रूपये की कड़कनाथ इकाई लागत पर 75% की छूट मिलती है और लाभार्थी को सिर्फ 25% रूपये देने होते हैं। इसमें 28 दिन के 40 वैक्सीनेटेड चूजे, शुरुआती दाना, दवाइयां और परिवहन की सुविधा शामिल है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब सरकार जो है वो 75% तक की हमको मदद करती है, तो मतलब बहुत कम लागत लगाकर भी हम इस काम को कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो हमारे किसानों ने करना भी चाहिए। अब डॉक्टर साहब, जैसे कि कड़कनाथ पालन अपनाने वाले जो युवा हैं और किसान हैं, उनके लिए भी आपका कोई संदेश?
0: कड़कनाथ मुर्गी पालन केवल एक व्यवसाय नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम है। यदि इसे वैज्ञानिक प्रबंधन, संतुलित पोषण, नियमित टीकाकरण और बेहतर विपणन के साथ अपनाया जाए तो यह स्थायी आय और रोजगार का उत्कृष्ट स्रोत बन सकता है।
1: बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं आगे, आपका कहना यह है ना कि मतलब चाहे तो बच्चे जो आजकल युवा वर्ग जो करना चाहता है उसमें इसको भी चुन सकता है।
0: जी।
1: हाँ, तो आप चलते चलते क्या हमारे किसान श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को कुछ और भी कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि कड़कनाथ मुर्गी पालन आधुनिक ग्रामीण उद्यमिता का एक सशक्त उदाहरण है। वैज्ञानिक तकनीकों अपनाकर किसान, युवा और महिलाएं अपनी आय बढ़ा सकते हैं तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: आपने इतनी अच्छी कड़कनाथ मुर्गी पालन पर बात की डॉक्टर नवल सिंह रावत जी, तो आपका हमारे स्टूडियो में आप आए और हमारे किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, थैंक यू मैम।
2: बहनों अभी अपन सुनी रहा था ये भेंट वार्ता कड़कनाथ मुर्गी पालन आत्मनिर्भरता ने रोजगार को नयो अवसर जानकारी दे रही था डॉक्टर नवल सिंह रावत जी की सहायक प्राध्यापक है पशु चिकित्सा न पशु महापालन महाविद्यालय महू में। इनका सी बातचीत करी रही थी अपनी बहन स्मिता दुबे। अब एक लोकगीत सुना प्रीति भार्गव ने उनकी मंडली को गायो मालवी लोकगीत।

0: बहनों, अभी अपन सुन ही रहा था प्रीति भार्गव ने इनकी मंडली को गायो यो गणेश वंदना मालवी। अब मेरा हाथ में देखो कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का भाव आ गया है बहनों, तो मैं सबके पहले वो भी बता दूं। आज गेहूं को जो न्यूनतम भाव थो वो थो 2156 रुपया प्रति क्विंटल को, वहाँ जो अधिकतम भाव थो 3114 रुपया प्रति क्विंटल। आज 2690 रुपया मॉडल भाव पर गेहूं भी किया। और सोयाबीन की बात करा तो सोयाबीन देखो 4200 रुपया न्यूनतम भाव प्रति क्विंटल का हिसाब से शुरू हुई थी ने 7170 रुपया अधिकतम भाव से बिकी। मॉडल भाव तो 6930 रुपया। चना देसी की बात करा तो चना देसी 4200 रुपया प्रति क्विंटल से शुरू हुआ ने अधिकतम 8405 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकिया ने मॉडल भाव एक और 3000 रुपया। चना डॉलर 5900 रुपया प्रति क्विंटल एक न्यूनतम भाव था आज ने को मॉडल भाव रियो 9980 रुपया प्रति क्विंटल को, वहाँ अधिकतम भाव रही हो मॉडल भाव रहे हो 5600 रुपया। मूंग की बात देखा तो मूंग देखो 3500 रुपया न्यूनतम भाव का साथ सुबह शुरू हुई थी ने 7080 रुपया अधिकतम भाव का साथ बिकी न वहाँ जो मॉडल भाव तो 3530 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का 2000 रुपया न्यूनतम भाव का साथ आज शुरू हुआ ने 2559 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से अधिकतम भाव पे आज बिकिया एक मॉडल भाव थो 2000 रुपया। तुअर के देखा तो तुअर देखो 4000 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से सुबह मॉडल न्यूनतम भाव से शुरू हुई न 6600 रुपया अधिकतम भाव का साथ बिकी न यो जेको मॉडल भाव भी थो 6600 रुपया अधिकतम भी न मॉडल भी। ज्वार का देखा तो ज्वार आज एक भाव बिकी 2131 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से। बाजरा भी आज एक भाव बिकियो 1500 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से। मटर में जरूर अंतर थो, मटर थो 1800 रुपया प्रति क्विंटल एक न्यूनतम भाव थो, अधिकतम भाव थो 4000 रुपया प्रति क्विंटल और मॉडल भाव भी एक 4000 रुपया प्रति क्विंटल को आज को थो। तो बहनों आइए थो कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। और अब चला एक भेंट वार्ता पे। भेंट वार्ता जो है वो इना विषय पे है कि देखो इना मौसम में बरसात का मौसम में सर्दी खांसी बुखार ये सब बहुत आम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अपन अपना घरेलू इलाज तो करा सही, पर यदि थोड़ा सा ज़्यादा कमती हुई जाए तो ऐसी स्थिति में अपने अपने होम्योपैथी पद्धति से भी उनको आराम का लिए इलाज लेना चाहिए। तो भेंट वार्ता को विषय है होम्योपैथी पद्धति से बरसात में सुरक्षा स्वास्थ्य की सुरक्षा। जानकारी दे रहा है होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए के पाटीदार, उनका सी बातचीत करी रही है बहन तृप्ति त्रिवेदी।
1: आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर ए के पाटीदार जो होम्योपैथी चिकित्सा से सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। अभी मौसम बारिश का चल रहा है और इस मौसम में तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तो आप हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि इस मौसम में मुख्य रूप से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं।
2: वैसे तो मानसून या बरसात का मौसम काफ़ी सुहावना होता है
1: जी,
2: जिसमें रिमझिम गिरती बूंद मन को मोह लेती है, मगर इन सब के साथ बारिश का मौसम अपने साथ खांसी बलगम बहती नाक हल्का बुखार आँखों में खुजली त्वचा से संबंधित रोग व ज्वाइंट पेन अपने साथ लेकर आती है। अपने समस्या भी साथ में लेकर आती है
1: जी,
2: जिसमें जो पुराने जोड़ों से ग्रस्त लोग हैं उनके जॉइंट के पेन बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और कुछ नए लोगों को जोड़ों के दर्द से बीमारी हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब बारिश के मौसम में ही जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ता है, मतलब क्या कारण है उसके पीछे?
2: इसका कुछ वैज्ञानिक मत भी है जिसमें बायोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाता है
1: जी।
2: इसके कारण सेल्स हम जैसे गर्मी के मौसम में होते हैं तो हमारे टिश्यूज में बायोमेट्रिक का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है जिससे वो सुकड़े हुए रहते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो हमारे टिश्यूज फैलने लगते हैं
1: जी।
2: जिसके कारण हमारे नर्व एंडिंग के ऊपर प्रेशर आता है जिसके कारण हमें दर्द बढ़ जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: दूसरा कुछ वैज्ञानिक मत ये भी पाया गया है कि बारिश के मौसम में लोगों की एक्सरसाइज कम हो जाती है, घर से बाहर निकलना थोड़ा कम हो जाता है, उसके कारण भी दर्द जो है ये बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल सही बात है आपकी कि रोड पर पानी हो जाता है तो जो वॉक करते हैं या चलना फिरना बंद हो जाता है, इस वजह से बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब ये तो हमें पता है कि जोड़ों में काफी दर्द होता है, मतलब घुटनों में कमर में हाथ पैर

0: में, पर इनका जो उपाय है इनसे बचने का, आप कुछ हमें घरेलू नुस्खे या ऐसी कुछ बातें बताइए जो व्यायाम, जिससे कि हम ये जो जोड़ों का दर्द है कम हो सके।
1: इसके लिए हम लोगों को, जैसे हम लोग गर्मी के मौसम से बरसात के मौसम में आते हैं,
0: जी
1: तो हमें इसकी तैयारी पहले से कर देना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे खाने में नमक की मात्रा को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के समय में हमारा जो बॉडी के
0: खान
1: अंदर
0: पान,
1: का
0: हाँ
1: पानी है
0: जी
1: वो गर्मी के कारण से कम हो जाता है, लेकिन बारिश में जो है वो वातावरण उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: थोड़ा सा नमक कम कर देंगे तो हमारी पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी, और साथ में ऐसे कुछ घरेलू उपायों का करना चाहिए जिसके कारण हमारी पेशाब की मात्रा बढ़ जाए, जिसमें
0: अच्छा
1: मुख्यतः दालचीनी है। दालचीनी को पानी में उबाल कर हम ले सकते हैं, जिसके कारण हमारी डायुरेटिक का काम करती है और
0: अच्छा
1: एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है दालचीनी, और दर्द को भी कम करती है। तो इसके साथ साथ हम दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और अन्य हर्ब भी आती है,
0: अच्छा।
1: जिसमें हल्दी को बहुत अच्छा माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है,
0: जी
1: जिसमें कुरकुरमिन मुख्य होता है, जो हमारे शरीर में सूजन को कम करता है
0: अच्छा
1: और हमारे दर्दों को कम करता है, और बारिश में आने वाले दर्दों को हमारा इससे बचाव करता है। इसके अलावा अन्य प्रकार की और भी औषधियाँ होती हैं, घरेलू उपचार होते हैं, जिसके कारण हम इन परेशानियों से बच सकते हैं। इसमें एक मेन मसाज का उपयोग भी किया जा सकता है।
0: जी
1: इससे आप जोड़ों के ऊपर मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है।
0: मतलब मसाज जो है ये साधारण रूप से या किसी तेल के द्वारा या कैसे?
1: तेल के द्वारा मसाज करने पर ज़्यादा लाभ प्रदान करती है,
0: जी
1: जिसमें मुख्यतः नारियल का तेल, जैतून का तेल से या सरसों के तेल से मसाज की जाए, थोड़ा गर्म करके हल्का हल्का। तो इसमें कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि हमारे दर्द की जो परेशानी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा असर करती है जिनको बारिश में नए दर्द शुरू हुए हैं। जिनको पुराने दर्द शुरू हुए हैं उनको इसके साथ साथ जो है होम्योपैथिक चिकित्सा भी लेना पड़ती है, लेकिन जो नए दर्द से पीड़ित लोग हैं वो केवल इसी
0: घरेलू
1: मसाज
0: उपचार से। और
1: से उनको आराम मिल सकता है।
0: अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि घर पर ही अपने को प्रारंभिक रूप से अपन जो है इस बीमारी को रोक सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन अगर दर्द पुराना है तो जैसे अभी आपने कहा कि होम्योपैथी की ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस पर कारगर हो सकती हैं, तो थोड़ी उनकी जानकारी आप हमें दीजिए जिससे कि जोड़ों का दर्द से निवारण मिल सके।
1: होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ होती है जो जोड़ों के दर्द पे लाभ पहुँचाती हैं, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ होती है, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा
1: लेकिन स्पेशली बारिश के मौसम में कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक की बहुत अच्छा काम करती है,
0: सभी पर
1: जिसमें
0: काम कर सकती है
1: हाँ
0: उनकी।
1: सभी पे काम करती है, सारे जोड़ों के दर्द पे काम करती है, लेकिन स्पेशली जो बारिश का मौसम होता है
0: जी
1: होम्योपैथिक में, बारिश के मौसम के लिए स्पेशली दवाइयाँ होती है
0: अच्छा
1: जो बारिश के मौसम में स्पेशल वर्क करती है, जिसमें सबसे बढ़िया दवाइयाँ जो है वो सबसे बढ़िया दवाइयाँ वो है रस्टाक्स, सेकेंड नंबर की दवाई है डलकामारा, थर्ड हमारे क्लिनिकली प्रैक्टिस में जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट हमने देखा है वो दवा है रोडेनरान,
0: जी
1: और चौथी दवाइयाँ एकोनाइट।
0: अच्छा
1: जब बादल गरजते हैं उस समय कभी किसी मरीज को दर्द बढ़ता है या उसी कारण से दर्द आता है
0: जी
1: या उसको पहले से पता लग जाता है कि कल बारिश होने वाली है, उस समय हम मुख्यतः रोडेनरान नाम की एक दवाई का जो है प्रयोग करते हैं, जिसके काफ़ी अच्छे लाभ पाए गए हैं। इनको हम लोग ग्लोबिल्स के माध्यम से भी देते हैं और ड्राप्स के माध्यम से भी देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो रोडेनरान मुख्यतः 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, जो सुबह 2 बूंद टंग के ऊपर सुबह और 2 बूंद टंग के ऊपर शाम को हम लोग ले
0: अच्छा
1: सकते हैं।
0: जी
1: इसी तरह जो है डलका मारा भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग के ऊपर 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम हम लोग ये ले सकते
0: जी
1: हैं। इसी के साथ रस्साक्स जो है वो 30 या 200 पोटेंसी के अंदर हम लोग 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, या फिर पानी के साथ भी ले सकते हैं,
0: अच्छा
1: वन फोर्थ
0: अच्छा
1: कप पानी के साथ, 20 ml पानी के साथ भी इसको लिया जा सकता
0: तो
1: है।
0: इसके आगे पीछे कुछ खाना पीना नहीं रहता है?
1: होम्योपैथिक दवाइयों में 10-15 मिनट पहले आपको थोड़ा सा बचना चाहिए खाने पीने से,
0: जी
1: और इसके बाद भी खाने से बचना चाहिए।
0: मतलब लगभग 15-20 मिनट का अंतर रखना
1: हाँ, पंद्रह
0: चाहिए।
1: बीस मिनट का अंतर रखना चाहिए
0: जी
1: इन दवाइयों के लेने से पहले।
0: जी सर, डॉक्टर साहब आपने ये जो दवाइयाँ बताई ये सब जैसे दुकान पर जाएंगे तभी हो पाएगी उपलब्ध, लेकिन अगर तत्काल किसी मरीज को हमें सुविधा देनी है,
1: जी
0: अगर घर पर किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है,
1: जी
0: तो घर पर क्या कुछ ऐसी औषधियाँ या कुछ ऐसे नुस्खे आप बताइए जो घर पर हम कर सकें, उसे जो बीमार है उसे हम पहुँचा सकें आराम, ऐसा कुछ आप बताइए।
1: इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसके
0: जी
1: साथ साथ एक मेथी दाना है
0: जी जी
1: जो दर्द के ऊपर काफ़ी लाभ पहुंचाता है। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण जोड़ों के दर्द में इसके सेवन से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है।
0: जी
1: इसकी आधा चम्मच रात को पानी में भिगो देना चाहिए, फिर सुबह इसको लेना चाहिए। एसिडिटी वाले पेशेंट या जिनको पेट

0: अल्सर हो उनको
1: जी
0: थोड़ा मेथी दाने के उपयोग से थोड़ा बचना
1: अच्छा
0: चाहिए।
1: अच्छा
0: और किसी कारण से कभी किस पेशेंट को और ज़्यादा दर्द हो तो हल्दी मेथी दाना साथ में मिलाकर भी लिया जा सकता है।
1: मतलब ये सूखा मिक्सचर मतलब
0: हाँ
1: पाउडर
0: सूखा
1: उसका ले
0: मिक्सर
1: सकते
0: भी,
1: हैं
0: हाँ सूखा मिक्सर भी इसके साथ में लिया जा सकता है।
1: जी।
0: इसके साथ साथ एक और बहुत प्रसिद्ध औषधि हमारे अंदर जो है, अदरक जो है हमारे भारत में पाई
1: जी
0: जाती है,
1: जी
0: और ये भी जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण औषधि है। इसका रस बहुत ही उपयोगी है
1: जी
0: जो जोड़ों की सूजन को भी कम करता है और इसके दर्दों को भी कम करता है।
1: समझ कैसे इसे लिया जाए आप ये थोड़ा सा बताइए।
0: अदरक,
1: अदरक
0: अदरक का रस निकाल के रोज उसको करीब करीब आधा ml के आसपास हम पानी के साथ मिला के ले सकते हैं, या उसका सूखा पाउडर भी मेथी दाने के साथ और हल्दी के साथ मिला के भी लिया जा सकता है, या अलग से भी लिया जा सकता है।
1: तो ये जैसे आपने बताया कि अदरक का रस हम ले सकते हैं, तो ये समय कुछ निश्चित है कि इस समय लेना चाहिए
0: खाना खाने के बाद बड़ा उपयोगी होता है, लेकिन आप
1: जी
0: इसको कभी भी ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते
1: जी
0: हैं। ये जोड़ों के दर्द के साथ साथ पेट से संबंधित रोग के साथ जोड़ के दर्द हो तो
1: हाँ
0: अदरक काफ़ी अत्यधिक लाभ पहुंचाता है।
1: जी जी जी मतलब अगर अदरक और हल्दी का हम मिक्सचर बना कर लेते हैं वो भी लाभप्रद है, और अदरक का रस वो अकेला भी लाभप्रद है
0: वो भी लाभप्रद है। इसके
1: जी
0: साथ आप लहसुन भी ले सकते
1: जी
0: हैं। लहसुन में सल्फर और सेलिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सल्फर और सेलिनियम जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाने में मददगार साबित होता है। एक शोध के अनुसार सेलिनियम एंटी रूमेटिक प्रभाव भी डालता है, मतलब जो रूमेटिक पेशेंट है जिनको सारे जोड़ों में दर्द है,
1: जी
0: रूमेटिक पेशेंट को सारे जोड़ों में दर्द होता है, सुबह उनको अकड़ान काफ़ी बढ़ जाती है, उठने बैठने में काफ़ी तकलीफें होती है, दूसरी दवाइयाँ कम काम में
1: जिसे
0: आती
1: जिसे
0: है।
1: गठिया कहते हैं
0: हाँ
1: उस जी
0: गठिया
1: जी
0: कई प्रकार के होते हैं जिसमें एक रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है,
1: जी जी
0: तो उसमें भी अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। इसको अन्य होम्योपैथिक दवाइयाँ या एलोपैथिक दवाइयों के साथ में भी लिया जा सकता है। ये घरेलू दवाइयाँ,
1: हाँ हाँ
0: आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बाद भी आपको दर्द है, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आप ले रहे हैं उसके बाद भी दर्द है, तो इनको भी आप साथ में शामिल कर सकते हैं, इससे भी आपके जोड़ों के दर्द में अत्यधिक प्रभाव मिलता है।
1: डॉक्टर साहब एक भ्रांति है कि जैसे होम्योपैथिक दवाई ली जाती है तो उसके साथ में लहसुन या तेज खुशबू वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्या ये सच है कि भ्रांति है? आप मुझे बताइए थोड़ा सा।
0: इसके साथ में जो है खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए, ये पुराने हमारे डॉक्टरों का मत है, लेकिन वहाँ दवाइयों का रिपीटेशन नहीं किया जाता था
1: अच्छा
0: इसलिए
1: अच्छा
0: उनके साथ में इन चीज़ों को नहीं खाया जाता था, लेकिन आज हम बार बार दवाइयों का रिपीटेशन करते हैं तो हम इन चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन जो लोग बचेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन
1: अच्छा
0: नहीं भी बचते तो इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक
1: कि
0: दवाइयाँ काम नहीं
1: असर नहीं
0: करेगी,
1: करी। हाँ
0: होम्योपैथिक दवाइयाँ बराबर आपके ऊपर असर करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। इसके साथ साथ हम सेंधा नमक का भी उपयोग जोड़ों के दर्द के लिए कर सकते
1: जी
0: हैं। सेंधा नमक जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है,
1: जी
0: जिसको गर्म पानी के साथ हमारी त्वचा पे अप्लाई किया जाए तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है और हमारे सूजन को कम करता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो कोशिकाओं की सूजन को कम करता है और वो जो है डी टॉक्सिफिकेशन करने में हमारे टिश्यूज़ की मदद करता है,
1: मतलब शरीर से विष निकाल
0: विष
1: देता
0: भी
1: है वो
0: निकालने का काम करता है।
1: जी जी
0: इसके लिए हमें गुनगुने पानी को, गुनगुना पानी एक बाल्टी में गुनगुना पानी करना चाहिए, उसमें 4-5 चम्मच सेंधा नमक डालना चाहिए,
1: हाँ
0: उसमें गरम एक कपड़ा लेके गरम गरम जोड़ों पे सिकाई
1: तौलिया
0: करना
1: से।
0: चाहिए,
1: हाँ हाँ
0: ऐसा वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कर सकता है, उससे
1: अच्छा
0: अत्यधिक लाभ मिलता है मैग्नीशियम से।
1: जी जी मतलब सूजन उतर जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा जोड़ों का,
0: हाँ
1: तो
0: सूजन
1: बड़ी
0: उतर
1: अच्छी
0: जाएगी और
1: बात
0: जोड़ों
1: आपने
0: का दर्द
1: बताई
0: भी कम हो जाएगा।
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत अच्छी हर्ब है जो मुलेठी है,
1: जी
0: इसको भी आप आधा ग्राम मुलेठी 2 कप पानी में लेकर हल्की आंच में गर्म करके उसको पी सकते
1: जी जी
0: हैं। ये भी एक तरह का, इसके अंदर एक स्टेरॉइड प्रॉपर्टी होती है, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है,
1: जी
0: जो इसके साथ में जैसे मेथी दाना नहीं खा
1: नहीं ले
0: सकते ज़्यादा
1: सकते थे वो
0: एसिडिटी वाले,
1: मुलेठी ले सकते
0: वो
1: हैं
0: मुलेठी ले सकते हैं। ये बहुत
1: जी।
0: जल्दी सूजन को उतारता है बहुत तेज़ी से तीव्रता के साथ में और बहुत जल्दी दर्दों को कम करता है।
1: ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। अगर कुछ आप सलाह देना चाहते हैं कि क्या ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से बारिश के मौसम में ताकि जोड़ों का दर्द ना हो, तो कुछ हमारे श्रोताओं को आप अपनी सलाह देना चाहेंगे?
0: कोशिश करना चाहिए कि हम घर पे ही व्यायाम करें जिससे
1: जी
0: हमारा ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा इम्प्रूव हो। दूसरा, हमें जब भी बारिश के मौसम में धूप निकले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप लेना चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम जरूर करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें नमीदार रूम से, हमारे घर के अंदर नमी ना आए उससे बचना चाहिए, नमी वाले कपड़ों से भी बचना चाहिए,
1: अच्छा।
0: कपड़े अच्छे सुखाकर साफ करके पहनना चाहिए। जो महिलाएं होती है वो बारिश के मौसम में अपने बालों को थोड़ा कम गीला करें और जब भी बालों को गीला करें तो वो तुरंत सुखाएं।
1: अच्छा,
0: नंगे पैर ठंडी जमीन
1: जमीन
0: पर
1: पे
0: ना
1: ना
0: चले।
1: चले। सही।

0: वो
1: हाँ
0: उनके
1: ठीक है।
0: जोड़ों के दर्द उससे बढ़ेंगे, तो ये सावधानियां सारी उनको रखना चाहिए। और साथ में विटामिन सी युक्त फल उनको खाना चाहिए,
1: अच्छा,
0: इससे भी बारिश के मौसम में जो है दर्द से बचा जा सकता
1: मतलब
0: है।
1: खटाई वाले फल खाना चाहिए। बड़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि जोड़ों के दर्द पर घरेलू उपाय के साथ साथ जो होम्योपैथिक दवाई है उसका उपयोग करके किस तरीके से अपने जोड़ों के दर्द से निवारण पा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी अपन सुनी रहा था ये भेंट वार्ता होम्योपैथी पद्धति से बरसात का मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। जानकारी दे रहा था होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए के पाटीदार ने, उनका सी बातचीत करी बहन तृप्ति त्रिवेदी ने। और देखो, अब अपन बात करा सर्दी का मौसम में जे तुलसी लोग खाए नहीं, वो कैसे उनके कई लाभ मिले उनका बारे में। आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में देखो बहुत लंबा समय तक तुलसी को उपयोग के बारे में अपन पढ़ा भी, बात भी करा। एका में ऐसा बहुत सारा यौगिक रहे जेका से स्वास्थ्यगत फायदा बहुत मिले। देखो, सर्दी जुकाम में राहत के लिए बहुत सारा लोग अपना घर में तुलसी लगाए भी, उनको सेवन भी करे। पर जब यदि थोड़ी सर्दी खांसी को प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में तुलसी का पत्ता उनके सेवन में तो ऐसा भी करी सको आप कि भाई ओका पानी में नाखी दियो ना, पानी के थोड़ा सा हल्को हल्को हल्को दिन भर सिप सिप करी ने पिए, घुट घुट करी ने अंदर थोड़ा थोड़ा पिए तो कैसी गला की खराश खत्म हो जाए, खांसी में आराम है ना, सामान्य जो सर्दी खांसी का लक्षण है ना उनमें भी आराम आई जाए। इसके अलावा तुलसी में बहुत सारा ऐसा तत्व रहे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। तो सामान्य रूप से भी यदि सर्दी खांसी नहीं भी है तो बहुत सारा लोग ऐसा करे कि भाई 5 पत्ती तुलसी का खरी है तो उनका सी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी जाए, तो सामान्य छोटी मोटी बीमारी बहुत जल्दी असर नहीं करे। पाचन के लिए भी लाभकारी है, तुलसी से गैस नहीं होए, अपच या पेट में कोई हल्की फुल्की असुविधा हुई रही है तो उका से कम आराम आई जाए। इसका साथ साथ बहुत सारा लोग उनके मुंह का बदबू की समस्या रहे तो मुंडा में कई होए कि देखो बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा रहे जी बदबू पैदा करे और दांत में उनका कारण दर्द भी हो जाए, तो उनके नियंत्रित करने में भी तुलसी बहुत फायदों करे। तो यह तो था अपनी तुलसी का फायदा होने के बारे में बात। और इसका अलावा तुलसी का जब सेवन करो 3-4 पत्ती से ज़्यादा सेवन नहीं करना है, इन्हीं बात को ध्यान रखना है। तुलसी की चाय बनाई के भी आप पी सको। और देखो, अब कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम की बखत हुई रही पूरी, काल का कार्यक्रम की बात करा तो काल सवेरे खेती की बात में प्राकृतिक खेती ने जैविक खेती के बारे में जानागा और संजय के खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनागा। अब एक ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम समापन करने की इजाज़त दो। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में संसद समीक्षा का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरूद्व प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनवदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।

जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंक कार्य बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हाल ही में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर, और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस विधेयक के विभिन्न आयामों पर और साथ ही जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को लेकर जो पुरानी स्थिति थी और अब इस विधेयक के बाद जब ये अधिनियम के रूप में हमारे सामने आएगा तो उसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या सामाजिक और इसमें प्रशासनिक जो जटिलताएं थी उनको दूर करने में इससे मदद मिलेगी। हम इस विषय पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। सुविमल जी, बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सुविमल जी, अगर हम भारत में नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे सामने 1969 का एक मूल कानून है जिसमें जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड है वो स्थानीय प्रशासनिक रिकॉर्ड माना जाता रहा है, लेकिन जब ये विधेयक अब संसद में पारित हो चुका है और अधिनियम के तौर पर ये विधेयक हमारे सामने आएगा तो क्या कुछ इसमें हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी?
3: देखिए, ये बहुत जरूरत था इस संशोधन को लाने के लिए, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग आपकी जो जन्म और मृत्यु समय पर रजिस्टर नहीं करते हैं और जो एक प्रशासनिक रूप से भी तकलीफ होते थे, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट गतिविधि भी चलते थे इस डेथ रिपोर्ट में। और जब हमारे आगे की जो वेरिफिकेशन पर्पसेस या बहुत सारे बेनिफिशियरी पर्पसेस के लिए जब करेक्ट रिकॉर्ड सही रिकॉर्ड रखना जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इसको शुरू से ला के इसमें सारे जो बदलाव लाना था इसलिए इसको लाया गया। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो ये जन्म की पंजीकरण, ये 86.6/2014 में जो था उससे 99.1 तक पहुंच गया 2024 में, और मृत्यु का पंजीकरण 72.99 तक आ गया। तो ये जो एक बदलाव आया था, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ये सही और वेरीफाइड तरीका से ये पंजीकरण होना चाहिए, तभी आगे एक करेक्ट और रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा। और ये काफी दिन हमारा इसमें बहुत उसमें देखा जाता था कि एज बेनिफिट के लिए बहुत लोग अपने जन्म की तारीख गलत या कम करके डालते हैं। अगर आप बहुत सारे मैंने सरकारी संस्थान में भी देखा है कि बंदा देखने में लग रहा है कि वो रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके हैं लेकिन उम्र में वो 50 भी नहीं।
2: बिल्कुल।
3: इसलिए इस तरीका के जो फ्रॉडुलेंट गतिविधि होते थे इनको भी रोकना जरूरत था, इसीलिए इस संशोधन को लाया गया था।
2: ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने सुविमल जी बताई कि जो सत्यापन या वेरिफिकेशन है उस पर महत्वपूर्ण फोकस है इस विधेयक में, और जो जन्म और मृत्यु है वो नागरिकों की एक बहुत एक ऑथेंटिक डेटा होना जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो ऐसे में ये भी है कि जो पहले हम देखते थे कि जैसा आपने भी बताया कि जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के जो आंकड़े थे उनमें बहुत बिखराव था, अब ये प्रावधान है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा नागरिकों का। तो ऐसे में जो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारे सामने नागरिकों का जन्म और मृत्यु को लेकर सामने आएगा, उससे कैसे आंकड़ों के इस बिखराव को समेटने में मदद मिलेगी और कैसे हमारे सामने पुख्ता और सही आंकड़े जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के सामने आ सकेंगे?
3: देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ये सारे रिकॉर्ड्स रहने का पहले से करना चाहिए था। हमारा यहाँ ये गतिविधि राज्यों का बीच में, राज्यों अपना तरीका से इसको रिकॉर्ड के रखते थे और बहुत समय ये एक कोऑर्डिनेशन का भी इश्यूज होते थे। जब 2023 में ये कानून का ओवरहॉल हुआ था तब बर्थ सर्टिफिकेट को एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ की उसको ठीक किया गया था, और जगह और डेट ये दोनों सब की पब्लिक सर्विसेज जो दिया जाता है, जैसे स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, आधार और सरकारी नौकरियों के लिए भी इसको आधार बनाया गया था कि एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ होना चाहिए, तो ये सिंगल मैंडेटरी प्रूफ को आप लागू करने के लिए एक कॉमन डेटाबेस में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की काम देश में हुए हैं, लेकिन ये देखा जाता था कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अलग अलग डेटा फेंकते हैं, तो इसको एक कॉमन डेटाबेस में जब लाते हैं तो ये वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए जरूर सही होते हैं, लेकिन जो आपकी वेरिफिकेशन के अलावा भी जो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में सुविधा के लिए उसमें भी बहुत मदद होते हैं।
2: बिल्कुल, और हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदला है तो अब हमारी जो मांग है वो दूसरी तरह की है, अब हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में हमारे जो कानून और अधिनियम है वो भी, उनका ढांचा भी डिजिटल होना, उसका स्वरूप भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब ये संशोधन संसद में पारित हुआ है तो उसका जो एक डिजिटल स्वरूप अब हमारे सामने आएगा, उससे जो आम नागरिक है उन्हें कैसे अपने स्तर पर फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि हमारा जो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड है, खासतौर पर अगर जन्म के ही हम बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट है वो हमें कई अवसरों पर पड़ती है, तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाएगा कि एक डिजिटल रूप से हमारे सामने कॉमन डेटाबेस से एक आम नागरिक को जटिलताओं से दूर होने में उसे मदद मिलेगी।
3: देखिए, नागरिक के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, इसीलिए क्योंकि हर जगह में इनको बार बार वेरिफिकेशन करना ये जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कॉमन डेटाबेस जहाँ एक स्थित डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसी के साथ हर संस्था जो इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए, वहीं पे उस रिपोजिटरी से इसको टैली करेंगे, तो इनको बार बार हर जगह एक्सप्लेनेशन देना या दिखाना वो काम से ये जो एक टेडियस एक जॉब होते है कि इनको हर जगह में अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिखाना पड़े, वो मेरे ख्याल से एक नागरिक का रूप में उनके लिए एक सुविधा होता है। दूसरी बात होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिसिटी जिस तरीका से लोगों का, बहुत सारे लोगों का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी देखे गए है कि वो कहीं एक ही आदमी कभी इस डिस्ट्रिक्ट में दाखला किया ही किया हुआ है, तो ये जो डुप्लीकेट की जो बात आती थी वो भी दूर हो जाते, तो एक साफ सुथरा डिजिटली रिकॉर्डेड डेटाबेस में जब नागरिकों की रिकॉर्ड्स रहते हैं तो आगे इनके लिए भी कोई परेशानी नहीं होती है कि क्या किस तरीके से वो नागरिक प्रमाण करे। थोड़े बहुत आउट चेंजेस लाए गए कल जैसे राज्यसभा ने पारित किया है, मुझे लगता है ये जो एक एनोमली था पब्लिक पोजिशन में वो साफ हो जाएगा।
2: मृत्यु की जो रिकॉर्ड की अस्पष्टता जो थी उसमें कई बार ऐसी अड़चने हमें व्यावहारिक तौर पर देखने को मिलती थी, चाहे वो एक अगर उदाहरण ले संपत्ति का हस्तांतरण हो, पेंशन, बीमा क्लेम, इस तरह से जो कई कागजी अड़चने थी वो भी क्या आने वाले विधेयक से आम परिवारों को राहत देंगी कि अब मृत्यु के रिकॉर्ड में स्पष्टता रहेगी?
3: जरूर, अगर आप देखिए तो जब आधार लागू किया गया था तब देखा गया था कि बहुत सारे जगह में लोग गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी पेंशन जा रही है, या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से जो बेनिफिट जाते थे वो भी जा रहा है, तो ये जो मैंडेटरी रूप से ये डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, और जिस तरीका से आपकी डेथ सर्टिफिकेट को इश्यू किया जाएगा जिस टाइम पीरियड में, इससे ये सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होते थे या बहुत सारे केसेस में फ्रॉडुलेंट के अलावा भी बहुत लोग नहीं जानते कि कहां से डेथ सर्टिफिकेट में या डेथ सर्टिफिकेट मिलने में भी जो तकलीफें होते थे ऑफिस में, मेरे ख्याल से ये सारे दूर हो जाएंगे, तो इससे आपका लोगों का जो जेन्युइन स्थिति है, जैसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा डेथ के बाद, या जो पेरेंटल ट्रांसफर्स होते हैं या बहुत सारे जगह में आपकी एक डेथ के साथ जब बंद होते हैं खाता, तो इसी में बहुत मदद होगा।
2: जी, आपने अभी SIR का जिक्र किया तो मैं मतदाता सूची पर ही आना चाहूंगा। जब हमारे पास एक स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे जन्म और मृत्यु को लेकर, तो एक ऑटोमेटेड हमारे पास वोटर लिस्ट को अपडेट करने की सुविधा क्या हो पाएगी? अगर हमारे पास स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे तो चुनाव निर्वाचन आयोग के पास 18 वर्ष पूरी कर चुके जो युवा मतदाता है उनकी स्वतः सूची को अपडेट करने में इससे कुछ मदद जरूर मिलने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
3: बिल्कुल, बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अब जो प्रयास हो रहे हैं उससे वो जो रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल साफ हो रहे हैं और करेक्ट हो रहे हैं। इसमें कोई जिस तरीका से आपकी टाइमिंग दिया गया कि 30 दिन की डिले के पहले क्या हो सकता है, 30 दिन डिले के बाद क्या हो सकता है, एक साल या दो साल, इसमें जिस तरीका से माइन्यूटली ये प्रोविजन्स लाए गए उससे क्या होगा कि लोग अपने आप एक डिसिप्लिन की तौर से वो अपने आप बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और जो बर्थ सर्टिफिकेट जिस हिसाब से लेंगे वो उसका भी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे एकदम सही बर्थ रिकॉर्ड होगा और जो आगे इनकी जो और सारे बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन वो करते रहेंगे उसमें वही टेली होगा। तो इलेक्शन की कार्ड में भी जो इश्यूएंस होगा 18 साल होने पर ये इसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा और जो सही डेट ऑफ बर्थ है।
2: एक और सवाल मेरे मन में आया कि जैसे खासतौर पर चुनौतियां उन बच्चों के साथ भी होती थी जो विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे, जैसे सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनके बच्चों के जन्म के डेटा को लेकर, या फिर जो गोद लिए हुए बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं है उनके जन्म के रिकॉर्ड में, तो क्या कुछ ऐसे विशेष प्रावधान इस विधेयक में दर्ज हैं जो इन विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के जन्म के रिकॉर्ड को भी सही तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे, तो और उनको किस तरह से फायदा होगा इससे?
3: जी, 2023 में जब 1969 की जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट की अमेंडमेंट लाए गए थे उसी में ये सारे केसेस को बड़े विस्तार रूप से देखा गया है और उसका लिए किस तरीके से उसको एप्लीकेशन होगा वो भी दिया गया। अब जो आया है इस कल राज्यसभा में पारित किया, इसमें विशेषकर ये जो आपकी दाखला में या एप्लीकेशन में जो डिलेज होते हैं इसको देखने के लिए, जी आप अगर ये 30 दिन तक डिले होते तो ये डायरेक्ट लोकल अथॉरिटी इसको रजिस्टर कर सकता है प्रिस्क्राइबर, अगर 30 दिन से एक साल है तब फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और लेट फी के साथ होगा, एक साल से दो साल होता है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो नए प्रोविजन आए कि एक साल और दो साल से ज्यादा एक्सीडिंग जो डिलेज आए तो उसमें, तो ये इसमें ऐसा कोई नया कुछ नहीं लाया गया जो 23 में संशोधन किया था, जहां तक आपने जो विशेष वर्ग के कुछ केसेस उदाहरण बताए उनके लिए ऐसा इसमें कोई कल की उसमें कुछ नहीं है।
2: एक अंत में मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से

0: सुर्खियों में। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं, हूँ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मिलन फिल्म के गीत के साथ, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है आनंद बख्शी के।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
3: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
4: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
5: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बम्बई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
6: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
2: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
7: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
2: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
8: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
2: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
9: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
10: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रूपये पर बंद हुआ।
2: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asked Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb are among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
12: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite the disposal of cases and ensure timely justice to the people. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
11: After completing the business, the deputy chairman adjourned the upper house for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the government keeps itself informed of global developments and evolving international regulatory approaches relating to online safety, including measures adopted by different jurisdictions for protection of children in the digital environment. He said the Digital Personal Data Protection Act 2023, DPDP Act, has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. The DPDP Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to Meta that they are not covered under intermediary definition and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. In Jharkhand, the students' protest against the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations being held at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. The BJP today hit out at senior Congress leader Rahul Gandhi over his silence on the ongoing protests in Jharkhand against alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra alleged that Mr. Gandhi has not visited Jharkhand because the Congress is part of the ruling alliance in the state. He also criticized the Congress leader for bringing innocent children to his press conference for the party's own political purposes. The BJP spokesperson said children are the future of the country and should not be drawn into politics for any issue. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. He said women, marginalized communities or those who were denied their basic constitutional rights for decades have been empowered with the full application of the constitution. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
13: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated. Both heritage and development have received a boost. Employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The people there are happy.
11: India today asked Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istehsal. He said the world is not fooled by these orchestrated spectacles. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been and will always remain an integral and inalienable part of India. He said the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. Punjab police has uncovered a sinister plan of cross-border terror module to target Delhi's Jantar Mantar during a recent student protest. The persons involved in two ISI-backed cross-border terror modules busted by Amritsar police revealed during investigation that they had travelled through Delhi with petrol bombs to carry out an attack at the protest site. However, they abandoned the plan after finding heavy security deployment in the area. Amritsar police said four of the nine arrested accused are juveniles and had been trained by ISI handlers. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said India's pilot training ecosystem is witnessing a significant growth. Mr. Naidu said the number of commercial pilot licenses issued increased from over 1,300 in 2024 to more than 1,600 last year. The minister said this while distributing letters of intent to 11 flying training organization FTOs in New Delhi today.
14: We have given letter of intent for 11 FTOs in 7 airports to start up FTOs for our students who are interested in becoming pilots. If you look at the way civil aviation is growing in the country, we are going to have 500 more aircrafts in the next 5 years. So at any given point of time, this requirement of new pilots shouldn't become a bottleneck for us. So we from the ministry are providing all the support that is required to the industry.
11: The government today said it has strengthened the legal and institutional framework to deal with online piracy of cinematograph films, including unauthorized dissemination of films through intermediaries such as Telegram. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan stated this in a written reply in the Lok Sabha today. In reply to another query, Dr. L. Murugan informed the lower house about the journalist welfare scheme being implemented by the government to provide one-time ex gratia relief on urgent basis to journalists and media personnel or to their families in the event of extreme hardship arising out of death, permanent disability, serious ailments and accident-related hospitalization. The Monetary Policy Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, has decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. Making the announcement today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection marginally to 6.7% from 6.6% and reduced the inflation forecast to 5% from 5.1% in the current financial year. Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. We have a report.
15: The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. Meanwhile, in the Forex market today, the rupee appreciated by 25 paise to end at 95 rupees and 13 paise against the US dollar. With Intikhab's report, Gaurav Dhawan Lal for Akashwani News.
11: In sports, India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan with seven players advancing to the second round of women's singles while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Kaur, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita Ramraj, Ashmita Chaliha, Isharani Barua and Shreyansi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. However, in the men's singles, former world number one Kidambi Srikanth, Mithun Manjunath, Kiran George, Ronak Chauhan, Sanit Dayanand and Tarun Manepalli all suffered first round defeats. The Inter-Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kaur among seven Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.

0: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on
1: Akashvani ka Indoor Kendra hai. आइए सुने चित्र गीत. श्रोताओं, सदाबहार फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. चित्रगुप्त का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल.

0: मेरे लिए क्या था मैं बता नहीं सकती हूँ, सिर्फ पति ने, उन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा किया, जीना सिखाया, हंसना सिखाया, दर्द को लेना सिखाया।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हों। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
3: जी नमस्कार।
1: शरद जी आपके साथ है, शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको बताइए अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनलियों की फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की और नाम आपका आगे आएगा, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
1: जी हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
3: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं।

0: जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। थोड़ी साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूचुअल अकाउंट वही है। और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद यह है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया है 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए, अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, या तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज ये भी कहा गया आनंद के स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दें, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स, क्योंकि देखिए होता क्या है जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगी, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है तो आ नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
3: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
0: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या है बताना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बना, 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
3: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कलेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए, उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी, किसी आम आदमी को यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा।
4: सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात

0: कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है, पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी, कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1,00,000 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12,000-12,000 12,500 इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10,000 रुपए 5% 10% रिकवरी हो पाती है, और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, यहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो KYC की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, EKYC भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट के थ्रू खोल जाते हैं। BC मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और

0: भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये एक बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है। मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में, हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं?
2: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलिजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया। अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए, जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है। जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या, मैं कहता हूं अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं। यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा।

0: जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को एसओपी बनाने को कहा है और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
1: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है, तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहें।
0: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
0: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए नाटक।
6: प्रस्तुत है आर के।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने नाटक तबादला। लेखक विश्वनाथ शिरनोड़कर, निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक तबादला। इसके लेखक हैं विश्वनाथ शिरनोड़कर, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।
2: गुड मॉर्निंग अभिभूति, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग रेखा मैडम, कितनी देर से आ रही है आप? ये ऑफिस है या कोई धर्मशाला?
2: सॉरी, क्या पूछा जोशी जी आपने?
3: मैंने पूछा कि ये ऑफिस है या धर्मशाला।
2: मैं कैसे बता सकती हूँ जोशी जी कि ये ऑफिस है या धर्मशाला? अपने ऑफिस की फाइल देखनी पड़ेगी जोशी जी, किराया नामा भी देखना पड़ेगा, नगर निगम का स्वीकृत नक्शा भी देखना पड़ेगा, तभी बता सकती हूँ कि ऑफिस है या धर्मशाला। वैसे आप मुझसे पूछ ही रहे हैं श्रीमान जी, तो मेरे विचार से सारी दुनिया धर्मशाला है।
3: अभी तक बड़े साहब नहीं आए, पर अब आप मुझे बताएंगी कि आज आप देर से क्यों आई?
2: जोशी जी, क्या बताऊँ आपको?
3: अरे कुछ तो बताइए।
2: मैं आने के लिए तैयार ही हो रही थी कि मेरे मिस्टर,
3: मिस्टर मतलब
2: मेरे पति परमेश्वर।
3: सब जानते हैं आपके मिस्टर मतलब पति परमेश्वर, आगे बोलो।
2: ओहो जोशी जी, मैं तो बता रही थी कि मैं ऑफिस आने के लिए तैयार हो रही थी और मेरे मिस्टर,
3: मिस्टर को क्या हुआ?
2: यानी मेरे पति परमेश्वर सवेरे टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते अचानक गिर गए, अस्वस्थ हो गए। उनकी हालत देख ऐसा लग रहा था कि मानो अभी बेहोश होने वाले हैं।
3: अरे बाप रे, फिर तो आपने डॉक्टर को बुलाया होगा।
2: ओह नहीं नहीं जोशी जी, मेरे मिस्टर यानी मेरे पति परमेश्वर की हालत ज्यादा खराब होती देख सबसे पहले मैंने टीवी बंद किया। हाँ, फिर उनको पीने के लिए पानी दिया और थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सुस्त महसूस करने लगे तो मैंने उनसे बार बार पूछा, पर वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहे थे। आखिर में जब मैंने फिर से पूछा तो कहते हैं क्रैश हो गया।
3: क्रैश हो गया
2: जी, धड़ाम से गिर गया।
3: धड़ाम से गिर गया,
2: सर्वनाश हो गया।
3: सर्वनाश हो गया।
2: हाँ, तो मैं घबरा गई जोशी जी। मैंने फिर जोर देकर पूछा क्या हुआ, तो बोले शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया।
3: क्या क्या कह रही हो रेखा मैडम, शेयर मार्केट क्रैश हो गया?
2: क्या बताऊं जोशी जी आपको, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया।
3: धड़ाम से नीचे आ गया
2: जी, हाहाकार मचा हुआ है।
3: क्या बता रही है रेखा मैडम?
2: हाँ, मेरे मिस्टर की थोड़ी सी जो बहुत जमा पूंजी थी वो खत्म, समझो
3: जमा पूंजी खत्म
2: जी।
3: रेखा मैडम
2: जी, जी जोशी जी, पर अब अपने बड़े साहब का क्या होगा जोशी जी?
4: बड़े साहब का क्या होगा मतलब?
3: अरे विनोद, अपने बड़े साहब तो शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं, रोज ट्रेडिंग भी करते रहते हैं ना। रेखा मैडम उन्हीं की बात कर रही है, बड़े साहब तो दिन भर शेयर मार्केट का ही पहाड़ा रटते रहते हैं। अरे रे रे रे रे, अपने बड़े साहब का तो भगवान ही मालिक है, उन पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। अब गए बड़े साहब लंबी छुट्टी पर।
4: जोशी साहब जरा धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। बड़े साहब पर संकटों के काले बादल घिराए और मुसीबतों के बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़े और घबरा कर बड़े साहब लंबे अवकाश पर अंतर्ध्यान हो जाएं, उससे पहले मुझे मेरा तबादला कराना है जोशी साहब। वहाँ दूर नागपुर में मेरी बीवी घर में अकेली है।
3: सबकी बीवियाँ घर में अकेली ही होती है, हर ऑफिस में सबके साथ।
2: जोशी जी, क्या कह रहे हैं आप?
3: नहीं रेखा मैडम, मेरा कहने का मतलब है ऑफिस में अकेलापन नहीं होता ना।
4: जोशी साहब, नहीं, वैसे तो मेरे घर में बच्चे हैं, परंतु मेरी माँ और पिताजी बहुत वृद्ध हैं, बीमार भी रहते हैं। अकेले ही मेरी पत्नी को

0: सब संभालना पड़ता है, ऊपर से मेरी पत्नी को नौकरी पर भी जाना पड़ता है।
1: ओ, ओ, ओ, ओ।
0: वो सब कुछ कैसे संभालती होगी बेचारी।
2: क्या कहा बेचारी? अरे विनोद, तू तो कह रहा था कि तेरी बीबी रणचंडी है, आज बेचारी कैसे हो गई?
3: मतलब हम दोनों जब अकेले होते हैं ना, तब वो रणचंडी होती है।
4: राजी, चाय लाऊं क्या?
3: अरे तेरी चाय से मेरे तबादले का क्या लेना देना? अरे जाए यहाँ से, जाए
4: विनोद बाबू। बाबू राह सही कह रहा है, जरा पैसे निकालो, चाय मंगाओ भाई, तबादले का मैटर है कि नहीं तुम्हारा?
0: चाय चाय चाय
4: बाबू राव, तीन चाय लेकर आओ, अभी लाया था, लाई भी रहता।
3: मगर मेरे तबादले का क्या होगा जोशी साहब, कुछ तो कीजिए।
4: मैं क्या कर सकता हूँ?
3: अरे बस सिर्फ मेरे तबादले भर का देख लीजिए आप तो, बस बस इतना ही।
4: अरे तुम्हें तुम्हारे तबादले की पड़ी है, हमारे ऊपर कितना संकट आया है मालूम है क्या तुम्हें?
3: अब कौन सा संकट आन पड़ा आप पर जोशी जी?
4: अरे अमेरिका में सबका दीवारा निकल गया है, और तुम हो कि अपने तबादले का रोना लेकर बैठे हो। हद है यार विनोद।
3: अरे जोशी साहब, अमेरिका के संकट से हमारे देश का क्या संबंध, हमारी कंपनी का क्या संबंध, और मेरे तबादले का क्या संबंध है भला?
4: है ना, संबंध है। मैं बताता हूँ बाबू, अमेरिका में अगर किसी छींक भी आ जाए तो हमारे यहाँ बहुत सो को निमोनिया हो जाता है कि नहीं? तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आती? वहां का संकट यानी कि हमारा संकट नहीं, वरन पूरी दुनिया का संकट होता है बाबू।
2: ओहो, जोशी साहब आप क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इस विनोद की बदली का इन सब से क्या संबंध? यूनियन की सचिव होने के नाते मैं हमारी यूनियन को पहले ही विनोद के नागपुर की बदली के लिए प्रबंधन को लिख चुकी हूँ।
4: ये देखिए, कल अमेरिका का शेयर मार्केट धराशाही हो गया, अब आज अपना शेयर मार्केट भी धड़धड़ाता हुआ नीचे गिर गया, फिर अब अपने बड़े साहब भी बेचारे जमीन पर आ जाएंगे ना, मालूम नहीं कितने दिनों तक सदमे में रहेंगे।
0: लेकिन इस सदमे से मेरी बदली का क्या?
4: बदली क्या लगा रखी है बाबू? अरे अमेरिका के संकट के आगे तुम्हारा तबादला महत्वपूर्ण है क्या? एक बार बता दिया ना कि जब अमेरिका का संकट दूर होगा तब हमारे यहाँ का शेयर मार्केट भी संभल जाएगा, और इस तरह हमारे देश का संकट भी दूर हो जाएगा। उसके बाद ही तुम्हारे तबादले के बारे में बड़े साहब से चर्चा की जाएगी विनोद बाबू।
0: अरे जोशी साहब, ये सब क्या है?
2: ओहो जोशी साहब, कीजिए ना कुछ बेचारे की तबादले का, पिछली बार भी कितनी दफा इसका तबादला होते होते जुड़े गया।
4: क्या कर सकते हैं रेखा मैडम, विनोद बाबू आपको तबादला कराना है कि नहीं? बाबू राव का 100 का नोट दीजिए पहले।
0: तबादला 100 का नोट?
4: हाँ हाँ दीजिए, समोसे के बिना तबादला कैसे होगा? 100 का नोट दीजिए आप।
0: ठीक है भाई, ये एक ही कड़क नोट बचा है, ले जा इसे भी तू।
4: अभी लाया। अरे कुन्ने वाली दुकान से लाना बाबू राव।
2: हद हो गई भाई, हद हो गई। शुरुआत में ही विनोद का तबादला होने वाला था,
4: और एक हाँ मैडम,
2: बड़े साहब का नया मकान बन रहा था, इसलिए बड़े साहब को समय ही नहीं था जोशी जी, और विनोद को भार मुक्त करने के लिए कोई समय नहीं निकाल पाए वो। और उस वक्त हेड ऑफिस से तबादले के आदेश होने के बावजूद बेचारे का तबादला अटक गया। उस वक्त विनोद यहाँ से जा नहीं सका, इसलिए हेड ऑफिस ने किसी दूसरे को वहाँ भेज दिया। अभी शुरुआत में ही विनोद का तबादला होने वाला था, पर बड़े साहब का नया मकान जो बन रहा था, इसलिए बड़े साहब को समय ही नहीं था विनोद को बाहर मुक्त करने का।
4: वो तो है रेखा मैडम।
2: और उस वक्त हेड ऑफिस के तबादले के आदेश होने के बावजूद बेचारे का तबादला अटक गया। बेचारा विनोद साहब के मकान के लिए कुर्बान हो गया जोशी जी।
4: तो क्या हुआ साहब, लोगों का घर मतलब सिर्फ घर थोड़ा ही होता है रेखा मैडम।
5: तो फिर क्या होता है?
4: साहब का घर मंदिर होता है, माधतों के लिए उनके साहब का घर पवित्र स्थान ही होता है। अब इतने बड़े पवित्र वास्तु के निर्माण

0: कमांड में बड़े साहब व्यस्त थे। तुम्हारे तबादले का आदेश मैंने कई बार उनके सामने रखा था विनोद बाबू, पर हर बार बड़े साहब यही कहते थे,
1: बाद में देखेंगे।
0: और बाद में देखने की जरूरत ही नहीं रही, तबादला आदेश हेड ऑफिस ने ही रद्द कर दिया था।
2: आश्चर्य है जोशी साहब, पर बड़े साहब के मकान से इस बेचारे विनोद के तबादले का क्या संबंध?
0: संबंध है, संबंध नहीं होता तो इस वक्त विनोद अपने घर अपनी रणचंडी के साथ हो, मतलब कि अपनी बीवी के साथ होता। मैं तो कहता हूं कि साहब लोगों के घर से ही नहीं वरन हर एक गतिविधि से मातहतों का नजदीक का संबंध होता है। मुझे ही देख लो, मैं अपने बड़े साहब का दायां बायां हाथ नाक कान आंख सब हूँ।
2: गला रह गया जोशी साहब।
0: मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम दोनों? कल के दिन तुम कहोगे बड़े साहब का मुंह पेट। बाप रे, साहब लोगों का पेट कितना बड़ा होता है इसका अंदाज नहीं है तुम लोगों को। परंतु अपने बड़े साहब का पेट इतना बड़ा नहीं है, और मेरा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है,
3: मेरा पेट तो बहुत ही छोटा है।
4: अरे जोशी साहब, बड़े साहब का नया मकान बनने के तुरंत बाद भी तो मेरा तबादला हो सकता था ना?
0: बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता था।
3: परंतु बड़े साहब का नया मकान बनने के तुरंत बाद हमारे विभाग के मंत्री महोदय के ऊपर सीबीआई और आयकर विभाग का एक साथ छापा नहीं पड़ा था क्या?
0: कई दिनों तक बेचारे बड़े साहब इसी चिंता में खाना पीना तक भूल गए थे। इतने बड़े संकट का उन्हें सामना करना पड़ा, और तुम्हें अपने तबादले की पड़ी हुई है। क्या आदमी हो तुम लोग यार, दूसरों के बारे में जरा भी नहीं सोचते।
2: जोशी साहब, हम क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे, छापा मंत्री पर पड़ा, बड़े साहब की पूछताछ हो गई, इन सबसे आम आदमी का या आम मतदाता का क्या संबंध है हमारा?
0: वही तो, आम आदमी को लगता है कि उसका किसी से भी संबंध नहीं, परंतु आम आदमी का संबंध सब बातों से होता भी है और आता भी है। दरअसल इस आम आदमी के कारण ही सारे संकट और समस्याएं हैं। आम आदमी के लिए राजनीतिज्ञों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तुम्हारे जैसे आम आदमी को क्या मालूम।
4: विषय क्यों बदल रहे हो, मंत्री से या आम आदमी से? मेरे तबादले का क्या संबंध?
2: बोली गई थी कि मैं यूनियन की सचिव हूँ जोशी साहब। हाँ तो जोशी साहब बताइए, इन सब से विनोद के तबादले का क्या संबंध?
3: बताता हूँ।
0: जिस किसी मंत्री पर भी छापा पड़ता है उसे आम आदमी ही तो चुनकर भेजता है ना। ऊपर से आप सब कहते हैं कि आम आदमी का क्या संबंध।
2: जोशी साहब, आप तो बहुत अति हो रही है आपकी। अरे इन सब बातों से विनोद के तबादले का क्या संबंध
0: है?
2: क्या? अच्छा जोशी साहब, जाने दीजिए, परंतु ये तो आप भी जानते हैं ना कि छापा पड़ने के बाद भी साहब कई दिनों तक क्रिकेट के विश्व कप में रंग गए थे। और इसलिए उनके पास ऑफिस के काम के लिए समय नहीं था।
0: अरे बड़े साहब का क्रिकेट का शौक महत्वपूर्ण है।
3: अरे अपने बड़े साहब रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, उनकी जैसा क्रिकेट का दर्दी और महान जानकार लाख खोजने पर भी हमारी कंपनी में नहीं मिलेगा। मुझे छोड़कर।
0: अरे बड़े साहब ने तो अपना पूरा जीवन ही क्रिकेट को समर्पित कर दिया,
1: कुछ मालूम है तुम लोगों को।
2: जोशी साहब, फिर वो नौकरी क्यों करते हैं? क्रिकेट ही खेलना चाहिए ना उन्हें।
0: वही तो कर रहे हैं।
2: हाँ, मतलब
0: तुम लोगों को पता है क्या, अपने बड़े साहब को नौकरी क्रिकेट के कोटे से ही मिली, अर्थात अपने बड़े साहब का क्रिकेट का शौक और दीवानगी हेड ऑफिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में है।
4: अरे अरे अरे, अब तो मैं पागल हो जाऊंगा, बड़ा क्रिकेट लेकर बैठे हमारे बड़े साहब का।
0: विनोद बाबू, बड़े साहब के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

0: और बड़े साहब क्रिकेट लेकर नहीं बैठे हैं। क्रिकेट ये एक मैदानी खेल है और बड़े साहब जैसा क्रिकेट का जानकार खिलाड़ी मिलना भी मुश्किल है। अगर बड़े साहब को क्रिकेट का शौक है तो मुझ जैसे और तुम्हारे जैसे मातहत सेवकों को क्रिकेट के और साहब के हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए।
1: जोशी साहब, मैं भी खूब बड़े साहब के क्रिकेट की रात दिन तारीफ करने के लिए और गुणगान करने के लिए तैयार हूँ। उनका सब कुछ क्रिकेट मैं हो, यही कामना है। हाथ लगाएं वहाँ गुदगुदी की बजाय, हाथ लगते ही वहाँ चौके छक्के हो। वे क्रिकेट की ही पूजा करते रहें और क्रिकेट की ही आरती उतारते रहें, यही मेरी अभिलाषा। जोशी साहब, बड़े साहब ये सब मजे में करें, परंतु मेरे तबादले के बाद।
2: ये तबादला तबादला तबादला लेकर क्या बैठे हो है? बड़े साहब का क्रिकेट महत्वपूर्ण है या तुम्हारा तबादला?
3: मेरी बात ध्यान से सुनो रेखा मैडम, आप भी तुम क्रिकेट सीखो, क्रिकेट खेलते रहो, अच्छी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में निपुण हो जाओ।
2: एक बार अगर बढ़िया फील्डिंग जमाना आ गई तो समझो सब काम आसान हो जाएंगे, समझे विनोद बाबू?
1: अरे क्रिकेट क्या खाक सीखे, मैंने तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला, मुझे मेरी बदली के अलावा कोई भी बात दिमाग में नहीं आती। अच्छा मुझे बताइए कि क्रिकेट का विश्व कप खत्म होने के बाद भी मैंने मेरी बदली के लिए बड़े साहब से कितनी बार विनती की थी, पर कुछ हुआ नहीं हुआ। अरे क्या तो बड़े साहब अपनी बेटी की शादी में व्यस्त थे। अब मुझे बताइए कि बड़े साहब की बिटिया की शादी का मेरे तबादले से भला क्या संबंध हो सकता है?
3: कैसे नहीं हो सकता है?
2: है संबंध है, है, है, है, है।
0: बिटिया की शादी तुम्हें क्या हंसी मजाक लगती है? जिसके यहाँ बिटिया की शादी होती है उससे पूछो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। यही रिकॉर्ड बजा बजा कर बड़े साहब ने अपनी लाडली को डोली में बिठा कर विदा किया था। बड़े साहब अपनी लाडली के सुख संसार के लिए जी जान से लगे हुए थे, और उसमें तुम्हारे तबादले की कोशिश कहां से करते विनोद?
2: अरे अरे तुमसे यार ना दूसरों का सुख दुख देखा नहीं जाता यार।
1: ये क्या कह रहे हो जोशी साहब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, करबद्ध निवेदन है आपसे, करबद्ध निवेदन है। जोशी जी कुछ तो कीजिए।
4: गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग। नमस्कार साहब।
5: जानता हूँ जानता हूँ, सुबह की दोपहर हो गई इसलिए तुरंत याद दिलाने की जरूरत नहीं। जोशी
2: सर, सर सर सर
5: क्या रिपोर्ट है आज की?
2: सर ठीक,
5: सब लोग काम कर रहे हैं ठीक से ना?
2: या
5: हमेशा की तरह गप्पे हाँकी जा रही है?
2: हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर, नहीं सर।
5: जोशी
2: जी जी जी जी सर,
5: जरा चाय के लिए भेजो किसी को।
2: अरे बाबू राव तो चाय मारना बड़ा ही मार के खाते में लिख देना विनोद के।
5: अरे बड़ी थकान महसूस हो रही है।
3: कितना बोझ है काम का आपके ऊपर, घर की चिंता सर, बाहर की चिंता सर, ऑफिस की चिंता, इस विनोद की चिंता, पर कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आती सर। तबीयत तो ठीक है ना सर आपकी? घर जाकर आराम करें ना सर, यहाँ हमें ना सर में सब संभाल लूंगा। जोशी
5: ठीक है, जोशी ठीक है। विनोद
1: जी सर, जी सर,
5: तुम्हारे काम का क्या, बताए हुए सारे पत्र लिख लिए कि नहीं? और सुनो वो भुगतान के बिल्स भी सबको भेजे या नहीं?
1: जी जी जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर।
5: अरे जी सर, जी सर, यार क्या लगा रखा है, इतने सवाल पूछे सबका जवाब जी सर जी सर, ए, क्या है ये सब तमाशा?
1: नहीं सर, यस सर, जी हाँ सर, सर जी सर, मतलब सर दुबई एंड कंपनी को सोमवार सुबह 10 बजे आपसे मिलने के लिए बुलाया है।
5: इतनी जल्दी सुबह 10 बजे किसको समय दे रखा है? अरे तुम कभी नहीं सुधरोगे।
1: सर अपना ऑफिस तो सुबह 10 बजे शुरू होता है ना? हाँ, अब आपके आने का कोई समय निश्चित नहीं तो?
5: शट अप, क्या कहना है तुम्हारा, मैं समय पर नहीं आता।
2: नहीं नहीं सर, सर सर सर सर सर सर, उसका उसका ये कहना नहीं है, उसका कहना है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं ना, इसलिए आपका ऑफिस आने का कोई निश्चित समय नहीं हो सकता ना सर।

0: इसमें
1: जोशी
0: जी जी जी
1: जोशी, हर समय विनोद की तरफदारी करते रहते हो, ऑफिस का पूरा ढर्रा बिगाड़ कर रख दिया है। मुझसे लिखवा लो, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अरे साहब, यानी क्या कोई रेलवे का इंक्वायरी ऑफिस है कि हर कोई 24 घंटे में पूछताछ करता रहे?
2: सॉरी सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप नाराज न हो सर, एक निवेदन था सर। एक
1: तुम और निवेदन, बोलो बोलो, निवेदन ही करते रहोगे या काम धाम भी करोगे? काम के नाम से तो नकार घंटा बजता है हमेशा, ये मुझे नहीं आता, वो मुझे नहीं जमता, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, और ये काम तो मुझे मालूम ही नहीं। अरे बाबा, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ आता है क्या?
2: मुझे सब काम आते हैं।
1: सुनो जोशी सुनो, अरे ढिंढोरा पीटो, सब जगह मुनादी करवाओ, इस आदमी को सब काम आता है। अरे बाबा, 20 साल हो गए, एक तरक्की नहीं हो पाई, कह रहा है सब जानता। विनोद प्यारे, अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कौन कौन से काम नहीं आते?
2: मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता सर, मुझे शेयर मार्केट भी ऊपर नीचे करना नहीं आता सर, मुझे ऐसा कुछ भी करना नहीं आता जिससे मेरे घर पर छापा पड़े।
1: जोशी
0: सर सर सर सर,
1: अरे क्या हुआ है इसे?
0: सर बावला हो गया,
1: पागल तो नहीं हो गया है विनोद? क्रिकेट क्या, शेयर मार्केट क्या, छापा क्या, जांच क्या, अरे जोशी क्या बड़बड़ा रहा है विनोद? ऑफिस के काम से इन सब का क्या संबंध?
2: संबंध है, संबंध है, संबंध है सर। जोशी साहब कह रहे थे कि बॉस इज ऑलवेज राइट।
0: यस यस।
2: और सर, जो आपकी पसंद वो हमारी भी पसंद होनी चाहिए ना। जाने दीजिए सर, ये बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है?
1: मेरी तबीयत को क्या हुआ है?
2: नहीं नहीं नहीं, जोशी साहब कह रहे थे कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया है, और अब अपने साहब का भी कुछ सही नहीं लगता।
1: क्या कहना है तुम्हारा, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, पर आपने शेयर बाजार में अपनी बहुत सारी पूंजी लगा रखी है ना, इसलिए आपका कुछ ज्यादा नुकसान हो गया होगा ना।
1: उसका क्या, और ऑफिस के काम से उसका क्या संबंध
2: है? है है है, संबंध है सर। अब देखिए, शेयर मार्केट गिर गया इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सकता, इसके पहले हमारे विभाग के मंत्री के घर पर छापा पड़ा इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका, उसके पहले मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका, और उससे भी पहले आपकी बेटी का विवाह था इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका, और सर उसके भी पहले आपका नया मकान बन रहा था इसलिए मेरा तबादला नहीं हो सका। और इससे पता पड़ता है कि इन सब से मेरा और मेरे काम का संबंध है, इसलिए पूछा आपका स्वास्थ्य ठीक है ना सर।
1: जोशी
0: सर, सर
1: जोशी
0: सर, सर
1: ये सब क्या चल रहा है? ये ऑफिस है या किसी गांव का चौपाल? अच्छा जोशी
0: सर,
1: तो मेरी गैर हाजिरी में ये सब चलता है?
0: हाँ सर। नहीं नहीं नहीं सर, सर सर सर, नहीं नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर, इस विनोद का तबादला नहीं हो पा रहा है इसलिए मामला हो गया है सर, माफ कर दीजिए सर इसको।
1: नसीब अपना अपना पगलाया नहीं है, नहीं तो मेरे कुछ खैर नहीं थी।
0: सर सर सर सर प्लीज सर सर कुछ कीजिए ना, विनोद की ट्रांसफर का सर, प्लीज सर कुछ कीजिए ना।
3: हाँ सर, यही तो निवेदन कर रहा था विनोद, इसके घर की हालत बहुत ही खराब है साहब, इसकी पत्नी अकेली है, माँ बाप बुजुर्ग है, बीमार रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, इसके सब इसकी पत्नी को अकेले ही संभालना पड़ता है, कुछ तो कीजिए ना सर, आपका आपको बहुत उपकार होगा।
1: मैं आपकी बात समझ रहा हूँ रेखा मैडम, लेकिन फिलहाल

0: संभव नहीं लगता।
1: क्यों साहब?
2: क्यों साहब?
1: नहीं,
0: अभी हाल ही में टीवी पर समाचार देखकर आ रहा।
3: तो उस समाचार से मेरे तबादले का क्या संबंध है?
0: आज ही चुनाव की घोषणा हो चुकी है बरखो।
3: तो उस चुनाव से मेरे तबादले का क्या संबंध है?
0: संबंध कैसे नहीं, अब आचार संहिता लागू हो गई है, अब तो पत्ता हिलाने के लिए भी मंजूरी चाहिए।
1: तो साहब तब तक विनोद क्या करेगा?
0: चुनाव खत्म होने का इंतजार और क्या। जी सर, कब? 8 दिन पहले? जी, पूरा दफ्तर शिफ्ट करना है। कहाँ? औरंगाबाद से नागपुर। जी सर, मेल आज ही भेजा है, चुनाव के बाद तुरंत पूरे स्टाफ का नागपुर तबादला। ओहो जी सर, मैं समझ गया, पूरे स्टाफ का नागपुर तबादला। जी सर, सबको बताता हूँ सर। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर।
4: सर, सर सर, क्या हुआ? हेड ऑफिस से फोन था, किस ऑफिस को शिफ्ट करना है सर, किसका तबादला सर?
0: बताता हूँ, विनोद के लिए खुशखबरी है, उसका तबादला नागपुर हो गया है।
1: क्या?
4: कैसे?
5: कब? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे बेचारे की अनेक वर्षों की इच्छा पूर्ण हुई, आनंद है विनोद के लिए। अरे सर मजा आ गया।
0: रुको, विनोद के लिए तो ये खुशी की बात है, परंतु हम सब के लिए बुरी खबर है, हमारी कंपनी का विस्तार हो रहा है, उत्तर भारत का पूरा बाजार पड़ा है, वो फिलहाल नागपुर से संचालित होना है, यहाँ औरंगाबाद का काम पुणे से होगा, अतः यहाँ का पूरा ऑफिस मैं स्टाफ के नागपुर शिफ्ट करना है। आठ दिन पहले ही निर्णय हो चुका है, फिलहाल विनोद को अस्थाई रूप से वहाँ भेजना है, वो वहाँ जाकर आरंभिक तैयारी करेगा और देखभाल करेगा, फिलहाल नागपुर में हमारे दो ही आदमी अपने घर से ही काम देखते हैं, अब वहाँ पूर्ण रूप से एक शाखा खोलने का तय हो गया है। हेड ऑफिस बड़ा भवन पहले ही तय कर चुका है, और चुनाव के बाद हम सब लोगों का नागपुर तबादला होगा।
5: अरे सर, मेरा सारा परिवार यही रहता है, अब इस उम्र में तबादला बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है।
6: मेरा तो हो गया।
5: एक मिनट सर, कैसे होगा ये? और सर, आपने भी तो अपना यहाँ मकान बनाया सर, उसका क्या होगा? और रेखा मैडम, और रेखा मैडम, आपके पति का कितना बड़ा व्यवसाय है, कैसे होगा?
0: मैं क्या बता सकता हूँ आप सबको, पर फिलहाल विनोद तुम्हारा अभिनंदन।
7: अरे विनोद बाबू, बधाई, बहुत बहुत बधाई, अब तो 1000 का नोट निकालिए, सबके लिए मालपुआ ले आ पहुंचा अभी मैं।
8: अभी आपने सुना नाटक तबादला, इसके लेखक थे विश्वनाथ शिरढोनकर, पात्रों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है, बड़े साहब बीएन बोस, जोशी संजीव मालवीय, विनोद रवि कुमार सोनी, रेखा सुधा शर्मा और बाबूराव संतोष अग्निहोत्री। इस नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे संजीव मालवीय।

अभी आप सुन रहे थे नाटक तबादला। लेखक थे विश्वनाथ शिरोडकर, निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।

0: शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे पंडित रसिक लाल अंधारिया का गाया राग दरबारी कानड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun